मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। आज रविवार है, शक संबत 1948 ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। आपका दिन मंगलमय हो।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री

0: जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
3: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

श्रोताओं, जीवन एक विविध रंगी मौसम है जो कभी अपने साथ ले आता है सूखे पत्तों में आंधियां बांधकर, कभी बादलों से रिसती हुई बारिशें, तो कभी डाल डाल से झरता मधुमय वसंत। जीवन के इस मौसम में कोई एक रंग नहीं ठहरता, चाहा अनचाहा हर रंग हमें डुबोता रहता है। और जीवन के इस चाहे अनचाहे रंग को समभाव से देखने का हमें सामर्थ्य देती है वंदना। तो आइए वंदना का आरंभ करें इस देशभक्ति गीत से।

श्रोताओं, भक्ति एक सुगंध युक्त रस है। वो परमात्मा को संसार से अलग नहीं कहती, संसार को त्यागने का आदेश नहीं देती। भक्ति प्रेम है। वो सृष्टि और सृष्टा दोनों को स्वीकारती है और इस भाव से स्वीकारती है मानो भक्त उसकी संतान हो। इसीलिए वो उसे माँ कहकर पुकार उठता है।

ज्ञानी जन कहते हैं कि शून्य में, निःशब्द में होना ही प्रार्थना है। थोड़े समय के लिए कुछ भी ना करें, चुपचाप मन को देखते रहें, तो उस प्रशांति में वो धीरे धीरे शून्य हो जाएगा। और इसी महाशून्य में वो परम ज्योति हमारे भीतर उतरती है और मन उस आदि शक्ति

श्रोताओं, मनुष्य जब जन्म लेता है तो तन और मन से कोरा होता है, बिल्कुल पवित्र। भक्ति के मार्ग में इसी पवित्र मन की आवश्यकता है। तन कितना भी उज्जवल हो, कोई अर्थ नहीं। जीवन की कोरी चादर में कालचक्र की छाया का ग्रहण लगने से पहले अगर उसमें भक्ति का रंग चढ़ जाए, आध्यात्म की सुगंधि फैल जाए, तो फिर परमात्मा तक उसकी आभा पहुंचती रहती है।

श्रोताओं, जीवन उतना ही ऊंचा होता जाता है जितना गहरा हो। जो लोग ऊंचे तो होना चाहते हैं किंतु गहरे नहीं, उनकी कठिनाइयां बढ़ती जाती हैं। गहराई के आधार पर ही ऊंचाई के शिखर संभलते हैं। दूसरा और कोई रास्ता नहीं, और ये गहराई हमें ईश्वर में डूबकर ही प्राप्त होती है।

भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशभक्ति रचना के बाद पंडित अजय चक्रवर्ती, जगजीत सिंह, हरिओम शरण और अनूप जलोटा के गाए भजन। इसके साथ ही संपन्न होती है आज सुबह की भजन यात्रा वंदना।

काक भुशुंड के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम के चरणों में उनका अनन्य प्रेम देखकर पक्षीराज गरुड़ कृतकृत्य हुए। बोले, हे नाथ, आपने श्री राम की कथा और ज्ञान तथा भक्ति की महिमा सुनाकर मुझे परम सुख और शांति प्रदान की है। आपके इस उपकार के लिए मैं सदा सर्वदा आपका ऋणी रहूंगा। आप पूर्ण काम हैं, श्री राम के अनुरागी हैं। इस जगत में आप जैसा बड़भागी और कौन होगा? संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब का अस्तित्व परोपकार के लिए होता है। कवियों ने कहा है कि संत हृदय नवनीत के समान होता है, किंतु मैं कहता हूं कि उन्होंने कदाचित पूर्ण सत्य नहीं कहा, क्योंकि मक्खन तो अपने ही ताप से पिघल जाता है, जबकि संतों का हृदय तो दूसरों का दुख देखकर पिघलता है। पार्वती को काकभुशुंडी गरुड़ संवाद का ये प्रसंग सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, गरुड़ ने बार बार अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर काकभुशुंड के चरणों में सिर नवाकर वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। संत समागम जैसा कोई पुण्य कार्य नहीं होता, किंतु ऐसा अवसर प्रभु कृपा से ही प्राप्त होता है। मैंने वो इतिहास सुनाया जिसे अपने कानों से सुनने वाला जीवन मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धापूर्वक ये कथा सुनते हैं, उनके सभी पाप धुल जाते हैं। धन्य है वो देश जहाँ गंगा प्रवाहमान है। धन्य है वो स्त्री जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। धन्य है वो राजा जो न्यायप्रिय होता है। और धन्य है वो द्विज जो अपने धर्म पर अडिग रहता है।

0: श्री रामचरित मानस गान अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल से। लीजिए अब प्रस्तुत है चिंतन।
1: भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के समान माना गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, अतिथि देवो भव, अतिथि तुम्हारा देवता है। अर्थात अतिथि को देवता के तुल्य सम्मान दो। तैत्तरीय उपनिषद में माता पिता एवं आचार्य के साथ साथ अतिथि को भी देवता के समान सम्मान देने का

0: उपदेश दिया गया है, मातृ देवो भाव, पितृ देवो भाव, आचार्य देवो भाव एवं अतिथि देवो भाव। अतिथि में तिथि शब्द आया है आ धन तिथि, आ यानी नहीं, तिथि दिन या समय, अर्थात जिनके आने की कोई तिथि दिन या समय निश्चित या पूर्व निर्धारित न हो वो अतिथि हुआ, जो अचानक अकस्मात उपस्थित हो जावे। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में इस विषय का विस्तृत विवेचन करते हुए लिखा है, अतिथि उसको कहते हैं जिसकी कोई निश्चित तिथि न हो। अथर्व वेद में कहा गया है, एशवा अतिथिर्यच्छोत्रियस्तस्मात् पूर्वो नाशनीयात्, अतिथि वेद विद ब्राह्मण के तुल्य है, इसलिए उससे पहले गृहस्थ को भोजन नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार संप्राप्ताय त्वतिथये प्रदद्यादासनोदके अन्नम चैव यथाशक्ति संस्कृत्य विधिपूर्वकम् तृणानि भूमि रुदकम् वाक चतुर्थी च सुनृता एतान्यपि सताम गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचनः। मनुस्मृति के अनुसार आए हुए अतिथि के लिए यथाशक्ति आसन, जल और अन्न सत्कृत करके विधिपूर्वक दें। तृणासन विश्राम के लिए स्थान, जल और मीठा बोल, इन चार बातों की कमी तो सत्पुरुषों के घर में कभी नहीं होती। कठोपनिषद में अतिथि सत्कार के महत्व का प्रतिपादन करते हुए आचार्य यम की पत्नी उनसे कहती है, आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम च इष्टापूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान् एतद् व्रंगते पुरुषस्याल्प मेधसो यस्या नश्नन वसति ब्राह्मणो गृहे। घर आए अतिथि का समुचित आदर सत्कार न होने पर मनुष्य की आशा, अज्ञात प्राप्त वस्तु की चाहना, प्रतीक्षा ज्ञात प्राप्य वस्तु की चाहना, संगतम सत्संगति से प्राप्त होने वाला फल, सुनृताम प्रिय वचन बोलने का फल, इष्ट यज्ञ का सुफल, आपूर्त समाज के कल्याणार्थ किए कर्मों का फल, संतान और पशु आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर यमाचार्य ने अपने घर पर 3 दिन तक भूखे रहने वाले ब्राह्मण अतिथि को प्रसन्न करने के लिए नचिकेता को 3 वर मांगने के लिए कहा। इस पर नचिकेता ने यमाचार्य से पितृदोष, स्वर्ग सुख की साधना तथा आत्मज्ञान के लिए 3 वरों की याचना की। गृहस्थ व्यक्ति से अन्न, जल एवं आवास आदि सुविधाओं का लाभ लेने वाले अतिथि का अनिवार्य कर्तव्य सुनिश्चित करते हुए कहा गया है कि यदि अतिथि गृहस्थ के घर 1 दिन या रात्रि विश्राम करे व अन्न जल का सेवन करे, तब उस सद्गृहस्थ की कल्याण कामना करते हुए उसे सत्य एवं धर्मयुक्त ज्ञान का उपदेश अवश्य करें, अन्यथा वो अतिथि पाप का भागी होगा। भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार को यज्ञ के समान पुण्य कर्म माना गया है। अकस्मात घर पर आ जाने वाले अतिथि का सेवा सत्कार करना अतिथि यज्ञ कहलाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में अतिथि यज्ञ का विस्तृत विवेचन करते हुए कहा है, अब 5वां अतिथि यज्ञ अर्थात जिसमें अतिथियों की यथावत सेवा करनी होती है उसको लिखते हैं। जो मनुष्य पूर्ण विद्वान, परोपकारी, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, सत्यवादी, छल कपट रहित और नित्य भ्रमण करके विद्या धर्म का प्रचार और अविद्या अधर्म की निवृत्ति सदा करते रहते हैं अतिथि कहते हैं। इस प्रकार भारत की सांस्कृतिक परंपरा में अतिथि सत्कार को यज्ञ के समान पुण्य कर्म एवं अतिथि को देवता के समान मानते हुए कहा गया है, अतिथि देवो भाव।
1: अभी आप चिंतन सुन रहे थे, ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कृषि चर्चा।
2: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम इस कृषि चर्चा में मानसून के दौरान जिन औषधीय फसलों की खेती की जाती है, जैसे जो तैयारियां की जाती हैं, उसके बारे में चर्चा करें। किसान भाइयों, आप सब जानते होंगे कि अब जो परंपरागत फसलें हम लोग करते रहे हैं, जैसे सोयाबीन इस सीजन में हम लोग अधिकतर उगाते हैं, उसके सब लोग जानते हैं कि

0: बहुत वो लाभकारी नहीं रह गई है। हालांकि मैं कभी ये नहीं कहता कि आप सोयाबीन पूरी तरह बंद कर दें, पर हम चाहते हैं कि इसके साथ साथ कुछ दूसरी फसलें जो कि आपको ज़्यादा फायदा दे सकती हैं या जो ज़्यादा सेफ हैं, सिक्योर्ड हैं, उनके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें हम औषधीय फसलों में इस समय इन फसलों की खेती कर सकते हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सफल रही हैं। उनमें हम मुख्य रूप से बात करते हैं, कुछ फसलें हैं जिससे आप कुछ परिचित होंगे, जैसे सफ़ेद मूसली के बारे में आपने बहुत सुना होगा, आपने शतावर के बारे में सुना होगा, आपने सर्पगंधा के बारे में सुना होगा, आपने स्टीविया के बारे में सुना होगा, आपने कालमेघ के बारे में सुना होगा। ये कुछ ऐसी फसलें हैं जो कि किसानों के लिए बहुत फलदायी रही हैं, बहुत लाभकारी रही हैं। और आज मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में आप सब जानते हैं औषधीय फसलों के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति आ रही है और बहुत सारे किसान जो हैं इन फसलों की खेती करने लगे। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि इनके लिए थोड़ा प्रिकॉशंस जिसको बोलते हैं, पूर्व सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। जिनमें सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि जो भी आप बीज खरीदें उसका थोड़ा ट्रीटमेंट करना ज़रूरी हो जाता है, उसको बीजोपचार जिसको बोलते हैं वो करना ज़रूरी होता है, जिसके लिए आप सब जानते हैं कि बावस्टीन एक बहुत अच्छा एक उपयोगी साधन रहा है। गौमूत्र से भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऐसे साधन हैं जिससे कि आप इनका बीजोपचार किया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो इसके बारे में है कि अच्छे बीजों का चयन करना, तो आपको बीज वहीं से लेना चाहिए जो कि आपको लगता है कि या तो खुद किसान हैं अच्छे इस चीज़ को उपजा रहे हैं, या कोई जो बहुत सारी शासन की संस्थाएँ हैं, जो सर्टिफाइड संस्थाएँ हैं मध्य प्रदेश में भी हैं, उनसे आपको इस तरह का बीज लेना चाहिए। नहीं तो इस तरह के गेड़ में फंस के किसान बहुत सारे परेशान भी होते हैं, क्योंकि जो बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, जो कि आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं और अल्टीमेटली किसान ये समझता है कि यार मुझे इतना ज़्यादा फायदा हो जाएगा, बट अल्टीमेटली उतना फ़ायदा होता नहीं, आप सब लोग जानते हैं। तो सेकंड चीज़ जो है, आपने को सही बीज का चयन करना है। तीसरी चीज़ जो इसके साथ साथ में आपको करनी है वो ये है कि आप जो खेत जहाँ पे ये लगा रहे हैं, आप ये देख लीजिए कि वहाँ की मिट्टी इस चीज़ के लिए क्या उपजाऊ है, उपयुक्त है, या आपके पास इतने साधन हैं, आप ढंग से उस खेत को आपने तैयार किया है, खाद जो देसी खाद जिसको अपन बोलते हैं गोबर की खाद, या और जो वर्मी कंपोस्ट इस तरह की जो खाद है उसको उपयोग करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। चौथी चीज़ जो आपको इसमें ज़रूरत है वो ये है कि जो भी करें आप, अगर आप पहली बार इस क्षेत्र में आने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप थोड़े से कम क्षेत्र में उसको प्रारंभ करें। उसका फायदा ये है कि एक तो आपको अनुभव मिल जाता है, दूसरा उसके साथ साथ में ये है कि बीज भी आपके घर का तैयार हो जाता है, और चौथा आपको पता चल जाता है कि किस तरह से ये फसल जो है किस तरह से बिहेव कर रही है, मेरे यहाँ हो रही है नहीं हो रही, इसमें क्या परेशानी आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये सारी बातें जो है इनका हम ध्यान रखें। उसके साथ साथ में अभी मध्य प्रदेश में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि आपको इसके बारे में जानकारी भी देती हैं। जैसे मध्य प्रदेश में आप जानते होंगे कि एक हमारे यहाँ औषधीय पादप बोर्ड का एक स्टेट लेवल की संस्था है जो कि औषधीय पादपों को प्रोत्साहित करती है, तो उनके विशेषज्ञों की या फिर जो एग्रीकल्चर कॉलेज हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत सारे हैं, बहुत सारे इस पे काम कर रहे हैं। जबलपुर वाला एग्रीकल्चर कॉलेज बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारे इंदौर का एग्रीकल्चर कॉलेज भी इस पे काम कर रहा है, खंडवा का एग्रीकल्चर कॉलेज काम कर रहा है, गंज बसोदा का एग्रीकल्चर कॉलेज काम कर रहा है। इन सब के यहाँ के विशेषज्ञ जो है उनका सहयोग आप जरूर लीजिए, या आपके पास में जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनका आप सहयोग लीजिए, तो आपको नेचुरल है कि आप बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ों को कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में बहुत सारे किसान अभी इस पे काम कर रहे हैं, अभी आपके पास समय है, मानसून आने में थोड़ा समय है, हालांकि समय पूर्व मानसून आ गया है, पर हम चाहेंगे कि आप अगर इस तरह का कोई सोच रहे हैं, आपकी सोच बन रही है, तो उन क्षेत्रों में जरूर आप भ्रमण करें, जाके देखें कि जो किसानों ने इनको उगाया है पहले उनसे चर्चा करें और उनके अनुभवों को अपने साथ में साझा करें। शासन द्वारा बहुत सारी प्रशिक्षण इस कामों के ऊपर किए जा रहे हैं कि कौन सी औषधीय फसलों की खेती की जाए, कैसी की जाए, तो अगर आप इच्छुक हों तो अपने जो स्थानीय आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है या बागवानी विभाग है, उनके जो अधिकारी हैं, डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, या उनके जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, उनसे आप संपर्क करें और उनसे जानकारी लें। तो जानकारी लेके आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सीजन में आप बहुत सारे, आप में से बहुत सारे लोग इस तरह का काम करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है, एक बार पुनः आपका धन्यवाद। ये थी कृषि चर्चा औषधि पौधों के बारे में, धन्यवाद।
1: अभी कृषि चर्चा का प्रसारण किया जा रहा था, ये आकाशवाणी भोपाल है। अब समय है अंतराल का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण

0: आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। श्रोताओं, अब हम आपको बता दें आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। इसमें आज आप सुनिएगा शिशु रोग विशेषज्ञ एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में सीनियर जॉइंट डायरेक्टर

डॉक्टर प्रभाकर तिवारी से बच्चों के इम्यूनाइजेशन पर महत्व पर चर्चा। तंबाकू निषेध दिवस पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर ज्योतिर्मय चक्रवर्ती से वार्ता। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल से वैज्ञानिक डी श्री अरुण शर्मा से मौसम का पूर्वानुमान। इसके बाद 8:30 बजे आप सुनिएगा कार्यक्रम सुरमई सवेरा और 9:15 पर लोक संगीत का प्रसारण किया जाएगा। इसमें आज आप सुनेंगे राम किशोर यादव के गाए बुंदेली लोकगीत।

इसके बाद 8:30 बजे आप सुनेगा कार्यक्रम सुरमई सवेरा और 9:15 पर लोक संगीत का प्रसारण किया जाएगा। इसमें आज आप सुनेंगे राम किशोर यादव के गाए बुंदेली लोकगीत।

9:30 बजे सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहान प्रस्तुत किया जाएगा। 10 बजे जिले की चिट्ठी। 10:05 पर सामुदायिक गान शिक्षण पाठ में आज आप सुनिएगा असामिया गीत, रचना होगी सतीश दास की। दिन में 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। 12:30 बजे कार्यक्रम संग्रहालय सिक्के अंतर्गत धारावाहिक सिस्कियां की 5वीं कड़ी। 1 बजे महिला कार्यक्रम, योगदान होगा आकाशवाणी शिवपुरी का। लोक संगीत 1:30 पर और सुगम संगीत का प्रसारण किया जाएगा 1:45 पर। योगदान होगा आकाशवाणी शिवपुरी का।

2:30 पर बच्चों का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति रहेगी। शाम 5:02 पर युवा साथी सुनेंगे युवावाणी कार्यक्रम। योगदान रहेगा आकाशवाणी शिवपुरी का। फिल्म संगीत 5:33 पर शाम 6 और रात्रि 8:30। शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में आज आप सुनिएगा 7:30 हेलो ग्राम सभा का प्रसारण। इसमें विषय होगा आगामी खरीफ फसलों में उर्वरक प्रबंधन एवं समसामयिक कार्य। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर प्रवीण कुमार जग्गा। रात 8:00 कार्यक्रम सुर्खियों में और 8:15 पर कार्यक्रम डगर विकास की प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुति होगी आकाशवाणी छतरपुर की।

रात 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में आज आप सुनिएगा ए परैया का सैक्सोफोन वादन। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। श्रोताओं, कुछ खास कार्यक्रम हम आपको पुनः बता दें। दिन में 11 बजे सुनिएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण। रात 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में, 8:15 पर कार्यक्रम डगर विकास की। श्रोताओं, ये थे आज की सभाओं में प्रसारित किए जाने वाले कुछ खास कार्यक्रम। ये आकाशवाणी भोपाल है।

0: समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर प्रदेश में नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान और रीवा में राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता शुरू। 144 इवेंट्स में 18 जिलों के 200 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री प्रदेश स्तरीय कॉलेज चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे रोड शो और आम सभा में भाग लेकर क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। डॉ. यादव शुजालपुर में जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किसानों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। लोहम देश के प्रमुख उद्यमों में से एक है जो लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है। इस दौरान श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में सैनिक की तरह कार्य करने वाले बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों की प्रशंसा की। श्री कुमार ने कहा कि असम, केरलम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हाल के विधानसभा चुनावों के दौरान उच्च स्तर की स्पर्धा देखी गई। उन्होंने देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों के समर्पित प्रयासों की भी सराहना की। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में अपने पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भी पढ़ा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि हिंदी पत्रकारिता कई द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने इस अवसर पर कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का आंदोलन है।
3: हमारे देश की इतिहास में हिंदी पत्रकारिता का एक अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोकमान्य तिलक जी से, महान पुरोधा गणेश शंकर विद्यार्थी जी से, पंडित मदन मोहन मालवीय जी से, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी से, चाहे अभ्युदय हो, चाहे उदंत मार्तंड हो, चाहे प्रताप हो, अनेक अनेक संस्करणों से इस देश को जागरूक करने में हिंदी पत्रकारिता का एक अहम योगदान।

0: जान रहा है।
1: आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। नर्मदापुरम जिले में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आज से नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के माध्यम से युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए समाज में नशा मुक्ति को लेकर जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें विद्यार्थियों को तंबाकू एवं नशे से होने वाले नुकसान की जानकारी भी दी जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को इस अभियान से जोड़कर नशा मुक्त वातावरण तैयार करना है। आगर मालवा में जिला स्तरीय नशा मुक्ति रैली और जन जागरूकता कार्यक्रम होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की थीम आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटिन और तंबाकू की लत का मुकाबला पर आधारित रैली कंपनी गार्डन से प्रारंभ होकर जिला पंचायत परिसर पर समाप्त होगी। रीवा में 20 वर्षों के बाद राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता की 114 इवेंट में 18 जिलों के 200 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के मिहिरसेन तरणताल में 54वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का कल शुभारंभ कर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खेल समरसता व भाईचारे का संदेश देते हैं। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि तरणताल के डाइविंग पुल का नाम कैप्टन बजरंगी प्रसाद के नाम पर होगा। श्री शुक्ल ने तरणताल में नए स्प्रिंग बोर्ड लगाए जाने के भी निर्देश दिए। कार्यक्रम में सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि इस प्रतियोगिता से नई प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी और देश व प्रदेश में अपना नाम रोशन करेंगी। अब बात मौसम की। नौतपा के बीच राज्य में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। राजधानी भोपाल में देर रात तेज आंधी चली, जिसके कारण जगह जगह पेड़ गिरने की घटनाएं हुई। छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में रातें भी बेहद गर्म रहीं। इस दौरान नरसिंहपुर का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, दतिया, भिंड, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा आधे से अधिक प्रदेश में आंधी तूफान की स्थिति निर्मित हो सकती है। खंडवा जिले में बादल छाए रहने से कई क्षेत्रों में बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ठंडी हवाएं चलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। छतरपुर जिले में 2 महीने में पुलिस हिरासत और थानों से जुड़े घटनाक्रमों में 4 लोगों की मौत के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सामाजिक कार्यकर्ता पीयूष दीक्षित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन और जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने सरकार, पुलिस महानिदेशक, सागर रेंज के आईजी, छतरपुर एसपी समेत संबंधित थाना प्रभारियों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अब बात क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अंतर्राष्ट्रीय कछुआ तस्कर मुनिवरम मुरुगेसन की जमानत याचिका को उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित अहिल्या उत्सव 2026 में आज इंदौर में सांस्कृतिक आयोजन होंगे। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने पंचायत स्तर पर प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को कैंप लगाकर जन समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। गुना में 3 दिवसीय दिव्यांगजन जागरूकता एवं समावेशी अभियान योजना कार्यशाला का कल समापन हुआ। भोपाल के भारत भवन में 7 दिवसीय सदा नीरा समागम के 4थे दिन कल शाम बाल नाटक मिराज मेलोडीज का आयोजन किया गया। सागर पुलिस प्रशिक्षण शाला में 5वें नव आरक्षक बुनियादी सत्र 2025-26 का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर दीक्षांत समारोह में 302 प्रशिक्षणार्थी की परेड संपन्न हुई। और बैतूल में आरओ 2026 ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का समापन कल हुआ। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
2: नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में।

ताज़ा तरीन खबरें, चुनिंदा फिल्मी गीत और विविध जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल का एक नया अंक लेकर हाजिर हूँ मैं मेघा तिवारी। दोस्तों, सड़कें केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का माध्यम नहीं बल्कि हमारे जीवन की गति और विकास की पहचान भी है, लेकिन इसमें से कुछ चुनौतियां भी बन जाती हैं। प्रतिवर्ष हजारों लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं और अनेक परिवार अपूर्णीय क्षति का सामना करते हैं। सड़क दुर्घटनाओं के पीछे कई कारण हैं, जैसे तेज गति से वाहन चलाना, यातायात नियमों की अनदेखी करना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना, नशे की हालत में वाहन चलाना, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग ना करना, ये सब कुछ प्रमुख कारण हैं। कई बार छोटी सी लापरवाही किसी व्यक्ति के जीवन और उसकी खुशियों को हमेशा के लिए प्रभावित कर देती है। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सड़क सुरक्षा केवल सरकार या यातायात विभाग की जिम्मेदारी नहीं, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो यातायात नियमों का पालन करे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाना, निर्धारित गति सीमा का पालन करना और सड़क संकेतों का सम्मान करना हमारी सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि सड़क पर चल रहे बाकी लोगों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। तो इस बात का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित समाज और सुरक्षित भविष्य का आधार है कि आप नियमों का पालन करें। नमस्कार भोपाल सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम में आपके लिए हैं कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत और साथ ही कुछ विशेष जानकारियां भी। इस वक्त आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नोटबुक से ये गीत।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: न्यूज ऑन AIR और DTH के ऑडियो चैनल्स के माध्यम से आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी भोपाल और कार्यक्रम है नमस्कार भोपाल। वक्त मिलाइए, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:28 हो चुके हैं। अब हम आपको समाचार पत्रों की सुर्खियां बताते हैं। पहली खबर है, शिक्षक पात्रता परीक्षा TET को लेकर स्थिति अब स्पष्ट हो चुकी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षकों को पात्रता तो सिद्ध करनी ही होगी और इसके लिए पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा। इसे देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग भी परीक्षा कराने की तैयारी में है। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे उनकी नौकरी पर कोई संकट नहीं रहेगा। परीक्षा साल में 2 बार कराई जा सकती है ताकि शिक्षकों के ऊपर पात्रता सिद्ध करने की जो तलवार लटक रही है वो जल्द से दूर हो जाए। ये भी विचार किया जा रहा है कि शिक्षकों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 2 अवसर दिए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बेहद स्पष्ट हैं। जिन शिक्षकों ने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है उन्हें 3 वर्ष के भीतर अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी। अगली खबर है, भोपाल में आंधी का दौर, 4 जिलों में गिरे ओले, 15 में बारिश। नौतपा के 6वें दिन यानी शनिवार को प्री मानसून गतिविधियों ने गर्मी के तपन को कम कर दिया। भोपाल में दोपहर 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली, वहीं देर रात 12 बजे के बाद 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फिर आंधी का दौर तेज चला। दिन का तापमान 40 डिग्री के ऊपर नहीं पहुँच सका। रात का तापमान 4.3 डिग्री की गिरावट से दर्ज किया गया। पारा 25.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। लगातार 6 दिन बाद रात में तापमान सामान्य से नीचे आया। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 15 जिलों में बारिश दर्ज की गई, जबकि शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर और सागर में ओले गिरे। एक और खबर है, शिक्षकों का ग्रीष्मावकाश 8 जून तक के लिए बढ़ा। मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल्स के शिक्षकों के ग्रीष्म अवकाश को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। अब शिक्षकों को 1 जून के बजाय 8 जून से स्कूल पहुंचना होगा। पहले जारी कार्यक्रम के अनुसार शिक्षकों का अवकाश 31 मई तक था और उन्हें 1 जून से स्कूल्स में उपस्थित होना था। और एक और खबर आपको दे दें, लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती वर्ष के अवसर पर GTB परिसर स्थित मृगनैनी में विशेष माहेश्वरी साड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रदर्शनी आज से 10 जून तक आयोजित होगी, जिसमें माहेश्वर की पारंपरिक बुनाई कला और अहिल्याबाई होलकर की विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदर्शनी में माहेश्वर के कुशल बुनकरों द्वारा तैयार की गई विभिन्न डिजाइंस, रंगों और पारंपरिक बॉर्डर वाली माहेश्वरी साड़ियाँ आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इन साड़ियों में लोक माता अहिल्याबाई होलकर के समय से चली आ रही बुनाई परंपरा की झलक देखने को मिलेगी। माहेश्वरी साड़ी अपनी हल्की बनावट, आकर्षक डिजाइंस और शाही गरिमा के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। ये थी कुछ प्रमुख खबरें। नमस्कार भोपाल सुन रहे हैं आप और

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। श्रोताओं, आज नो टोबैको डे यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है, जो कि कैंसर, हृदय रोग और श्वास संबंधी अनेक गंभीर बीमारियों का प्रमुख कारण माना जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस का उद्देश्य सभी को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है और इसके सेवन के लिए हतोत्साहित करना है। इस विषय पर कार्यक्रम में चर्चा करने हम स्वागत करते हैं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर ज्योतिर्मय चक्रवर्ती का। स्वागत है।
2: नमस्कार मैम, थैंक यू।
1: हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि आज का दिन जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है नो टोबैको डे के रूप में, और क्यों ज़रूरी है हमारे सभी श्रोताओं को जानना आज के दिन के बारे में?
2: देखिए, हमें ये पहले समझना ज़रूरी है कि इस चीज़ को वर्ल्ड नो टोबैको डे क्यों बोलते हैं। 1987 में WHO ने इसका अवेयरनेस फैलाने के लिए कि टोबैको और टोबैको के प्रोडक्ट्स जो हैं, तंबाकू और उसके जो पदार्थ हैं, उनके बारे में लोगों के मन में जागरूकता फैलाने एंड उनसे क्या दुष्प्रभाव होते हैं इसको बताने के लिए एक थीम को चूज़ किया था। 7 अप्रैल को पहले एक वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे उन्होंने शुरू किया था, उसके बाद

0: देखा कि स्मोकलेस टोबैको फॉर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए 31 मई एक डेट डिसाइड की गई थी जिसको हर साल हम वर्ल्ड नो टोबैको डे या तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं।
1: यू हैव बीन वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर यू नो विद दिस मिशन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, आप नोडल भी हैं, यहाँ पर कितने जागरूक हैं लोग और क्यों ज़रूरी है कि हम भी एक अवेयरनेस के रूप में आकाशवाणी के माध्यम से लोगों को प्रेरित करें, और अगर आपका भी कोई इनिशिएटिव है तो प्लीज़ वो भी हमारे साथ साझा करें।
0: देखिए, हम सबको मुझे लगता है पता है कि तंबाकू बेकार है या तंबाकू के पदार्थ बेकार हैं, स्मोकिंग बेकार है, नशा मुक्ति एक अभियान जैसे चलाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें इसीलिए चलाई गई हैं कि हम लोगों में जागरूकता फैला पाएं कि इसके दुष्प्रभाव क्या हैं। जैसे तंबाकू और तंबाकू के जो पदार्थ होते हैं उनसे विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। शुरुआत हम करें तो उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ऐसे लिवर एंड किडनी से संबंधित बीमारी क्या होता है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये बहुत टाइम लगता है इसको बनने में। धीरे धीरे धीरे धीरे ये हमारी बॉडी के जेनेटिक्स को भी मॉडिफाई कर देता है। उसकी वजह से हमारे दो चीज़ें होती हैं, एक ऑन्कोजीन्स और एक नॉन ऑन्कोजीन्स या प्रोटो ऑन्कोजीन्स, जो हमारे बॉडी में सेल की ग्रोथ को रोकते हैं या बढ़ने देते हैं, दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो अगर वो इन सेल्स को नहीं रोकेंगे तो धीरे धीरे ये वाली चीज़ हमारे जेनेटिक्स को बढ़ाती जाएंगी एंड सेल के मल्टीप्लिकेशन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश इसमें ओरल कैंसर में, टंग कैंसर में फर्स्ट एंड सेकेंड पोजिशन पर है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा एक बेकार बात भी है एंड इसके नीड ऑफ द आर भी है, ये ज़रूरी भी है सबसे ज़्यादा कि हम इसके बारे में लोगों को बताएं और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए हमारा एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या जिला अस्पताल में एक टोबैको सिजेशन सेंटर है, जहाँ पे हमारे साथ एक काउंसलर हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम का। इस चीज़ के लिए हमें स्पेसिफिक एक रूम दिया गया है जिसमें हम लोगों की काउंसलिंग करते हैं, उनके साथ बैठ के बात करते हैं, जितने ज़्यादा वो तंबाकू लेते हैं उसका छुड़वाने में उनकी मदद करते हैं, उनका एक डिपेंडेंस कम करते हैं एंड फाइनली अगर कोई ऐसे हैं जो खुद से नहीं छोड़ पा रहे तो हम उसके लिए एक निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं 2 मिलीग्राम की और 4 मिलीग्राम की, वो भी हम देते हैं। तो इस वर्ष हमने क्या किया है कि वैसे ये स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस थी कि 25 से लेके 31 मई तक हम एक विश्व तंबाकू निषेध हफ्ता मनाएं या वर्ल्ड नो टोबैको वीक मनाएं। तो उसमें हम लोगों ने जन जागरूकता फैलाई है, इधर टोबैको सजेशन सेंटर्स में अवेयरनेस कैंपेन लगाए हैं, नुक्कड़ नाटक किए हैं, रैलीज ऑर्गेनाइज की हैं और विभिन्न प्रकार की ये जो गतिविधियाँ हैं ये हमने पूरे ऑल ओवर भोपाल में की हैं एंड ऑल ओवर MP हो रहा है। मैं भोपाल की बात कर सकता हूँ बिकॉज मैं भोपाल का एक नोडल ऑफिसर हूँ, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें अलग अलग जगहों पे हुई हैं, पुलिस मुख्यालय में हुई हैं, शिक्षा विभाग में हुई हैं, अभी स्कूल्स बंद हैं नहीं तो वहाँ पे भी एक प्रॉपर एक पूरा वीक मनाया जाता है जिसमें बच्चों के पोस्टर्स और बैनर वगैरह हमने लगा के इधर जागरूकता फैलाई है, एनफोर्समेंट एक्टिविटीज़ की हैं, जैसे पहले लोगों को इसके बारे में बताया कि क्या दुष्प्रभाव हैं, अगर कोई नहीं मान रहा तो जैसे गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ MP की, तो हमने उन पे इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ लगा के चालान काटे हैं, उनको इस एक फ़ाइन किया है। इसका उद्देश्य पैसे लेना या ये नहीं है, इसका उद्देश्य ये है कि अगर लोगों को इस पे टोका जाएगा तब वो इस पे ध्यान देंगे, अदरवाइज़ कोई इस पे ध्यान नहीं देगा। तो ऐसा जिला अस्पताल में पूरा एक अच्छा माहौल बना था कि तंबाकू को छोड़ने में कैसे मदद कर सकते हैं सब लोगों की एंड कैसे हम लोग हमारे पूरी सिटी को एंड पूरे MP को एंड फाइनली देश को तंबाकू मुक्त बना सके।
1: जी जी जी, बहुत इम्पॉर्टेंट रहा ये सब जानना, लेकिन हम चाहेंगे कि बहुत ही संक्षेप में एक पॉजिटिव नोट के साथ आप एक मैसेज दें कि हाँ, दिस इज़ पॉसिबल, मेडिसिंस भी हैं, काउंसलर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और हमारी इंटेंशन भी है।
0: एक बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहूँगा, जैसे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये मध्य प्रदेश में पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जिसमें हम लोग ने 20 से 25 पैकेट जो दिन में खाते थे लोग उनको हम लोगों ने जीरो पे करके आए हैं एंड ऐसे 60 लोगों को हम तंबाकू मुक्त कर चुके हैं, जो खुद आके लोगों ने हमें बताया है, वीडियोस हमारे पास बना के भेजे हैं, हमें टैग किया है। तो एक समरी में मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि ये छोड़ना आसान है, जितना आसानी से आपने ये उठाया था उतनी ही आसानी से हम आपको छोड़ने में इसको मदद कर सकते हैं, आपको एक कदम लेना है, हमारे पास आना है, तो हम आपको

0: तरीके भी बताएंगे, जिस भी तरीके से पॉसिबल होगा उस तरीके से हम छुड़वाने में आपकी पूरी सहायता एंड सहयोग करेंगे।
1: जी, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता जागरूक हों और इस तरह की सक्सेस स्टोरीज से लोग मोटिवेट होते हैं। और थैंक यू वेरी मच सर, आपने कीमती वक्त निकाला और आपके सारे इनिशिएटिव्स के बारे में बताने के साथ साथ आपने हमें सक्सेस स्टोरीज भी बताई।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू।
1: ये थे राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर ज्योतिर्मय चक्रवर्ती।

0: नमस्कार, भोपाल सुन रहे हैं आप और वक्त हो चला है एक और जानकारी का। आप जानते ही हैं कि बच्चों का स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने में टीकाकरण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। टीके अनेक गंभीर और जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं और शिशु मृत्यु दर को कम करने में विशेष रूप से सहायक हैं, जो सिद्ध हो चुका है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को समय समय पर सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी विषय पर आज हम शिशु रोग विशेषज्ञ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर प्रभाकर तिवारी से बात कर रहे हैं। स्वागत है।
1: नमस्कार, और सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
2: वैक्सीन की इम्पोर्टेंस मौजूदा समय में सभी ने बहुत बारीकी से पहचानी है। आपके नजरिए से बच्चों के लिए वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन की क्या महत्व है और क्यों ये जरूरी है कि पेरेंट्स अवेयर हों, और इससे लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में भी बच्चों की हेल्थ पर किस तरह का असर होता है?
1: देखिए, हमेशा से हम लोग कहते रहे हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर।
2: जी,
1: आप जानते हैं कि वर्तमान में भारत

0: जिसमें लगभग 12 तरह की बीमारियों के विरुद्ध हम वैक्सीन सभी बच्चों को लगा रहे हैं, और अगली वैक्सीन 13वीं यानी कि HPV जिसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है और रूटीन वैक्सीनेशन में वो आने के लिए लगभग तैयार है। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो आपने देखा होगा कि अगर कोई भी बच्चा इनमें से किसी बीमारी के चंगुल में आ जाता है, हम उदाहरण ले पोलियो का, या हम उदाहरण ले खसरे का, या सबसे बड़ा उदाहरण हम लेते हैं छोटी माता का या बड़ी माता या चेचक का, जिसमें आपने देखा है कि कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई लोगों ने अपनी आंख गंवा दी और कई हमेशा के लिए कुरूप हो गए। पर हमने उस पर विजय काहे से पाई? हमने उस पर विजय पाई चेचक के टीके से। आप सभी जानते हैं कि 20वीं शताब्दी में जो हमने सबसे बड़ी विजय पाई थी वो थी चेचक पर विजय, और वो विजय जो थी वो सिर्फ और सिर्फ टीके के कारण ही हम पा पाए थे। इसी तरह इसका दूसरा एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल या उदाहरण है पोलियो पर। हमने देखा है कि कई बच्चे, कई बड़े भी पोलियो से ग्रसित होकर उनके हाथ या पांव में दिव्यांगता हो जाती थी और वो हमेशा के लिए दिव्यांग हो जाते थे। बट पिछले लगभग एक दशक से हमने पोलियो का कोई भी नया केस नहीं देखा है। तो ये ज्वलंत उदाहरण है ये समझने के लिए कि किस तरह से हमने वैक्सीन के थ्रू, हमने टीकों के माध्यम से इन जानलेवा बीमारियों पर पाई है। आपने गलघोटू का नाम सुना होगा, खसरे का नाम सुना होगा, ये बीमारियां लगभग खात्मे की कगार पर हैं, और उनमें सबसे बड़ा जो हमारा हथियार रहा है वो हथियार रहा है टीका।
1: जी जी जी जी बेशक सर, ऐसा भी होता है कि कुछ पेरेंट्स जो श्रोता हैं वो ऐसा कंफ्यूजन की स्टेट में होते हैं, क्योंकि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो वैक्सीन चार्ट होता है वो और जो भारत सरकार द्वारा जारी इम्यूनाइजेशन चार्ट है उससे मैच नहीं करता, या मैच करता भी है तो वो इतनी टेक्निकल लैंग्वेज या साइंटिफिक लैंग्वेज रहती है कि नहीं समझ में आता कि क्लब्ड वैक्सीन है या अलग अलग करके देते हैं। इस विषय पर आप किस तरह से हमारे जो श्रोता है उन्हें एनलाइटन करना चाहेंगे?
0: देखिए, सबसे जो अच्छा तरीका इसका है जो हमारा नया यूविन है, यूविन का जो पोर्टल है, उस पोर्टल पर आप पूरी टीकाकरण सारणी को हिंदी में, अंग्रेजी में, अपनी भाषा में देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपने एक और बात कही वो थी कि जो सरकारी टीकाकरण सारणी है और जो दूसरे टीकाकरण सारणी है जिनमें विशेष तौर पर अगर आप देखें तो IAP या इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है वो भी एक टीकाकरण सारणी को जारी करता है। तो जो हमारी सरकारी सारणी है उनमें न्यूनतम आवश्यक सभी टीकों का समावेश है। जो दूसरी सारणी है उसमें कुछ और भी टीके, जैसे कि अगर हम देखें तो बाजार में हम काफी पहले से HPL वैक्सीन या दूसरी रोटा वायरस वैक्सीन, इस तरह की वैक्सीन को लगाते आ रहे हैं, जिसको सरकार ने भी अपनी वैक्सीनेशन सारणी में शामिल कर लिया है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है तो जो हमारी सरकारी टीकाकरण सारणी है, समग्र सारणी है, वो लगभग पूर्ण है। कुछ अतिरिक्त टीके हैं जैसे कि टाइफाइड के टीके जो कि उपयोगी हो सकते हैं, तो उसके लिए आप अपने जो भी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, चिकित्सक हैं, आपके फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे एक बार आप संपर्क करेंगे तो आपको वो सही सलाह दी।
1: जी जी। और सर क्या ऐसा भी होता है कि जिन कंपनीज के वैक्सीन्स बच्चों को पहले लग चुके हैं बूस्टर डोज भी उसी कंपनी का लगना आवश्यक है?
0: आमतौर पर अगर देखें तो जो वैक्सीन्स रहती हैं उनमें रिप्लेसमेंट हो सकता है, पर अगर आप बाहर से लगवा रहे हैं तो एक बार इसको कंफर्म करना जरूरी है। पर जहां तक बात सरकारी उसकी है, वैक्सीन की है, वो पहले से जांच परख कर और उसके बाद कंटिन्यूएशन में जो यूनिवर्सली यूज हो सके उसी तरह की वैक्सीन को हम काम में ला करें। यहाँ पर एक और चीज मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा कि वैक्सीन सिर्फ वैक्सीन के तौर पर ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उनको जिस टेम्परेचर पर हम रखते हैं, जिस टेम्परेचर पर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, वहां जहां बनती है वहां से लेके जो हमारा एंड यूजर है यानी कि हमारे जो नौनिहाल है उनको लगाने तक, उनका

0: टेम्परेचर मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी है। तो आप चाहे वो सरकारी अस्पताल में वैक्सीन लगवाएं या किसी प्राइवेट क्लिनिक में वैक्सीन लगवाएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि ये जो कोल्ड चेन है इसको हमने मेंटेन करके रखा हुआ है अथवा नहीं। जहां तक बात सरकारी की है तो मैं फिर से आप सबको एश्योर करूंगा, हमारे श्रोताओं को आपके माध्यम से एश्योर करूंगा कि इसमें पूरी तरह से इस शीत श्रृंखला या कोल्ड चेन का ध्यान रखा जाता है, और कोई भी वैक्सीन अगर इस शीत श्रृंखला से बाहर होती है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसका उपयोग नहीं किया जाता।
1: जी, ये जानना हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा। थैंक यू वेरी मच सर, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे सभी श्रोताओं के साथ साझा करी।
0: थैंक यू, और सभी श्रोताओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही समय पर सही वैक्सीन अपने बच्चों को अवश्य लगवाएंगे और इन 12 जानलेवा बीमारियों से बचाएंगे और इनको हम भारत से मुक्त करने के प्रयास में सफल हैं।
1: डेफिनेटली, थैंक यू सर।
0: थैंक यू।
2: अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में सीनियर जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर प्रभाकर तिवारी। नमस्कार, भोपाल सुन रहे हैं आप, लीजिए सुनिए ये गीत।

0: आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। और श्रोताओं, मौसम हमारे दैनिक जीवन, कृषि गतिविधियों और यात्रा योजनाओं को सीधे प्रभावित करता है। बदलते मौसम के बीच सही और समय पर मौसम संबंधी जानकारी अगर मिल जाए तो हमारे बहुत से काम बिगड़ने से बच जाते हैं। आगामी दिनों में मौसम की स्थिति और वर्षा की संभावनाओं और तापमान के रुझान के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यक्रम में अब हमारे साथ होंगे मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के वैज्ञानिक डी श्री अरुण शर्मा। आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम में हम आपका बहुत स्वागत करते हैं।
1: नमस्कार सभी लोगों को, मैं बहुत बहुत नमस्कार। मध्य प्रदेश में अगर हम मौसम की बात करेंगे तो अभी जो है एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो पाकिस्तान और एडजॉइनिंग इंडिया के ऊपर जो है वो 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर जो है वो बहुत सक्रिय रूप से बना हुआ है, और उसके साथ से एक ट्रफ जो है वो हमारे पश्चिम मध्य प्रदेश और ईस्ट मध्य प्रदेश दोनों सब डिवीज़न से होता हुआ जो है वो उड़ीसा की ओर अग्रसर है, और साथ एक और ट्रफ जो है वो हमारे पंजाब राज्य से जाता हुआ जो है वो ईस्टवर्ड बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की तरफ भी जो है वो अग्रसर है। तो इन सब के होते हुए अभी जो आर्द्रता की जो फ्लो है, अर्थात ह्यूमिडिटी का जो आर्द्रता का जो फ्लो है वो हमारे मध्य प्रदेश के भागों में अभी सक्रिय रूप से बना हुआ है, जिस कारण साइक्लोनिक सर्कुलेशन के होते हुए जो है वो अभी आज भी जो है 1 तारीख को जो है वो हम गरज चमक के साथ और ओलावृष्टि के जो है वो ऑरेंज अलर्ट भी जो है वो वेस्ट और ईस्ट दोनों एमपी के अंदर जो है वो जारी किया गया है। साथ ही हैवी रेनफॉल का दौर भी जो है वो हमारे जैसे कि अलीराजपुर छबुआ जैसे जिलों के अंदर जो है वो देखने को फिलहाल अभी मिल पाएगा 1 और 2 तारीख के आसपास जो हमारी जो फोरकास्ट है उसके अंदर। तो कुल मिला के देखा जाएगा तो अभी फिलहाल जो नौतपा का जो एक आखिरी दौर चल रहा है उसके अंदर फिलहाल अभी लोगों को जो है वो हीट वेव से अभी निजात मिली है। पिछले 24 घंटे के अंदर फिलहाल अभी कोई हीट वेव जो है वो दर्ज नहीं की गई है। टेम्परेचर है वो लगभग जो है वो अभी अपने नॉर्मल तरीके से या फिर उससे भी इस मध्य प्रदेश के अंदर फिलहाल जो है वो अभी 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल अपने उससे नीचे चल रहा है, और अगर वेस्ट मध्य प्रदेश की बात की जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर के रूप जो है वो अभी फिलहाल अभी तो देखने को मिल पा रहा है। लेकिन इस सब वर्षा की गतिविधि के कारण जो है हम

0: एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो एटलीस्ट 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अपने नॉर्मल टेम्परेचर से रेंज से अभी जो है वो आगे आने वाले 2 या 3 दिनों के अंदर जो है वो कम हो जाएगा। तो हीट वेव का प्रकोप अभी फिलहाल जो है वो नहीं देखा जा रहा और लोगों को अभी हीट वेव से जो है वो निजात जो है वो अभी मिल पा रही है। साथ ही जो गरज चमक के साथ जो अभी छींटे पड़ रही हैं, जो ओलावृष्टि हो रही है, तो मौसम केंद्र भोपाल की तरफ से मेरे प्रदेश के लोगों को आग्रह है कि मौसम केंद्र के द्वारा दी गई जो निर्देश दिए जाते हैं उनका भी पालन करने की सख्त आवश्यकता है। जैसे कि आप थंडरस्टॉर्म लाइटिंग गस्ती विंड के दौरान जो है आप खुले जगहों के ऊपर पर्टिकुलरली जलाशयों के आसपास जो है वो ना खड़े हों, और हो सके तो अपने घरों के उपकरण भी जो है वो आप बिजली के उपकरण बंद कर दीजिए। हो सके तो आप जो है वो अपने घरों के अंदर ही बने रहिए और अभी किसी भी जलाशय के आसपास रहने की आपको आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रिकल उपकरण जो है वो बंद करने की आवश्यकता है। बिजली के तारों के आसपास या खंभों के आसपास पेड़ के आसपास का शेड लेने का जो है वो अभी बचना चाहिए, क्योंकि आंधी तूफान के मामले में जो है इनके अंदर करंट भी जो है वो पैदा हो सकता है, जिससे आपकी जानलेवा जो है वो स्थितियां जो है वो पैदा हो सकती हैं। तो इन सब के होते हुए प्रदेश के लोगों से मेरा अनुरोध है कि इन सब जानकारियों का पालन, इन सब के निर्देशों का पालन करके आप अपने जान माल की रक्षा जो है वो कर सकते हैं।
1: जी जी जी बिल्कुल, ये बहुत अहम था जानना। सर, क्या कोई ऐसी टेंटेटिव डेट्स हैं जब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेनफॉल होगा भोपाल में विशेष रूप से?
0: अभी देखिए, अभी अगर भोपाल की बात की जाए तो पर्टिकुलरली अभी जो आज 1 तारीख और 2 तारीख को अंदर भी जो है भोपाल के अंदर हम थोड़ी सी गरज चमक के साथ और 40 से 50 किलोमीटर की हवाओं के साथ जो है वो आइसोलेटेड रेन को जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली शाम के टाइम जो है वो हम चीज़ों को जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल अभी जो टेम्परेचर भी जो है वो हमारा नॉर्मल रेंज से अंदर भी चल रहा है, बल्कि आज का जो टेम्परेचर था वो काफ़ी, सुबह का टेम्परेचर 26.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो कि अभी नॉर्मल से जो है वो लगभग जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस कम है।
1: जी जी जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त निकाला और हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
1: नमस्कार, भोपाल में अभी हमारे साथ हैं मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के वैज्ञानिक डी श्री अरुण शर्मा।

0: और इसी गीत के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आशा करते हैं कि आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कल सुबह 7:20 पर ज़रूर सुनिए कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। हम हाजिर होंगे आपके लिए एक नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मेघा तिवारी को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, ये आकाशवाणी भोपाल है। समाचार प्रभात आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित की जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना

0: सूचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से

0: इश्नू पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
1: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचन क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
3: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर अल्फियान की जोड़ी से होगा।
1: केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा कर्नाटक मध्य प्रदेश और देश के उत्तर

0: और पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat.

दोस्तों, यूं तो सुबह सुबह हमें हर काम की आपदा भी होती है, पर जब थोड़ा जल्दी उठकर कुछ समय प्राणायाम, ध्यान और योग के लिए हम देते हैं, तो ये मानकर चलिए हमारे अंदर काम करने की एनर्जी डबल हो जाती है, मन एकाग्र हो जाता है, दिमाग सही दिशा में काम करता है और जो सकारात्मकता हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है उसका तो कहना ही क्या।

0: दी, हाँ? ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका,
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
3: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
4: Saving करने की भी यही उम्र है।
5: I know pa, save करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: I know na.
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो financially smart।
7: श्रोताओं, दिन की शुरुआत करें प्राणायाम से। प्राणायाम से सांसों पर और मानसिक शांति पर नियंत्रण होता है, और ध्यान मन को एकाग्र और तनाव मुक्त करने के लिए होता है।

श्रोताओं, अगर हम योग की बात करें तो शरीर, मन और आत्मा का आपस में तालमेल बिठाना ही योग है। ये सिर्फ शारीरिक कसरत नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है। योग कई तरीके से किया जाता है और योग के लिए एक लाइन में बोलूँगी कि योग सिर्फ खुद को देखना नहीं बल्कि खुद को निखारना और संवारना भी है। योग करने से हमारे शरीर में और दिमाग में बहुत सारे चमत्कारी फायदे होते हैं।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम सुरमई सबेरा को कुछ समय के लिए विराम देते हैं। ये आकाशवाणी भोपाल है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोहम का दौरा किया। इस दौरान श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मातरम के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। नर्मदापुरम जिले में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आज से नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की जा रही है। नौतपा के बीच राज्य में मौसम ने अचानक करवट बदली है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर चंबल, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सबीरा। श्रोताओं, सुरमई सबीरा कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं सुबह के अपने एक रूटीन की, और वो रूटीन शुरुआत अगर अच्छी हो तो आप ये मान के चलिए दिन बहुत अच्छा होता है। और इस दिन को बेहतर बनाने के लिए हमें अपने दिन की शुरुआत करनी है प्राणायाम, ध्यान और योग से। जैसा कि आप सभी इसके लाभ जानते हैं, प्राणायाम के, ध्यान के और योग के, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे समय समय पर आपको याद दिलाते रहें, आपसे बातचीत करते रहें, ताकि अगर आप अपनी जीवनचर्या में व्यस्त भी हो गए हैं तो उसको वापस से ध्यान मिलाएं, और अगर किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं तो एक बार फिर से आप इसे अपनाएं और योग करना शुरू करें। आप तो जानते ही श्रोताओं, नियमित योगासन से शरीर की मांसपेशियां बहुत मजबूत हो जाती हैं, शरीर का लचीलापन भी बढ़ता है। योग करने से पूरे शरीर में ऑक्सीजन और

खून का प्रभाव बहुत बेहतर होता है, जिससे त्वचा पर निखार आता है और दिल की बीमारियां दूर हो जाती हैं। प्राणायाम और आसन हमारे शरीर के अंगों को अंदर से मजबूत बनाते हैं, जिनसे बीमारियां हमारे पास भी नहीं भटकती हैं।

श्रोताओं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव सबसे बड़ा दुश्मन है। योग करने से शरीर में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का स्तर कम हो जाता है और मन शांत रहता है। और जो लोग नींद की समस्या से परेशान हैं, यानी जिन्हें नींद कम आती है, उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम और शवासन किसी थेरेपी से कम नहीं है।

का विज्ञान है, ये शरीर को मंदिर बनाने की कला है। तो चलिए इस बार योग दिवस आने के पहले हम खुद को फिट बना लें, खूबसूरत बना लें। और इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम समेटने की इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त सरिता को। अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए और भारत माता का ध्यान रखिए। तो कार्यक्रम सुरमई सवेरा अब यहीं पर संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सबीरा। लीजिए अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। लोक संगीत में आज हम आपको सुनवाते हैं रामकिशोर यादव के गाए बुंदेली लोकगीत, जिसमें आइए सबसे पहले सुनते हैं रामकिशोर यादव का गाया मौसम गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत के कार्यक्रम में राम किशोर यादव के गाए बुंदेली लोकगीत। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है।
1: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल,
2: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाणा।

जय झूलेलाल। सिंधियत जी सुरहाण में हाज़िर आहियां तव्हांजी रेडियो साथी मां चित्रा चेलानी। तव्हां सभिनी खे मुंहिंजी सिक भरी नमस्ते। साथियों, धर्माऊ महीनो हली रहियो आहे, जंहिंखे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास बि सॾिजे थो। शास्त्रनि मूजिबि इन महीने में विर्त, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन ऐं ध्यानु करण सां सभिनी ॾुखनि जो नाश थींदो आहे। भगवद गीता, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा ॿुधण जो बि अद्भुत फल मिलंदो आहे। अचो त अॼु कार्यक्रम जी शुरूआति बि असीं परमात्मा जे ध्यान सां कयूं ऐं पंहिंजे इष्ट देव साईं झूलेलाल जो ई भॼन ॿुधूं।

दोस्तों 31 मई 1725 में महाराष्ट्र जे चौंडी गोठ में जन्म थियो हो अहिल्याबाई जो। अहिल्याबाई जो संग मालवा जे राजा मल्हार राव होलकर जे पुट खांडेराव होलकर सा थियो हो। 1754 में पतिय जी लड़ाई में मौत खां पोए अहिल्याबाई के सहुरे मल्हार राव जो मार्गदर्शन मिलियो ए 1767 में मल्हार राव जी मौत खां पोए हुन मालवा राज जी कमान झली। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर सुनहरे अखरन में लिखियल एक अहड़ो नालो आहे जै राजपाट के पेंजे भोग जो वसीलो न पर शेवा जो साधन बणायो। उन दौर में जड़ें केतरियों ही जायफाओं घर जी चार दीवारिया में सिमटियल हुयों तड़ी अहिल्याबाई न रुगो मालवा साम्राज्य जी वागू झलियों पर पेंजी प्रशासनिक सूझबूझ सा राज के खुशहाली जी चोट ते पहुंचाए। संदस दरबार न्याय जो स्थान हो। तवारी गवाह आहे त कानून तोड़न ते हुन पेंजे माइटन के भी सजा दियण में हबक न कई। उन्हनि जी आर्थिक दूरदर्शिता जी शाहिदी इन ॻाल्हि मां मिले थी जो हुननि महेश्वर खे पंहिंजी राजधानी बणायो। इन सां उतां जे जुलाहनि खे आसिरो मिलियो ऐं महेश्वरी साड़ीअ जो कमु हज़ारे कुटुंबनि जे अटे लटे जो ज़रियो बणियो। अहिल्याबाई ज़ाइफ़ाउनि लाइ बि केतिरा ई कम कयाई जीअं ज़ालुनि खे जागीर में हक़ ॾियारणु बेवा ज़ालुनि खे ॿार गोद वठण जो हक़ ॾियारणु वग़ैरह। अहिल्याबाई मालवा जी राणी हुई पर संदसि दिलि सॼे भारत लाइ धड़कंदी हुई। परॾेही हमलावरनि हथां ठाहियल केतिरनि ई मंदरनि धर्मशालाउनि जो हुन जीर्णोद्धार करायो। हुन तलवार जे ज़ोर ते न पर त्याग ऐं पुनर्निर्माण ज़रिए भारत जे नक्शे ते हिकु अमिट छाप छॾी। संदसि जीवन अॼु बि सभिनी लाइ हिकु मिसाल आहे। अॼु

अहिल्या बाई होलकर जयंती जे ॾींहुं उन्हनि जे चरणनि में असांजो नमन आहे। साथियों, इन्हीअ सां गॾु ई अॼु 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस बि आहे। हीउ ॾींहुं मल्हाइण जो उद्देश माण्हुनि में तंबाकू सां थियण वारनि जानलेवा नुक़सान बाबति सुजाॻी आणणु ऐं तंबाकू छॾण लाइ प्रेरित करणु आहे। तंबाकू जो सेवन अॼु कंहिं वैश्विक महामारी खां घटि न आहे। बीड़ी, सिगरेट, गुटका ऐं खैनी जहिड़ी शयूं रुगो इंसान जे शरीर खे ई नुक़सान नथियूं कनि, पर केतिरनि ई खिलंदड़ कुटुंबनि खे बि तबाह कंदियूं आहिनि। इन गंभीर मसइले ॾांहुं ध्यानु छिकण लाइ विश्व स्वास्थ्य संगठन माना WHO पारां साल 1987 में हीउ ॾींहुं मल्हाइण जी शुरूआत कई वई। तंबाकू में निकोटीन ऐं ॿिया नुक़सान कंदड़ रसायन हूंदा आहिनि, जिन सां कैंसर, दिलि ऐं फेफड़नि जी बीमारियूं थियण जो ख़तरो रहंदो आहे। ख़ासि ॻाल्हि आहे त जॾहिं को माण्हू धूम्रपान कंदो आहे त हू रुगो पाण खे न पर पंहिंजे आसे पासे वेठल हर माण्हूअ खे ख़तरे में थो विझे, जंहिंखे पैसिव स्मोकिंग चइजे थो। साथियों, तंबाकू निषेध हिकु ॾींहं जो न पर सॼे जीवन जो संकल्प हुअणु खपे। अचो त असीं सभु इहा पह कयूं त न त तंबाकू वापराईंदासीं ऐं न ही पंहिंजनि खे वापराइणु ॾींदासीं। तंबाकू खे न ऐं ज़िंदगीअ खे हा चवंदासीं। ऐं हिन ज़रूरी ॼाण खां पोइ, छो त असांजे नंढड़नि नंढड़नि ॿारनि जी स्कूल जी छुटियूं हली रहियूं आहिनि, त पेश आहे भगवंती नावाणी ऐं साथियुनि जी आवाज़ में ॿारनि जो ही गीत।

0: दोस्तो हाणे वक़्तु आहे अॼु जी ॿी ज़रूरी ॼाण जो। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मल्हायो वेंदो आहे। कुदरत असांखे छा न ॾिनो आहे, वहंदा झरणा, झलंदा झंग, नीरो उभ ऐं चहकंदड़ पखी। पर आधुनिकरण जे इन दौर ऐं तरक़ीअ जी अंधी भॼभॼा में असीं कुदरत जे इन सींगार खे विञाए वेठा आहियूं। प्रदूषण मार कई आहे, हवा में वहंदो धुओं ऐं नदियुनि में वहंदो किचरो धरतीअ जा ज़ख़्म बणिजी पिया आहिनि। ग्लोबल वॉर्मिंग ऐं बदिलियल मुंद इन्हीअ ॻाल्हि जी शाहिदी आहे त जेकर असां हाणे बि न संभलियासीं त आईंदह भयानक थी सघे थो। असां सभई गर्मीअ जी मार ॾिसूं ई पिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जा ही अखर आहिनि त कुदरत वटि हर माण्हूअ जी ज़रूरत पूरी करण लाइ सभु कुझु आहे, पर लालच पूरी करण लाइ न आहे। दोस्तो असांखे इहो समुझणो पवंदो त असीं कुदरत जा मालिक न आहियूं ऐं पर्यावरण जी सार संभाल कंहिं सरकारी योजना जी मोहताज न, पर असांजी आदत हुअणु घुरिजे। पर्यावरण दिवस ते असीं रुगो भाषण ॾेई या ॿुधी वेही न रहूं, पर पंहिंजी ज़िंदगीअ में बि तब्दीलियूं आणियूं। वण पोखियूं ऐं उन्हनि जी संभाल कयूं। प्लास्टिक घटि में घटि वापरायूं, पाणी न विञायूं, अपसाइक्लिंग ऐं रीसाइक्लिंग ॾांहुं रुख कयूं। नंढा नंढा क़दम वॾी क्रांति आणे सघनि था ऐं सुजलाम सुफलाम जो सुपिणो सच थी सघे थो। दोस्तो इन्हीअ मौज़ूअ ते विशेष ॼाण ॾियण लाइ आकाशवाणी भोपाल में अॼु असां सां जुड़ियल आहिनि वार्ताकार सरिता खियानी जी। अचो त ॿुधूं था उन्हनि खां इहा विशेष वार्ता।
1: जय झूलेलाल भावरो ऐं भेनरो, मां सरिता खियानी तव्हां सां रूबरू आहियां। अॼु असां चर्चा कंदासीं पर्यावरण ते। त सभिनी खां पहिरियों पर्यावरण जो मतिलबु छा आहे? पर्यावरण जो मतिलबु आहे परी प्लस आवरण। परीअ जो मतिलबु हूंदो आहे पृथ्वी ऐं आवरण जेको सॼी पृथ्वीअ जे सभिनी पासनि खां घेरे रहियो आहे उहो आहे आवरण। सवली भाषा में चइजे त पृथ्वीअ ते जो बि मौजूदु आहे उहो ई पर्यावरण आहे। असांजे आसे पासे जे वातावरण खे ही पर्यावरण चइबो आहे। पर्यावरण में जैविक ऐं अजैविक सभई ईंदा आहिनि। जैविक माना जिन में जान आहे, जेके बि जीवित आहिनि, जीअं त वण टण पखी कीड़ा माकोड़ा जानवर ऐं असां माण्हू बि ईंदा आहियूं। अजैविक में उहे ईंदा आहिनि जेके जीवित न आहिनि, माना नदियूं, पहाड़, हवा, पाणी, पृथ्वी, ये सब। पर्यावरण ठहंदो आहे चार मंडलनि सां: जल मंडल, वायु मंडल, जैव मंडल, स्थल मंडल। इन सभिनी खे पर्यावरण चइबो आहे। जल मंडल में जल, जलीय पौधा, जलीय जीव जंतु ईंदा आहिनि। वायु मंडल में घणेई प्रकारनि जी गैसूं हूंदियूं आहिनि, धूल जा नंढा नंढा कण, पखी, इहे सभई ईंदा आहिनि। स्थल मंडल में इंसाननि जी ठहियल शयूं ऐं सभई स्थल जी प्राकृतिक शयूं ईंदियूं आहिनि। ऐं जैव मंडल में सभई जीवित ईंदा आहिनि। जंहिं जॻह ते पाणी, हवा, ज़मीन इहे सभु हूंदा आहिनि, उते ई जैव मंडल हूंदो आहे। हिननि सभिनी मंडलनि खे मिलाए करे ठहंदो आहे पर्यावरण। पर्यावरण खे असां ॿिनि भाॻनि में वंडी सघंदा आहियूं: प्राकृतिक, यानी जेके भॻवान ठाहिया आहिनि, पाणी, हवा, जीव जंतु, वण, पृथ्वी, पहाड़, नदियूं, समुंड ऐं अलाए छा छा। ॿियो आहे अप्राकृतिक शयूं, जिन खे इंसान ठाहियो आहे, जीअं रोड, मकान, गाॾियूं, हवाई जहाज ऐं ॿिए बि घणेई शयूं। पर्यावरण जो असांजे जीवन में ॾाढो महत्व आहे। असांखे पर्यावरण सां ऑक्सीजन, पाणी, फल, अनाज, खाधे जी हर शइ मिलंदी आहे। असांजे जीवन जे लाइ ज़रूरी आहे शुद्ध हवा।

शुद्ध पाणी, प्रकृतिअ सां मिलण वारा फल अनाज, पर अफ़सोस पर्यावरण में प्रदूषण फैलजी रहियो आहे। आख़िर इहो प्रदूषण अचे किथां थो? इहो सभु असां करे रहिया आहियूं। हा, तव्हां सही ॿुधो, इहो सभु असां करे रहिया आहियूं। जंगलनि जे वणनि खे कटे रहिया आहियूं। उहे वण जेके असां खे साह खणण जे लाइ ऑक्सीजन ॾींदा आहिनि ऐं असां खे नुक़सान पहुचाइण वारी कार्बन डाइऑक्साइड खे एब्ज़ॉर्ब कंदा आहिनि। इहो ई न, बारिश जे मौसम में बोड अचण खे रोकींदा आहिनि। फैक्ट्रीज़ जा निकिरण वारो धुओ ऐं ज़हरीली गैस हवा में मिली रही आहे, हवा खे प्रदूषित करे रही आहे। असां रुगो वायुमंडल खे ई प्रदूषित न करे रहिया आहियूं, बल्कि जलमंडल खे बि प्रदूषित करे रहिया आहियूं। जल असांजे शरीर जो 70% हिसो आहे। खाधे जे बिना इंसान वरी बि रही सघे थो, पर जल जे बिना हिकु ॾींहुं बि नथो रही सघे। पर असांजी ठहियल फैक्ट्रीज़, केमिकल्स मिलियल पाणी नदियुनि में विझी करे नदियुनि जे जल खे प्रदूषित करे रहिया आहिनि। स्थल मंडल बि प्रदूषण सां बचियल कोन्हे। ज़मीन में घणेई केमिकल्स ऐं पॉलीथिन विझी करे असां ज़मीन खे प्रदूषित करे रहिया आहियूं। पर्यावरण खे संरक्षण जी ज़रूरत आहे। इहो सभिनी खां पहिरियों महसूसु कयो वियो 1972 में। स्टॉकहोम स्वीडन में 1972 में वैश्विक स्तर ते हिकड़ो सम्मेलन रखियो वियो। हिन सम्मेलन में घणेई देशनि भाग वरितो ऐं पर्यावरण संरक्षण जी मुहिम हलायऊं। ही सम्मेलन 5 जून 1972 जो थियो। इन करे ॿिए साल 5 जून 1973 खां 5 जून खे पर्यावरण दिवस जे रूप में मल्हाइण जी घोषणा कई वई। स्टॉकहोम जे सम्मेलन खां 20 वर्ष खां पोइ 1992 में रियो में पृथ्वी सम्मेलन थियो, जंहिंमें एजेंडा 21 रखिया विया। इन करे इन सम्मेलन खे रियो 21 बि चयो वेंदो आहे, जंहिंमें असांजे भविष्य खे बचाइण जे लाइ छा छा उपाय कजनि, इहो वीचार कयो वियो। हिन सम्मेलन में 2 संगठन ठहिया, हिकड़ो UNFCCC, ॿियो कॉप। कॉप जी बैठक हर साल थींदी आहे। हिन बैठक में पर्यावरण खे कीअं बचायो वञे, इन जी चर्चा बि थींदी आहे ऐं बचाव जा उपाय ऐं कारण, इहे सभई वीचार कया वेंदा आहिनि ऐं उन्हनि ते कीअं अमल कजे, इहो सोचियो वेंदो आहे। हाणे मां तव्हां खे ॿुधायां थी ओज़ोन परत जे बारे में। ओज़ोन जी परत पृथ्वीअ खे सिज जी पराबैंगनी किरणनि खां बचाईंदी आहे। पराबैंगनी किरणनि खे एब्ज़ॉर्ब करे वठंदी आहे ऐं हीअ पराबैंगनी किरणूं असांजे लाइ तमामु नुक़सान वारियूं आहिनि। पर 16 सेप्टेम्बर 1987 में मॉन्ट्रियल में हिकड़ो सम्मेलन थियो। हिन में सभिनी खां पहिरियों इहो रखियो वियो कि ओज़ोन जी परत जेका आहे असांजी रक्षा कंदी आहे उहा सन्नी थींदी थी वञे। हुन में टुंग थी विया आहिनि ऐं उन खे रोकण जे लाइ छा करणु घुर्जे, इन्हनि ॻाल्हियुनि ते ध्यानु ॾिनो वियो। ओज़ोन जी परत जे सन्हे थियण सां ग्लोबल वार्मिंग वधी रही आहे। ओज़ोन जी परत जे सन्हे थियण जो कारण कुझु नुक़सान पहुचाइण वारी गैसेस आहिनि। उन में ख़ासि करे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस आहे। ओज़ोन जी परत सां रिएक्ट करे इहे ज़हरीली गैसूं उन खे सन्हो कंदियूं वेंदियूं आहिनि ऐं ओज़ोन जी परत जे सन्हे थियण सां ग्लोबल वार्मिंग वधी रही आहे। इहे जेके अल्ट्रावॉयलेट किरणूं आहिनि जेको ओज़ोन जी परत उन खे एब्ज़ॉर्ब करे वठंदी आहे, उहे असांजे लाइ तमामु ख़तरनाक आहिनि। उन्हनि सां त्वचा जो कैंसर, त्वचा जी बीमारियूं, मोतियाबिंद, इहे सभु वधी सघनि था। यूवी किरण जिन खे ओज़ोन परत एब्ज़ॉर्ब कंदी आहे, जीव जंतु ऐं पौधनि ते बि असर करे सघे थी। पर्यावरण जे संरक्षण जी कोशिश सॼे विश्व में थी रही आहे। असांजी सरकार बि संरक्षण जे लाइ कम करे रही आहे, पर रुगो सरकार ही न, असांजी बि ज़िमेदारी आहे त असां पर्यावरण खे शुद्ध रखण जे लाइ कोशिश कयूं। असां सभई कोशिश कयूं त कुझु वण लॻायूं ऐं पॉलीथिन जो उपयोग करणु बंदि कयूं।

0: असां सभई पर्यावरण जो संरक्षण कंदासीं त पर्यावरण शुद्ध रहंदो। असां पंहिंजे जनम ॾींहं ते हिकु पौधो ज़रूर लॻायूं। जेके शादीशुदा आहिनि उहे पंहिंजी शादीअ जी वर्षगांठ ते बि पौधो लॻाइनि। रुगो पौधो लॻाइणो कोन्हे, उन जो ध्यानु बि रखणो आहे, जीअं इहे पौधा वॾा थी करे पर्यावरण जे प्रदूषण सां पर्यावरण खे प्रदूषण सां बचाइनि। सरकार पंहिंजी कोशिश करे रही आहे, पर असांजी बि ज़िमेदारी आहे त असां पर्यावरण खे बचायूं ऐं स्वस्थ जीवन जीयूं। पर्यावरण स्वच्छ हूंदो त असांजो जीवन बि स्वस्थ हूंदो।
1: महिरबानी सरिता जी हिन जानकारी लाइ। ऐं दोस्तो, हाणे हलंदे हलंदे अचो त कार्यक्रम में मज़ो था माणियूं कमला केसवानी ऐं कला हज़ारी जी आवाज़ में हिन सुहिणे गीत जो।

दोस्तो, हिन गीत सां गॾु ई असांजे अॼु जे कार्यक्रम जो वक़्तु बि समाप्त थो थिए। उमेदु आहे त तव्हांखे कार्यक्रम ज़रूरु वणियो हूंदो। पंहिंजा वीचार ऐं पंहिंजा राया असां ताईं ज़रूरु पहुचाईंदा आकाशवाणी भोपाल जे फेसबुक पेज ज़रिए। हाणे पंहिंजी रेडियो साथी चित्रा चेलानी खे ॾींदा इजाज़त। तव्हां

0: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी, आलेख तनुज तिवारी का, वाचन स्वर शरद बाघेला के।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी, आलेख तनुज तिवारी, वाचन स्वर शरद बाघेला। नौतपा के अंतिम दौर में नर्मदापुरम जिले में भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों को बादल छाने और हल्की हवाएं चलने से राहत मिली। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना जताई है। मानसून से पहले बाढ़ प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने और क्विक रिस्पांस टीम गठित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वहीं आपदा की स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य के लिए होमगार्ड विभाग को उपकरणों की जाँच करने और स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दवाइयाँ और एम्बुलेंस तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य पर इस वर्ष 3,94,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इसके मुकाबले 5,83,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन हुआ। गेहूं बेचने वाले किसानों को 1,507,64,00,000 रुपए का भुगतान किया जाना है, जिसके विरुद्ध अब तक 947,51,00,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अब ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द उपार्जन के लिए 25 मई से किसानों का पंजीयन शुरू हो गया है। पंजीयन की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। सेठानी घाट पर आम महोत्सव में जिले के निजी क्षेत्र, शासकीय फर्मों और प्राकृतिक रूप से उत्पादित आमों की विभिन्न किस्मों का प्रदर्शन किया गया। लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली, मल्लिका, चौसा, अल्फांसो, केसर, तोतापरी, हिमसा, बादामी, सफेदा और मालगोआ सहित अनेक प्रजातियों की विशेषताओं और स्वाद की जानकारी लोगों को दी गई। सीएम हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए नर्मदापुरम जिले के कई अधिकारियों ने प्रदेश के टॉप 5 और

0: और टॉप 10 में स्थान बनाया। इस उपलब्धि पर कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। नर्मदापुरम जिले में जनजाति समुदायों को शासन की योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से जिले में संचालित जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले IEC अभियान के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई और शिविरों का आयोजन कर जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बैंक खाते और वनाधिकार पट्टों से संबंधित मामलों का निराकरण किया गया। नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आने वाले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 3 दिवसीय ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना में 315 गिद्ध दर्ज किए गए। इनमें 299 भारतीय गिद्ध, 11 सफेद गिद्ध और 5 सफेद पीठ वाले गिद्ध शामिल हैं। पिछले वर्षों में ये संख्या 280 से 290 के बीच रही थी। गंगा दशहरा के अवसर पर परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने नर्मदापुरम के विवेकानंद घाट पर श्रमदान कर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जन अभियान परिषद द्वारा ग्राम आवरी में कलश यात्रा, जनसंवाद और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे ने जिले की सड़क सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए दुर्घटनाओं और जनहानि में कमी लाने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मकान सूचीकरण का कार्य इन दिनों तेजी से जारी है। इस अभियान में प्रत्येक मकान का विवरण मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से दर्ज किया जा रहा है, जिससे डेटा संग्रहण अधिक सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध हो सके। स्थानीय निकायों के माध्यम से पूर्व में ही सभी मकानों पर नंबर अंकित किए जा चुके हैं, जिसके आधार पर अब सूचीकरण का कार्य प्रगति पर है। जनजातीय बाहुल्य विकासखंड केसला में 1 माह का ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर कल संपन्न हुआ। शिविर समन्वयक आरती शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण के साथ फिट इंडिया मूवमेंट के तहत विभिन्न खेलों सहित नियमित योगाभ्यास भी कराया गया। नर्मदापुरम जिले में आज से विश्व तंबाकू निषेध दिवस से नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के माध्यम से युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए समाज में नशा मुक्ति को लेकर जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में विश्व पर्यावरण दिवस के तहत रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यात्रियों और आम नागरिकों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की तैयारियों के तहत जिले भर में घर घर योग, हर व्यक्ति निरोग अभियान चलाया जा रहा है। नियमित योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज सिंह यादव ने बताया कि अब तक करीब 3,000 से ज्यादा लोग योग शिविरों में हिस्सा ले चुके हैं। नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है सामुदायिक गान शिक्षण पाठ। इसमें आज आप सुनेंगे असमिया गीत। रचना है सतीश दास की।
2: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हो ना असमिया भाषा गीत?
3: जी हाँ।
2: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का, प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माती रे,
3: माती रे।
2: ए माती रे, मोरो मोते,
3: मोरो मोते।
2: माती के,
3: माती के।
2: सुमिलो, माती के सुमिलो, माती के सुमिलो। हो गया ना यहाँ तक? आगे लिखो। ए माती ते,
3: ए माती ते,
2: ए माती ते जीवन, ए माती ते ज नहीं बोलना, इसको ज बोलना। ये ए माती ते जीवन सोबी, जीवन
3: सोबी।
2: जी कैसे, ज के नीचे बिंदी लगा लेना है ना। तो जीवन सोबी आकी, आकी दोबारा आकी, आकी आकी मोसीलो। अब पहला अंतर आएगा इसके बाद। दूर,
3: दूर

0: ये जो ना आकाश श को बोलते हैं वहाँ ख की तरह से, ये ख और ह के बीच में आका खार भी नहीं, आका हार भी नहीं, आका हार, आका हार लिखो, दूर आका हार, रोहन कियोनु लागे लागे, खागोर तोलीर, खागोर खागोर, ख नहीं बोलना ह, खागोर तोलीर, खागोर मतलब समुद्र के तल में, तो खागोर तोलीर, मानिक कियो, मानिक कियो नू, मानिक कियो नू लागे लागे,
1: लागे लागे।
0: इसके आगे है आहा आहा,

0: ਕੀਓ ਨੂੰ
1: ਲਾਗੇ
0: ਲਾਗੇ ਖਾਗੋਰ ਟੋਲੀਰ ਖਾਗੋਰ ਖਾਗੋਰ ਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਖ ਖਾਗੋਰ ਟੋਲੀਰ ਖਾਗੋਰ ਮਤਲਬ ਸਮੁੰਦਰ ਕੇ ਤਲ ਮੇ ਤੋ ਖਾਗੋਰ ਟੋਲੀਰ ਮਾਨਿਕ ਕੀਓ ਮਾਨਿਕ ਕੀਓ ਨੂ ਮਾਨਿਕ ਕੀਓ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ इसके आ गया है आहा आहा फिर मातिर बुकुत हाँ मातिर बुकुत मोनोर मालोती बूटोलो मोनोर मालोती बुटोलो इसके बाद फिर वही आ जाएगा एई माती रे मोरो मोते फिर दूसरा अंतरा है मोनोर
1: मोनोर
0: कोरोनी रे
1: कोरोनी रे
0: हुरोर हुरोर पापोरी रे
1: पापोरी रे
0: पापोरी रे आजी इतना हो गया ना
1: जी हाँ
0: आगे हुकुमार
1: हुकुमार
0: थापो
1: थापो
0: नाहुजुवा
1: नाहुजुवा
0: हुकुमार थापो नाहुजुवा आगे लिखा है ना
1: जी
0: हाँ हुंदोर
1: हुंदोर
0: खनी ख खुदीनोर नौतून दृष्टि ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके दृष्टि दृष्टि शनि सही बोलना दृष्टि दृष्टि कौनो ना हुआ आगे ना अच्छा ठीक है गाना सिखाना शुरू करते हैं स्वर दीजिए जरा

0: Is that all right, Captain?
1: अच्छा आप शुरू से लेंगे सारा गाना है ना, 1 2 3 4

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे सामुदायिक गान शिक्षण पाठ। इसमें आज आपने सुना असमिया गीत, रचना थी सतीश दास की। ये आकाशवाणी भोपाल है।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है। अब समय है अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज़ रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
1: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। देव कोहली के लिखे गीत को संगीत में बनाया है राम लक्ष्मण ने। फिल्म है मैंने प्यार किया।

कार्यक्रम का अगला गीत बहुत ही खूबसूरत, जिसे गाया है अनुराधा पुडवाल और कुमार सानू ने। रानी मलिक के गीत को संगीत में बनाया है नदीम श्रवण ने और फिल्म है आशिकी।

कार्यक्रम का अगला गीत उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, शब्द रचना है समीर की और फिल्म का नाम है दिल।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत स्वर हैं अनुराधा पोडवाल के, समीर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने, और फिल्म है दिल है कि मानता नहीं।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अहिल्याबाई का जीवन सुशासन, देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव का अनुकरणीय आदर्श है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान एप्लीकेशन के प्रायोगिक संस्करण का शुभारंभ किया। अनूपपुर जिले में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य शासन की ओर से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए। और मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश सहित देश के कुछ अन्य राज्यों में कल तक तेज वर्षा की संभावना जाहिर की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। श्रोताओं, हम आपको ले चलते हैं दिल्ली और सुनवाते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: शास्त्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
5: चले
6: ले, आ गया नया किडबैग।
7: RBI कहता है
0: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
8: पर्सनल लोन ऑफर
9: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
8: फ्री ट्रिप टू दुबई,
9: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
10: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
9: तो क्या करूं?
10: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
9: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
10: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
11: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
12: नमस्कार सर। नमस्कार।
13: नमस्कार सर।
1: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे, फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले, फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग

0: के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड ख़त्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा, तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
2: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर, फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा, तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीज़ें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज़ किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है, तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज़ किया है हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
0: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूँगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
2: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा, तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
0: अनिमेश जी।
1: सर, मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स तो

मुझे बोल दे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे। बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं, क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है। बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई

0: सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले एनिमेश बता दे।
0: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रुबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है। बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को ज़रूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पर जाके बैठ, वहाँ पर स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के

दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा

राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा।

इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई।

0: करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूं गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह संयुज्य अहम् अत्यन्तम् आनन्दितः अस्मि। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अस्माकं देशवासिनः देशहिते समाजहिते च एतादृशानि अद्भुतानि कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। वयं च यदा तद्विहितानां कार्याणां विषये शृणुमः तदा वयं नूतनां प्रेरणां प्राप्नुमः। अद्य कार्यक्रमस्य आरम्भम् अहम् एथलेटिक्स् इत्येतस्मिन् क्रीडाक्षेत्रे देशस्य अनयैव उपलब्ध्या करिष्यामि। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव झारखण्डराज्यस्य राँचीनगरे नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन इत्याख्या प्रतियोगिता समायोजिता। एतस्यां प्रतियोगितायां देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगताः प्रायः 800 क्रीडकाः सहभागितां कृतवन्तः। एतस्मिन् नवधौ भिन्नासु चतुर्षु स्पर्धासु चत्वारि राष्ट्रियमानाङ्कनानि भग्नानि जातानि। गुरिन्दर्वीरसिंहः, विशाल टीके इत्यसौ, तेजस्विन् शङ्करः, देवमीणा, कुलदीपकुमारश्च एतैः मित्रैः विभिन्नेषु वर्गेषु

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं पहला गीत फिल्म लुटेरा से। स्वर है मोनाली ठाकुर के, गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है अमित त्रिवेदी का।

इस गीत को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। नेपाल बैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने इसी गीत को सुनना चाहा था। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सिलसिला से। स्वर हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों के। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीतमय बनाया है शिवहरी ने।

इस गीत को सुनना चाहा था कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने। इसी गीत को सुनना चाहा था शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय ने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म कुर्बानी से। आवाज़ें कंचन, मनहर उदास और आनंद की। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

इस गीत को पसंद किया है आप सभी श्रोताओं ने। गांधी चौक रोपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर मीका, जयतेक बिरक और मीका बिरक ने

0: कुर्बानी फिल्म के इस गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।
1: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल
2: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक सिसकियां की पांचवी कड़ी।

वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकिया। ये धारावाहिक खेमलता बकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

पिछली कड़ी में आपने सुना मुश्ताक सायरा को लिए बिना वापस लौट जाता है। फजी मुश्ताक से सायरा को ना लाने की वजह पूछती है। कुछ दिनों बाद लोगों की कानाफूसी सुनकर वो मुश्ताक को दोबारा भेजती है। और अब आगे।

0: अरे फाता, करीम ने खबर भेजी है कि सारे को भेज दूं।
1: सारे को भेज दूं? वो क्या बोझ है हम पर? भेज दूं? अरे सारे को बुलाना ही है तो खुद आते या मुश्ताक को ही भेजते?
0: फाता, तुम हर बात उल्टी ही क्यों लेती हो? सारे उनकी बहू है और उन्होंने मुश्ताक को भी भेजने की बात कही है। मुश्ताक आए तो सारे को भेज देना।
2: सलाम अब्बू।
0: अरे अरे आओ बेटा, आओ, अभी तुम्हारी ही बात हो रही थी।
2: सलाम अब्बी।
0: सलाम, खुदा सलामत रखे।

0: फाता, सारे को बोल चाय बना लाए।
1: बोलती हूँ।
2: आपको अब्बू का पैगाम तो मिल गया होगा।
0: हाँ बेटा, हाँ मिल गया, और अभी उसी पर बात हो रही थी
2: अच्छा,
0: कि सारे को कैसे भेजा जाए। अब तुम आ ही गए हो तो साथ ही लेते जाना।
1: कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। अभी ऐसी भी क्या जल्दी है कि सारे को ले जाओगे? कुछ दिन मायके में रहती तो उसे भी थोड़ा आराम हो जाता। वहां जाकर तो गृहस्थी की चक्की में पिसना ही है।
0: वाता, सारे को बोल तैयार हो जाए।
1: अरे मुश्ताक, पहले सारे से तो मिल ले, फिर जाने की बात तो हो ही जाएगी।

0: लीजिए, चाय लीजिए।
1: सारे, तुम ठीक हो?
0: हाँ ठीक हूँ।
1: तैयार हो जाओ, हमें अभी चलना है।
0: मुझे मुझे आपसे बात करनी है।
1: क्या?
0: मेरी बात को जरा आराम से सुनना होगा।
1: अरे पहले बात तो कहो।
0: मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती।
1: क्या मेरे साथ नहीं जा सकती? पर क्यों?
0: अब मैं तुम्हारे साथ जाना तो चाहती हूँ, पर उस घर में नहीं।
1: उस घर में नहीं का क्या मतलब है तुम्हारा?
0: मुश्ताक, हमारी उम्र ही कितनी है कि मैं अपने को घर गृहस्थी में झोंक दूं?
1: सारे, घर गृहस्थी संभालने को तुम एक भार समझ रही हो? हमारा घर ही कितना बड़ा है, चार लोगों का परिवार है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं?
0: मुश्ताक, मैं परिवार का विरोध नहीं कर रही, लेकिन अपना परिवार होना।
1: अपना परिवार? तो क्या वो हमारा परिवार नहीं है जिसमें हम रहते हैं?
0: परिवार तो मियां बीवी से बनता है मुश्ताक।
1: सारे, तुम्हें तुम्हें क्या हो गया है?
0: देखो, अगर अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी।
1: सारे, बात मानने या ना मानने की नहीं है, तुम जो कह रही हो वो मुमकिन नहीं है।
0: इसका मतलब कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते।
1: सारे, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ?
0: तो तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं? हम एक अलग घर में प्यार से रहेंगे मुश्ताक।
1: सारे, क्या हम उस घर में प्यार से नहीं रहते? आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है और तुम ये कैसे सोच सकती हो?
0: मुश्ताक, मैं कुछ और नहीं जानती, तुम्हें अलग घर लेकर रहना ही होगा।
1: सारे, ये जिद गलत है। तुम शायद परिवार की अहमियत को नहीं समझती, और जिस समाज में हम रह रहे हैं उसकी अपनी मर्यादा भी होती है और परिवार उसका आधार होता है।
0: मैं अपना परिवार चाहती हूँ मुश्ताक, सिर्फ मैं और तुम, बस।
1: सारे, तुम्हें उस घर में क्या मेरे माँ बाप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते?
0: करते होंगे, पर मैं अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी मुश्ताक।
1: तुम समझने की कोशिश करो।
0: मैं बस इतना जानती हूँ मुश्ताक कि अगर तुम अलग घर लेकर रहने को तैयार हो तो ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ, नहीं तो।
1: सारे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार को कैसे छोड़ दूँ? मेरे अम्मी अब्बू की जिम्मेदारी मुझ पर है और ऐसा करना मुझे किसी भी सूरत में पसंद नहीं।
0: तो तुम ये समझते हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी संभालने में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं?
1: सारे, क्या कि अम्मी अब्बू को संभालना अपने जीवन को नष्ट करना होता है? ये तुम्हें क्या हो गया है? ये ख्याल तुम्हारे

0: जहन में आ भी कैसे सकता है?
1: मुश्ताक, मैं तुमसे बहस नहीं करती। तुम अपने अम्मी अब्बू को कहाँ कैसे रखते हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। और एक बात और सुन लो कि जब तक तुम्हारे अम्मी अब्बू उस घर में हैं, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी।
0: सारे ये तुम नहीं कह रही, मेरी सारे ऐसी नहीं जो परिवार को ठुकरा दे, मुझे अपनों से अलग कर दे। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कह सकती, वो नहीं कह सकती कि मैं उन अम्मी अब्बू को छोड़ दूं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। अपने अपनी जिम्मेदारियों से मुकरने को मेरी सारा नहीं कह सकती, वो मुझसे प्यार करती थी।
1: मुश्ताक, सारे आज भी तुमसे प्यार करती है, पर तुम मुझसे प्यार नहीं करते।
0: सारा, सारे कैसे समझाऊं मैं तुम्हें कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ?
1: अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मेरे कहने पर तुम एक रात मेरे घर नहीं रुक सकते थे क्या? पर तुम नहीं रुके और अब भी तुम मेरा कहना नहीं मान रहे। इसका एक ही मतलब है मुश्ताक, कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते।
0: सारे मैं कैसे समझाऊं तुम्हें कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ?
1: तुम मुझे प्यार नहीं करते। अगर करते होते तो मेरे कहने पर तुम एक रात मेरे घर रुक सकते थे, पर तुम नहीं रुके और तुम अब भी मेरा कहना नहीं मान रहे। इसका एक ही मतलब है मुश्ताक, कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते।
0: सारे, समझने की कोशिश करो।
1: तुम्हें बताना होगा मुश्ताक कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं।
0: सारे,

0: अरे कुछ बताएगी भी, अभी बोल तो सही।
1: हाय हाय, मार डाला मेरी फूल सी बच्ची को। अरे सुनो रे लोगों सुनो, मार डाला मार डाला।
2: अरे ओ फाता, क्या हुआ, क्यों रो रही हो?
1: मेरी फूल सी बच्ची।
2: अरे कुछ तो बताओ, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो?
1: मार डाला मार डाला।
2: किसको मार डाला, किसने मार डाला?
1: हाय मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई।
2: साफ साफ बता कि हुआ क्या है।
1: सारे, हाय मेरी बच्ची।
2: क्या हुआ सारे को?
1: हाय भाग फूट गए उसके, हाय मेरी बच्ची।
2: क्या हुआ उसे?
1: सारे का तो जीवन ही बर्बाद हो गया। मैं क्या जानती थी कि मेरे भाई का लड़का ऐसा निकलेगा, मेरे ही सारा को मारा।
2: सारे को मारा?
1: हाय या अल्लाह।
2: लेकिन कुछ तो हुआ होगा ना?
1: अरे क्या बताऊं, कुछ दिनों से सारे यहीं रह रही थी। मेरे बीमार होने पे आई थी, सो मुश्ताक को पसंद नहीं था।
2: अरे फाता, ऐसा भी क्या कि कोई इस बात के लिए अपनी ही बीवी को मारे?
1: अरे मर्दों का क्या है, वो तो चाहता ही है कि औरत उसके गुलाम बन कर रहे।
2: सुना है कि मुश्ताक इससे पहले भी सारे को लेने आया था।
1: अरे इसीलिए तो नाराज हो गया और सारे को मार बैठा होगा।
2: लेकिन मुश्ताक तो सारे के अपने मामा का लड़का है, फिर भी ऐसा व्यवहार, छी छी।
1: अरे औरत मर्द का रिश्ता ही ऐसा होता है जहाँ हर रिश्ता खत्म हो जाता है। नहीं तो कोई अपनी पत्नी को

0: इस तरह मारे?
1: सारे कहाँ हैं?
0: अपने कमरे में रो रही है मेरी बच्ची, उसका सारा सपना चूर चूर हो गया। हाय, अब नहीं भेजूंगी उसे। हाय, जो मेरी बच्ची को मेरे सामने मार सकता है, वो मेरे पीछे उसके साथ कैसा बर्ताव करता होगा। जीते जी मर गई।
1: फाता, तू अपने भाई करीम को तो समझा ही सकती है कि मुश्ताक पर लगाम रखे। अपनी बीवी के साथ कोई ऐसा सलूक करता है, ये तो अच्छी बात नहीं।
0: अपने भाई से क्या बात करूं, उसे तो आराम ही है। एक नौकरानी मिल गई है जो सारा काम घर का करती है। नौकरानी की तरह हो गई है मेरी बच्ची वहां जाकर। अब मैं अपनी बच्ची को उस जालिम के साथ नहीं भेजूंगी।
1: लेकिन मुश्ताक मानेगा?
0: मानेगा नहीं तो क्या, अपनी बच्ची को मरने के लिए भेजूंगी? नहीं, नहीं।
2: लेकिन औरत का असली घर तो शौहर का घर ही होता है।
1: लेकिन शौहर भी तो ऐसा नहीं होता कि हर बात पर मारे पीटे।
0: अब तुम ही लोग फैसला करो कि मैं अपनी सारे को उस जालिम मुश्ताक के साथ भेजूं या नहीं।
1: मियां बीवी के बीच झगड़ा तो होता ही रहता है, ऐसे में ना भेजना ठीक नहीं। पर पहले तू अपने भाई से बात तो कर ले और मुश्ताक से भी बात कर ले।
0: बात क्या करना, वो तो चाहेंगे ही कि सारे वहां आ जाए। उन्हें तो एक नौकरानी चाहिए, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा।
1: अब चलो री, बहुत देर हो गई है।
3: हाँ,
1: चलो चलो चलो चलते हैं।

0: फाता।
1: आ गए
0: फाता, ये औरतें क्या बातें करते हुए जा रही थी?
1: अरे वही बातें करेंगी ना जो देखा है उन्होंने।
0: आखिर हुआ क्या है?
1: अरे मुश्ताक ने सारे को मेरे सामने जालिमों की तरह मारा।
0: फाता, तू ये क्या कह रही है? मुश्ताक ने सारे को मारा? नहीं, ये नहीं हो सकता। जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है।
1: अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है मुश्ताक को सारे को मारते हुए।
0: कहीं कुछ गलती हुई है, हमें उनसे बात करनी चाहिए और इस बात को यहीं खत्म करना चाहिए।
1: मैं ऐसा नहीं कर सकती।
0: अरे इस बात को फैलने से हमारी बदनामी ही होगी।
1: या खुदा, अब बदनामी क्या होगी? सारे की तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई।
0: ओफो, तुमसे बात करना भी? सारे कहाँ है?
1: अरे रो रो कर बुरा हाल है बेचारी का। जिसका पति इतना निर्दयी हो उसका क्या होगा? हाय रे मेरी बच्ची।
0: अरे फाता, अब तू चुप कर। तू इस बात को क्यों बढ़ा रही है? ये ठीक नहीं है। इससे उनके जीवन में दुख ही बढ़ेगा।
1: तुम चुप करो जी, तुम्हें तो कुछ समझ में आता ही नहीं। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मैं खूब समझती हूँ। सारे मेरी बच्ची है और उसके सुख दुख को तुमसे ज्यादा मैं समझती हूँ।
0: फाता, तू जो कर रही है वो सारे को कभी खुशी नहीं दे सकता। तू इस तरह से शोर मचाकर उनके जीवन में समस्या को ही बढ़ाएगी।

0: में दोनों से बात करनी चाहिए, जिससे इस बात को यहीं खत्म किया जा सके।
1: मैं ऐसा नहीं कर सकती। जानबूझकर मैं अपनी बच्ची को उस मुश्ताक के साथ अब नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी।
0: फातिहा, तू बात को बढ़ा रही है, ये ठीक नहीं है। हमें इस बात को सुलझाना है, न कि
1: चुप करो, चुप करो, तुमसे कुछ नहीं होगा। अब जो होगा मैं ही करूंगी। तुम्हें बीच में बोलने की अब कोई जरूरत नहीं है।
0: या अल्लाह,

0: सारे मेरी बच्ची इस तरह क्यों बैठी है?
1: अम्मी अम्मी, ये तूने अच्छा नहीं किया।
0: अरे सारे, तू कह रही है कि मैंने अच्छा नहीं किया? अरे मैंने जो किया तेरे भले के लिए किया है।
1: अम्मी ये ठीक नहीं हुआ है, ये घर की बात थी अम्मी, मेरे और मुश्ताक के बीच की बात थी, और तुमने तुमने इस बात को पूरे गांव में फैला दिया।
0: अरे सारे तू नहीं जानती, ये मर्द ऐसे मुट्ठी में नहीं आते। अब देख मैं कैसे उसे ठीक करती हूँ।
1: अम्मी तू हमें हमारे हाल पर छोड़ दे।
0: तू क्या समझती है मैं तेरी दुश्मन हूँ? मैं जो कर रही हूँ वो तेरे भले के लिए कर रही हूँ।
1: अम्मी इससे ना तो मेरा भला हो सकता है और ना ही किसी और का, इससे सिर्फ बदनामी और बर्बादी हो सकती है अम्मी।
0: सारे सारे तू अभी बच्ची है, दुनियादारी नहीं समझती। और सुन ले, मैं जो कर रही हूँ तेरे भले के लिए कर रही हूँ बेटी।
1: आज जो हुआ है उससे किसका भला होगा अम्मी, और ये सब तुमने ही कहा था करने को।
0: अच्छा ही हुआ कि जल्द उस जालिम की असलियत का पता चल गया, जो मेरे सामने एक माँ के सामने उसकी बच्ची को मारे, वो पीछे क्या कुछ नहीं कर सकता है।
1: अम्मी बस भी करो, जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो।
0: ये सब क्या मुझे अच्छा लग रहा है? मुझे भी दुख है, तू मेरी बेटी है और मेरे सामने तुझे कोई मारे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बोल, तू ही बोल, ये अच्छा लग सकता है क्या?
1: मुश्ताक मेरा शौहर है अम्मी, और मैं उससे प्यार करती हूँ, और फिर एक परिवार में ऐसा हो जाना कोई बड़ी बात तो नहीं है। मुश्ताक ऐसा नहीं है अम्मी, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है।
0: चुप कर तू, मैंने देख लिया अपनी आंखों से कि मुश्ताक कैसे प्रेम करता है, और अगर उसका प्रेम ऐसा ही है तो तुम्हें उसके पास दोबारा जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुश्ताक और मुश्ताक जैसे मर्द औरत को सिर्फ घर की नौकरानी बनाकर रख सकते हैं, मार सकते हैं। और छी
1: अम्मी तू नाहक परेशान मत हो, इस बात को यही खत्म कर दे, सब ठीक हो जाएगा अम्मी।
0: अब कुछ ठीक नहीं होगा, मैं तुम्हें नौकरानी सा काम करने और मार खाने के लिए नहीं छोड़ सकती। देर से ही सही, मुश्ताक का असली चेहरा तो सामने आ ही गया, और उस करीम और फजी की नीयत का भी, जो तुझे महज एक औरत के रूप में नौकरानी समझते रहे हैं और उससे भी बदतर व्यवहार करते रहे हैं। अब देखना, मैं उन्हें बता दूंगी कि फाता की बेटी को दुख देने का मतलब क्या होता है। अगर मैंने उन्हें सबक ना सिखाया तो मेरा नाम नहीं।
1: अम्मी अब तू कुछ नहीं करेगी, जो तूने कर दिया वही बहुत है, और उससे जो कुछ भी हुआ उसे मैं कबूल कर लूंगी, अब और कुछ भी कर...

0: करने की कोई जरूरत नहीं है अम्मी।
1: अब तू मुझे समझाएगी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं? क्या मैं तेरी दुश्मन हूं बेटी? तेरी माँ हूँ मैं, जो कुछ भी करूंगी तेरे भले के लिए ही करूंगी। और मैं उन्हें समझा दूंगी कि औरत पर जुल्म करना इतना आसान नहीं होता। उन लोगों को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे।
0: अम्मी तू अब कुछ भी नहीं करेगी, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसे तू इतना तूल दे रही है। एक परिवार में ऐसा होता ही रहता है अम्मी, हमें इसे संभालना है ना कि बिगाड़ना। मैं बात करूंगी मुश्ताक से।
1: अब तू उस जालिम से नहीं मिलेगी
0: अम्मी,
1: और तुझे संभालना होता कब का संभाल चुकी होती। और इतने दिनों में मुश्ताक तेरी मुट्ठी में होता, जैसे खजरी अपने शौहर को अपने इशारों पर रखती है। तुझसे कुछ नहीं होगा, अब जो होगा वो मैं करूंगी। और इस बीच में तुम्हें बोलने या कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकिया की पांचवी कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीत दिया था मोहनलाल ने, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अक्रम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे हरीश, लोकेश, सुप्रिया, नीलम और अंशु। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से। ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 134वें संस्करण में कहा कि नीदरलैंड में विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई हैं और यह ऐसा क्षण था जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। इस दिशा में सरकार के भिन्न भिन्न विभागों ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं उनका पालन करें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुजालपुर में आज से कॉलेज चलो अभियान एवं महाविद्यालय में प्रवेश का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अहिल्याबाई का जीवन सुशासन, देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव का अनुकरणीय आदर्श है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि इस महीने की 29 तारीख को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल

0: लगाए गए ये पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान एप्लीकेशन के प्रायोगिक संस्करण का शुभारंभ किया। और आईपीएल क्रिकेट में फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोता बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की।

महिला सभा सुन रही सभी सखियों को आपकी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर, सुनेंगे गीत संगीत और खाना खजाना में बनाएंगे कुछ ठंडा ठंडा। बहनों, कार्यक्रम में हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे धूम्रपान निषेध दिवस पर। आज 31 मई को पूरा विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मना रहा है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ जीवन के लिए धूम्रपान से दूरी बनाना कितना आवश्यक है। आज आधुनिकता भरी जीवन शैली में कई लोग तनाव और दिखावे के कारण धूम्रपान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। शुरुआत अक्सर शौक से होती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत लत का रूप ले लेती है। यह लत केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मानसिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती है। बहनों, धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर, गले का कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर वर्ष लाखों लोग इस लत की वजह से असमय मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि आज युवा वर्ग तेजी से इसकी चपेट में आ रहा है। कई बार लोग इसे आधुनिकता और व्यक्तित्व का प्रतीक मान बैठते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि धूम्रपान व्यक्ति की ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य तीनों को कमजोर करता है। सखियों, धूम्रपान का प्रभाव केवल सेवन करने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। घर परिवार के सदस्य, छोटे बच्चे और आसपास के लोग भी इस धुएं से प्रभावित होते हैं। इसे हम निष्क्रिय धूम्रपान या पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। इससे बच्चों में सांस संबंधी बीमारियां और महिलाओं में स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। आज आवश्यकता केवल जागरूकता की नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प की भी है। यदि व्यक्ति मन में ठान ले तो वह इस आदत को छोड़ सकता है। परिवार का सहयोग, सकारात्मक वातावरण, योग, व्यायाम और अच्छी दिनचर्या व्यक्ति को नशे से दूर रखने में सहायक बनते हैं। हम बहनें भी कोशिश करें कि हमारे परिवार में, आसपास ऐसे व्यक्ति हैं जो इस आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो हम भी इस मुहिम में उनका साथ अवश्य निभाएं। सखियों, अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पर। माता पिता हमारे जीवन की सबसे अमूल्य धरोहर है। वे केवल हमें जन्म ही नहीं देते बल्कि अपने अथक परिश्रम, स्नेह और मार्गदर्शन से हमारे व्यक्तित्व का भी निर्माण करते हैं। एक बच्चे के जीवन की पहली पाठशाला उसका परिवार होता है और माता पिता उसके प्रथम शिक्षक। वे हमें चलना, बोलना, अच्छे संस्कार अपनाना और जीवन की कठिनाइयों से लड़ना सिखाते हैं। सखियों, प्रत्येक वर्ष 1 जून को पूरे विश्व में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। यह दिन उन महान आत्माओं को सम्मान देने का अवसर है जिनके प्रेम, त्याग, संघर्ष और संस्कारों से

हमारा जीवन संवरता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए ममता, करुणा और स्नेह का अथाह सागर होती है। वह स्वयं कष्ट सहकर भी अपने बच्चों को खुश रखने का प्रयास करती है। बच्चे की छोटी सी तकलीफ भी माँ को बेचैन कर देती है। उसकी दुआओं में हमेशा अपने बच्चों का सुख और सफलता ही शामिल होता है। वही पिता परिवार की वह मजबूत नींव होते हैं जो अपने सपनों और इच्छाओं का त्याग करके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में लगे रहते हैं। पिता का प्रेम अक्सर कठोर अनुशासन और जिम्मेदारियों के पीछे छिपा होता है, लेकिन उनका हर संघर्ष अपने परिवार की खुशियों के लिए ही होता है। माता पिता का जीवन त्याग और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। सखियों, आज के समय में व्यस्त दिनचर्या, मोबाइल और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण परिवारों के बीच संवाद कम होता जा रहा है। कई बार बच्चे अपने माता पिता को समय नहीं दे पाते। वृद्धावस्था में माता पिता को सबसे अधिक आवश्यकता अपने बच्चों के साथ सम्मान और अपनत्व की होती है। जिन माता पिता ने अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही माता पिता जीवन के अंतिम पड़ाव में अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। बहनों, भारतीय संस्कृति में माता पिता को भगवान के समान माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, जिन लोगों ने हमारे सपनों को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनका सम्मान करना हमारा पहला कर्तव्य है। हमें हमेशा संकल्पित होना चाहिए कि हम अपने माता पिता का आदर करें, उनके साथ समय बिताएं और उनकी भावनाओं को समझें, क्योंकि जीवन में सफलता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, माता पिता का आशीर्वाद उससे कहीं अधिक मूल्यवान होता है।

बहनों, अब बात करते हैं 1 जून को मनाए जाने वाले वर्ल्ड मिल्क डे यानी विश्व दुग्ध दिवस की। इस दिवस का उद्देश्य दूध के पोषण महत्व, स्वास्थ्य लाभ और मानव जीवन में उसके योगदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास से लेकर बुजुर्गों की हड्डियों की मजबूती तक दूध हर आयु वर्ग के लिए लाभकारी माना जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में दूध का विशेष महत्व रहा है। प्राचीन काल से ही दूध और दुग्ध उत्पाद हमारे भोजन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। हमारे पर्व त्योहारों, पूजा पाठ और पारंपरिक व्यंजनों में भी दूध का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है। बहनों, दूध केवल पोषण का स्रोत ही नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का आधार भी है। भारत दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देशों में शामिल है। लाखों किसान और पशुपालक दुग्ध उत्पादन से अपनी आजीविका चलाते हैं। दुग्ध व्यवसाय ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। आज के समय में बच्चों में जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक का बढ़ता चलन चिंता का विषय है। ऐसे में दूध और उससे बने पौष्टिक पदार्थों को दैनिक

जीवन में शामिल करना आवश्यक हो गया है। दूध शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रतिदिन उचित मात्रा में दूध का सेवन करने से हड्डियां मजबूत रहती हैं, दांत स्वस्थ रहते हैं तथा शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है। दूध से बने दही, पनीर, छाछ और घी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। सखियों, दूध स्वास्थ्य का आधार है। यदि प्रतिदिन संतुलित मात्रा में दूध का सेवन किया जाए तो शरीर स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान बना रहता है। इसलिए हमें अपने दैनिक भोजन में दूध और दूध से बने पदार्थों को अवश्य शामिल करना चाहिए। सखियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बढ़ते तापमान की। ग्रीष्म ऋतु अपने साथ तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता तापमान लेकर आती है और इस समय तो सबसे ज्यादा गर्म दिन 9 तपा चल रहे हैं। इस मौसम में यदि सावधानी न रखी जाए तो शरीर में पानी की कमी, थकान, लू लगना और कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए गर्मी के मौसम में विशेष रूप से अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। दिन भर में पर्याप्त पानी, छाछ, नारियल पानी और ताजे फलों का रस शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। अधिक देर तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए और हल्का, पौष्टिक तथा सुपाच्य भोजन करना चाहिए। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और आम जैसे मौसमी फल शरीर में ऊर्जा बनाए रखते हैं, तो इनका सेवन भी हमको करते रहना चाहिए। गर्मी में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बासी भोजन और खुले में रखी खाद्य सामग्री से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि इससे पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। घर और आसपास का वातावरण स्वच्छ रखने से बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। बच्चों और बुजुर्गों को गर्मी में अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। उन्हें समय समय पर पानी पिलाना चाहिए और अत्यधिक गर्म वातावरण से बचाना चाहिए। नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद भी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। यदि हम थोड़ी सावधानी और सही दिनचर्या अपनाएं तो ग्रीष्म ऋतु का आनंद लेते हुए स्वयं को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। सखियों, ये बात तो हुई गर्मी के मौसम में हम अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखें, और अब चलते हैं उन 7 बातों की तरफ, यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की 7 बातें यानी 7 वचन की तरफ। कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से राष्ट्रहित में 7 महत्वपूर्ण बातें कहीं। यह बातें उन्होंने वैश्विक परिस्थितियों, बढ़ते तेल दाम, विदेशी मुद्रा बचाने और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने के संदर्भ में की थीं। सर्वप्रथम, 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदना है, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे अधिक सोना आयात करने वाले देशों में है। सोना विदेशों से डॉलर देकर खरीदा जाता है, जिससे देश की विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ता है। इसलिए हम लोगों को 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदना। दूसरी बात, विदेश यात्रा ना करें। विदेश यात्रा में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अभी आपको पर्यटन पर जाना है तो भारत में कई ऐसी सुंदर सुंदर जगह हैं, आप वहाँ जा सकती हैं। पेट्रोल डीजल की बचत करें। भारत कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, इसलिए पेट्रोल डीजल की बचत करें। इसके लिए सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। कहीं जाना है तो एक दूसरे के साथ एक गाड़ी पर जाएं। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाएं। विदेशी वस्तुओं की जगह भारत में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करें, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे। स्वास्थ्य और आयात दोनों कारणों से खाद्य तेल का कम उपयोग करने की सलाह दी गई है। प्राकृतिक खेती और ईवी को बढ़ावा दें। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, प्राकृतिक खेती अपनाने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात कही गई। कोविड काल की तरह जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग्स अपनाने की बात कही गई, ताकि ईंधन की बचत हो सके। देशवासी इन 7 बातों यानी इन 7 वचनों का पालन करें तो भारत की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रह सकते हैं। तो हम सबको भी कोशिश करनी है कि हम इन 7 वचनों का पालन करें।

सखियों, गर्मी की तपती दोपहर में कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिल जाए तो कितनी राहत महसूस होती है। आज खाना खजाना में हम लाए हैं आपके लिए गोंद कतीरे का शरबत बनाने की विधि। वैसे तो यह हमारे दादी नानी के समय से बनता चला आ रहा है, पर इस समय यह काफी ट्रेंड में है। तो चलिए नोट कीजिए गोंद कतीरा शरबत में लगने वाली सामग्री। हमें चाहिए गोंद कतीरा 2 छोटे चम्मच, ठंडा दूध 1 गिलास, चीनी या मिश्री स्वादानुसार, गुलाब का शरबत 1 बड़ा चम्मच, बर्फ के टुकड़े, इलायची पाउडर थोड़ा सा। शरबत बनाने के लिए रात भर गोंद

0: कतीरा को पानी में भिगो दें। सुबह तक यह फूलकर जेली जैसा हो जाएगा। अब एक गिलास ठंडा दूध लें, उसमें चीनी या मिश्री मिला लें। भीगा हुआ गोंद कतीरा डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अब इसमें गुलाब शरबत, इलायची पाउडर और साथ ही बर्फ के टुकड़े डाल दें। लीजिए, ठंडा ठंडा गोंद कतीरा शरबत बनकर तैयार है। बहनों, इसके बहुत सारे फायदे हैं। यह शरीर को ठंडक पहुंचाता है, लू और गर्मी से बचाता है, पेट की जलन कम करता है। सखियों, गर्मी की दोपहर ज़्यादा बड़ी होती है। इस समय दोपहर का भोजन करने के बाद 3 से 4 बजे तक हल्की भूख लगने लगती है, तो उसके लिए कुछ ठंडा चटपटा खाने का मन करता है। आज हम आपके लिए लाए हैं चटपटे मूंग दाल के पानी बड़े। इनको बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग दाल धुली वाली 1 कप, हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, हींग चाहिए 1/2 छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार और साथ ही चाहिए थोड़ा तेल पकौड़े तलने के लिए। और चटपटे पानी के लिए हमें चाहिए पानी 1 लीटर ठंडा, पुदीने के पत्ते बारीक कटे हुए, हरा धनिया थोड़ा सा, अमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच, भुना जीरा पाउडर और साथ ही चाहिए लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा और सादा नमक। सबसे पहले मूंग दाल बड़ों को बनाने के लिए जो दाल हमने ली है, आप उसको 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दें। अब उसको धो लें अच्छे से, उसका पानी निकाल दें और मिक्सर में इसको पीस लें। इसका हमें बारीक पेस्ट तैयार नहीं करना है, हल्का दरदरा रखना है। अब इसमें आप हींग, हरी मिर्च और नमक मिला लें और अब इस घोल को 2 मिनट अच्छे से फेंट लें ताकि यह हल्का और फूला हुआ हो जाए। अब कढ़ाई में तेल गर्म करें और छोटे छोटे पकौड़े सुनहरे होने तक सेक लें। अब इसका पानी तैयार कर लें। एक बर्तन में ठंडा पानी लें, इसमें नमक, काला नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर और बाकी सब मसाले मिला लें। अब इस पानी में जो हमने बड़े सेके थे उनको डाल दें। इनको 15 से 20 मिनट आप इस पानी में भिगो कर रखें। अब यह सर्व करने के लिए तैयार हैं। तो इस गर्मी आप भी यह ठंडे चटपटे मूंग दाल के बड़े बनाइए और खाइए। सखियों, गर्मी में अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अब अपनी कार्यक्रम सखी वंदना को दे अनुमति। नमस्कार।
1: श्रोता बहनें अभी सुन रही थी उनका अपना कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। प्रस्तुत है सुगम लोक संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मोहन सिंह यादव और साथियों के गाए लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु गीत से।

मोहन सिंह यादव और साथियों के गाए इस लोक भजन के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। कलाकार है संगीता राय।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आपने संगीता राय के गाए गीत और भजन सुने। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: नसनसनी ना उत्तेजना नशोर दिन रात ना ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल,
4: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज़ है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत

0: सुखद, सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं राजेंद्र कृष्ण के लिखे और सलिल चौधरी के संगीत से सजे गीत से। आवाज तलत महमूद की है और फिल्म है छाया।

0: फिल्म गंगा जमुना के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाश

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड्स की अपनी हाल ही की यात्रा का जिक्र करते हुए, नीदरलैंड सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं। इससे दुनिया भर के तमिल समुदाय विशेष उत्साह में हैं। उन्होंने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान की गणना का फील्ड कार्य कल 30 मई को पूर्ण कर लिया गया है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल माध्यमों से संचालित की गई। राज्य में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य 55 जिले, 425 नगरीय निकाय और 449 तहसीलों के अंतर्गत 54,923 ग्रामों में संपादित किया गया है। प्रदेश में इस अभियान के तहत 1,37,000 से भी अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉकों में 1,44,000 से अधिक प्रकरणों द्वारा कार्य संपादित किया गया। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनसंख्या की गणना का कार्य फरवरी 2027 में संपादित किया जाएगा। इस चरण में परिवार के सदस्यों से निर्धारित जानकारी एकत्र की जाएगी। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में कल तेज हवाओं ने मौसम का रुख बदल दिया। तेज आंधी के कारण शहर के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। रात करीब 12:30 बजे से सुबह 3 बजे तक भोपाल में तेज हवाएं चलती रहीं। कई क्षेत्रों में बिजली गुल होने की शिकायतें सामने आईं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले घंटों में भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। मौसम विभाग ने आज देवास, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, छतरपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शुजालपुर में कॉलेज चलो अभियान एवं प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने यहां आयोजित रोड शो में सहभागिता की। रायसेन जिले के ग्राम सेमरी की अंजना यादव ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। मादा चीता निरवा और उसके 3 शावकों को कल उनके बाड़े से निकालकर क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ दिया गया। इससे अब यहां चीतों की संख्या 20 हो गई है। इनकी रेडियो टेलीमेट्री सिस्टम से लगातार निगरानी की जा रही है। राज्य शासन द्वारा समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन एवं परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की आज आगरमालवा में बैठक हुई। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया क्षेत्र में पुरुषोत्तम मास के 15 दिन पूरे होने के अवसर पर आज सांडिया स्थित नर्मदा तट पर धार्मिक मेले का आयोजन हुआ। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब। चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्रपट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के

0: साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
0: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकी

0: करण को बल मिलेगा।
1: नेवी, एयरफोर्स,
2: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
1: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। नन्हे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। आज की प्रस्तुति

0: नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम मुस्कान में। मैं हूं आपकी दोस्त विभूति। आज के हमारे कार्यक्रम में हम सुनेंगे एक प्यारी सी कहानी, एक मजेदार पहेली, देंगे आपको एक छोटा सा मैसेज और मिलेंगे अपने दो खास मेहमान बच्चों से भी। अंत में सुनेंगे एक प्यारा सा गीत। तो चलिए शुरू करते हैं मुस्कान, प्यारी प्यारी मुस्कान के साथ। बच्चों अब सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। बच्चों आज हम सुनाएंगे कहानी आलस बुरी बला है। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको आलसी बनने से रोकेगी। एक गांव में रहता था किशोर, एक बहुत आलसी लड़का। वो भैंसे चराने जाता लेकिन सो जाता, जब दूध बेचने जाता तो खूब बहाने बनाता और सबसे कहता, भाग्य में जो होगा सो होगा, यही उसका मंत्र था। एक दिन उसके द्वार पर आए एक साधु और साधु उससे बोले, बेटा मैं तुम्हें पारस पत्थर देता हूँ, ये पत्थर लोहे को सोना बना देगा, मैं 8 दिन बाद वापस आऊँगा। किशोर खुशी से बोला, महाराज बहुत धन्यवाद। अगले दिन किशोर ने सोचा, मैं कल लोहा खरीद लूँगा, और सो गया। दूसरे दिन पत्नी ने उसे उठाया तो वो थोड़ा सा लोहा लेकर आया जो सोना बन गया। वो उस सोने को बाजार में बेच आया लेकिन बोला, अरे इसमें तो बहुत समय लगेगा, और फिर से सो गया। ऐसे करते करते तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवां, छठवां, सातवां दिन भी बीत गया। किशोर सोते रहा। आखिरी दिन साधु आए और क्रोधित होकर बोले, पारस वापस करो। किशोर घबराते हुए बोला, महाराज अभी तो कुछ बनाया ही नहीं है, थोड़ा सा समय और। साधु ने गुस्से में कहा, तू आलस का गुलाम है, तेरे जैसा व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। किशोर पछता कर रह गया। साधु पारस लेकर वापस चले गए। अब देर हो चुकी थी, आलस ने किशोर के सारे सपने चुरा लिए थे। तो बच्चों आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए।
1: बच्चों इस कहानी में कितनी प्यारी सी सीख है कि छोटे काम भी बहुत बड़ा असर करते हैं। और अब हम बढ़ते हैं हमारे मजेदार पहेली कोने की तरफ, जहां पर आज हम आपको सुनाएंगे एक पहेली जिसका आंसर देना होगा आपको। पहेली ये है कि मैं बिना पांव के चल सकता हूँ, बिना मुंह के बोल सकता हूँ और बिना हाथ के चीजें हिला सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे छू नहीं सकते, बताओ मैं क्या हूँ? आंसर समझ में आया? कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर सोचिए और मैं देती हूँ एक छोटी सी हिंट। हिंट ये है कि जब मैं तेज होता हूँ तो पेड़ हिलते हैं और जब मैं धीमा होता हूँ तो पत्तियां शांत रहती हैं। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जवाब है हवा या हवा का झोंका। हवा बिना पांव के चलती है, बिना मुंह के लगता है कि बोल रही है और पेड़ों को हिला देती है। अब सच बताइए, आपको उत्तर समझ में आया था या आपने सोचा था कुछ और? अब हम पढ़ते हैं हमारे संदेश की ओर। एक छोटी सी काइंडनेस। आप हर रोज कोशिश कीजिए कि किसी का काम थोड़ा सा आसान कर दें, किसी छोटे को अपने खेल में शामिल कर लें या घर में किसी बड़े की मदद कर दें। रास्ते में गिरे हुए केले के छिलके को उठा दे, जिससे सफाई भी होगी और वो किसी को फिसलने से गिरने से भी बचाएगा। ऐसी दया या काइंडनेस से आपका दिल बड़ा होता है और आपके होठों पर खिलती है मुस्कान। अब वक्त है हमारे मेहमानों से मिलने का। आज हम जहाँ हैं वहाँ हमारे आसपास नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो खेल रहे हैं और कर रहे हैं ढेर सारी मस्ती। तो चलो इन बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये गर्मियों की छुट्टियों में क्या क्या कर रहे हैं। हेलो बेटा।
2: हेलो।
1: आपका नाम क्या है?
2: स्वरा।
1: स्वरा कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
2: 4th।
1: तो अभी आपके समर वैकेशंस चल रहे होंगे?
2: यस।
1: छुट्टियों के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको?
2: मुझे छुट्टियों के

0: बाहर जाती हूँ वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें मुझे मेरे फ्रेंड्स मिलते हैं और मैं उनके साथ खेल भी पाती हूँ। उस गली में कोई रहता ही नहीं है।
1: अच्छा, जहाँ आप रहते हो वहाँ कोई नहीं रहता है ना, और जो फ्रेंड्स मिलते हैं डांस क्लासेस में वो बहुत अच्छा लगा। तो सिर्फ डांस सीखते हो कि और भी मस्ती करते हो?
0: हम डांस भी सीखती हूँ मैं। मम्मा ने कुछ क्लासेस की बात करी है, पर वो इतने सारे चार्जेस ले लें अवेकस के लिए, ड्राइंग के लिए, तो मम्मा ना अब हमें
1: एक क्लास ज्वाइन कराई है
0: हाँ
1: क्योंकि उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, है ना। थोड़े कम चार्ज लेना चाहिए ना उनको, जिससे बच्चे ढेर सारा सीख सकें।
0: हाँ
1: तो अभी कितने गानों पे डांस सीखा है आपने?
0: अभी तो मैंने टोटल 5 सॉन्ग्स पे डांस सीखा है।
1: अच्छा, हमें करके दिखाना आप, जब हम बात कर लें उसके बाद मैं डांस दिखाओगे।
0: हाँ
1: सिर्फ डांस पसंद है, गाना गाना भी पसंद है आपको?
0: थोड़ा थोड़ा पसंद है गाना गाना, वैसे तो डांस करना ही पसंद है।
1: ज़्यादा डांस करना पसंद है। और सबसे अच्छा कौन डांस करता है आपकी क्लास में?
0: सबसे अच्छा दीदी करती हैं,
1: सिखाने वाली
0: वो वाली जो आती हैं क्लास में।
1: आपके साथ सीखती हैं वो? तो क्या नाम है उन दीदी का?
0: उन दीदी का नाम है आराध्या।
1: आराध्या। और सबसे अच्छी फ्रेंड कौन है आपकी उस डांस क्लास में?
0: सबसे अच्छी फ्रेंड अद्विका है,
1: वो भी डांस सीखती है कि वो कुछ और भी सीखती है?
0: वो डांस भी करती है और आर्ट क्लास भी जाती है।
1: अच्छा, छुट्टियों में सिर्फ ये हॉबी क्लासेस कर रहे हो, कुछ पढ़ाई हो रही है घर पे?
0: थोड़ी थोड़ी
1: कितनी?
0: थोड़ी सी इसको पढ़ा देती हूँ मैं अपने भाई को।
1: अच्छा, तो बस उसी में आपकी पढ़ाई हो जाती है?
0: हाँ
1: वेरी स्मार्ट। अच्छा, और भी कुछ घर पे कर रहे हो?
0: मैं घर पे स्केचिंग करती हूँ और ड्राइंग करती हूँ खुद से।
1: क्या बनाया आपने कल स्केच?
0: कल मैंने स्ट्रॉबेरी का स्केच बनाया।
1: स्ट्रॉबेरी का? स्ट्रॉबेरी बहुत तो फायदेमंद है, आपको पसंद है खाने में स्ट्रॉबेरी?
0: थोड़ी थोड़ी
1: कौन सा फ्रूट पसंद है खाने में?
0: मुझे बनाना।
1: बनाना बहुत पसंद है। अच्छा, तो बनाना शेक भी पीते हो या कैसे खाते हो उसको?
0: सिंपल जैसे सब लोग खाते हैं,
1: उसको छिलका उतार के, है ना?
0: हाँ
1: और केले का छिलका कहीं यहाँ वहाँ गिरा दिया है तो उससे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, ये पता है आपको?
0: हाँ पता है।
1: किसी को गिराने की कोशिश तो नहीं करी?
0: नहीं।
1: तो छिलका कहाँ डालते हैं?
0: छिलका डस्टबिन में डालते हैं।
1: वेरी गुड। अच्छा, डांस क्लास का टाइम क्या है? आज तो इतनी गर्मी भी हो रही है, तो कितने बजे जाते हो?
0: मेरा 8 बजे का बैच है।
1: मॉर्निंग?
0: मॉर्निंग।
1: और कितनी देर तक सीखते हैं?
0: मैं 10 बजे तक।
1: 10 बजे तक सीखते हो। तो कौन से गाने पे डांस करना सबसे ज़्यादा पसंद है आपको, ज़रा गा के बताओ। मैं
0: घर मोरे परदेसिया।
1: थोड़ा गाना आता है थोड़ा सा?
0: नहीं।
1: कोई पोयम आती है? मेरी फेवरेट पोयम हमें सुना दो जो बच्चे सुन रहे हैं।
0: कौन सी?
1: जो भी आपको पसंद हो। हिंदी की कोई कविता सुना दो।
0: हिंदी की क्या सुनाऊँ?
1: हिंदी की कविता याद नहीं है?
0: नहीं है।
1: इंग्लिश की याद है?
0: इंग्लिश की मुझे मेरे दिमाग में ही नहीं आ रही।
1: तो कोई गाना ही सुना दो फिर।
0: गाना सायवा सायवा नींदे मींदे आए ना, राती काटी जाए वह तेरे ही ख्याल।
1: अच्छा, तो आप नहीं गाना नहीं गा पा रहे हो, कोई जोक कोई कहानी कोई शायरी कुछ याद आ रही है तो सुना दो।
0: मुझे ना रातों रात मिटा दूंगी बिकॉज आई एम फ्रॉम राजस्थान।
1: ये आपने फिल्म में सुना है?
0: नहीं, यूट्यूब पे।
1: कोई बच्ची बोल रही थी आपके जैसी?
0: नहीं, बड़े लोग।
1: तो आपको ये अच्छा लगा?
0: ठीक ठीक लगा, ज्यादा अच्छा नहीं।
1: ज्यादा अच्छा नहीं लगा, तो कुछ ऐसा सुनाओ जो अच्छा लगा।
0: यही अच्छा लगा।
1: अच्छा अच्छा, अब स्कूल खुलेंगे तो स्कूल के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको?
0: स्कूल में फ्रेंड्स मिलते हैं और जब मैं स्कूल जाऊंगी उस दिन गेम्स का पीरियड है तो मज़ा भी आएगा।
1: कौन सा गेम खेलती हो?
0: हम अभी के लिए तो बैडमिंटन और यही गेम्स खेलते हैं, डोज बॉल।
1: अच्छा, घर में आप थोड़ा हेल्प करने की कोशिश करते हो, जैसे मामा हैं या पेरेंट्स हैं आपके?
0: हाँ।
1: क्या काम करते हो?
0: मैं बोटल्स में पानी भर के रखती हूँ ठंडा होने के लिए, उनके कपड़े को घड़ी करके रखती हूँ और कभी कभी सफाई कर देती हूँ थोड़ी बहुत।
1: सफाई तो बिल्कुल करनी चाहिए, सफाई बहुत अच्छी चीज़ है ना।
0: हाँ।
1: और ये जो भैया है आपका, ये गंदी करता है या सफाई करता है?
0: मेरे साथ कभी थोड़ी थोड़ी सफाई भी कर लेता है और कभी गंदगी भी करता है।
1: फिर आप कान खींचते हो इसके?
0: कान कभी कभी
1: इससे ही बातें करते हैं, है ना।
0: चलो,
1: क्या नाम है आपका?
2: आयांश।
1: और अभी सब फ्रेंड्स को हेलो।

0: तो बोलिए जो आपको सुन रहे हैं, बोलिए थोड़ा
1: हेलो फ्रेंड्स,
0: जोर से बोलिए।
1: हेलो फ्रेंड्स।
0: आयांश आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
1: एलकेजी।
0: एलकेजी में पढ़ते हो। केजी में आपने कुछ सीखा है? पोयम सीखी है कोई?
1: हाँ।
0: सीखी है?
1: हाँ।
0: सुनाइए।
1: 1, 2, 3।
0: 1, 2, 3 सीखा है?
1: हाँ।
0: सुनाओ।
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10।
0: थोड़ा जोर से बोलिए।
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10।
0: 8 भी आता है बीच में? अच्छा। ट्विंकल ट्विंकल वाली पोयम आती है?
1: नहीं।
0: जॉनी जॉनी वाली
1: आती है।
0: सुनाइए अपने फ्रेंड्स को। अभी आपने हेलो बोला ना, अब वो सोच रहे होंगे आयांश कुछ सुनाएगा हमें।
1: जॉनी जॉनी, यस पापा, शुक्र नए नए पापा।
0: जॉनी जॉनी यस पापा आता है बस? हाँ
1: हाँ।
0: चलो ठीक है, काफी है इतना। और आपको काउंटिंग भी आती है ना, 1, 2, 10?
1: हाँ।
0: 10 के आगे नहीं आती। तो आयांश आपको छुट्टियों के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है?
1: आती है काउंटिंग।
0: आती है?
1: हाँ।
0: 10 के आगे आती है?
1: हाँ।
0: सुनो।
1: 11,
0: वेरी गुड।
1: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20।
0: यार आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। अच्छा आप पोयम भी याद आई क्या कोई सी? जॉनी जॉनी पूरी याद आई?
1: हाँ।
0: सुनाओ।
1: अभी तो सुनाई,
0: अभी एक ही लाइन सुनाई थी। पूरी पूरी मैं बोल रही हूँ, पूरी याद आई?
1: हाँ।
0: सुनाओ सुनाओ।
1: जॉनी जॉनी ऐसे पापा जोड़ रहे थे नए बाप।
0: अच्छा और अपने हाथों से ये आप हार्ट का शेप बना रहे हो?
1: नहीं।
0: अच्छा आप जो आपके फ्रेंड्स सुन रहे हैं उनसे कुछ और भी बात बोलनी है आपको?
1: नहीं,
0: कुछ नहीं बोलना।
1: नहीं।
0: अच्छा छुट्टियों में क्या करते हो ये तो बताओ हमें।
1: छुट्टियों में रुक जाता हूँ घर पे।
0: और घर पे रुक के क्या होता है?
1: नॉर्मल कपड़े पहनता हूँ। हाँ।
0: और आप स्पेशल कपड़े कब पहनते हो?
1: फैशन कपड़े बाजार के लिए होता है।
0: बाजार के लिए स्पेशल कपड़े पहनते हो? तो वो कपड़े कहाँ रखे जाते हैं?
1: ड्रेसिंग रूम में।
0: ड्रेसिंग रूम में। और जो नॉर्मल कपड़े हैं वो कहाँ होते हैं?
1: वो भी ड्रेसिंग रूम में होते हैं।
0: अच्छा लेकिन आपने जो पहना है हमें तो ये काफी स्पेशल लग रहा है। ये भी, ये किसने बनाया आपको?
1: ए, मामा ने। आपके पास में टिश्यू पेपर है ना?
0: टिश्यू पेपर है? हाँ। टिश्यू पेपर किस लिए काम आता है?
1: पोंछने के लिए।
0: क्या पोंछने के लिए?
1: खाना।
0: खाना पोंछने के लिए, वेरी गुड। और भी पसीना भी पोंछ सकते हैं?
1: पसीना नहीं मार सकते हैं, पसीना तो पाउडर से, नहीं तो ऑयल से।
0: ऑयल से पोंछते हैं पसीना?
1: नहीं तो पाउडर से।
0: और पाउडर से पोंछते हैं? ये तो यार आपने बड़ी अच्छी बात बताई है, मुझे पता नहीं था। ऑयल से कैसे पोंछते हैं पसीना?
1: और बस बस
0: बस।
1: हाँ
0: बस।
1: हाँ
0: बस की ट्रेन?
1: बस
0: बस। हाँ अपनी भी बस। चलो
1: क्या बोलूँ?
0: कोई गाना सुनाओगे?
1: नहीं।
0: कोई बात करनी है फ्रेंड से?
1: हेलो।
0: अच्छा बाय बोलो, बाय बोलने का टाइम आ गया।
1: बाय, सी यू।
2: बाय फ्रेंड्स।
1: बाय फ्रेंड्स।
0: तो बच्चों ये थे ये बहुत प्यारे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे। बच्चों इन प्यारे दोस्तों से मिलने के बाद अब समय है हमारे गीत का। चलिए तो सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत। आप भी कोशिश कीजिएगा संग संग।

और इसी गीत के साथ अब वक्त है आपसे बाय बोलने का। जी हाँ, अब हमें ये प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। आपका बहुत सारा धन्यवाद ये प्रोग्राम सुनने के लिए, और ये था आज का मुस्कान। मिलेंगे आपसे ऐसी ही प्यारी प्यारी बातों के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ाई करिए, और आपके चेहरे पर हमेशा हमेशा खिली रहे मुस्कान। नमस्कार।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार के भिन्न भिन्न विभागों ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं उनका पालन करें। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स की अपनी हाल ही की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नीदरलैंड्स सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, इससे तमिल समुदाय विशेष उत्साहित है। ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में किसानों और जनप्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री ने यहां शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कॉलेज चलो अभियान एवं प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया और रोड शो में सहभागिता भी की। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। श्री स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण, मकान की गणना का फील्ड कार्य कल 30 मई को पूर्ण कर लिया गया है। राज्य में प्रथम चरण का कार्य 55 जिले, 425 नगरीय निकाय और 449 तहसीलों के अंतर्गत 54,923 ग्रामों में संपादित किया गया है। और राजधानी भोपाल में कल तेज हवाओं ने मौसम का रुख बदल दिया। मौसम विभाग का कहना है कि आज भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं सांध्यकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। युवा श्रोता युववाणी कार्यक्रम शाम 5:02 पर सुनेंगे, जो आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 6:00 से। 7:21 पर ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। इसमें गीत संगीत और चर्चा के साथ ही सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा आप सुनेंगे शाम 7:30 से। विषय रहेगा आगामी खरीफ फसलों में उर्वरक प्रबंधन और समसामयिक कार्य। इस विषय पर आप सीधे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं, अपने प्रश्नों जिज्ञासाओं और समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर रहेगा 2660902 और 2660903। विशेषज्ञ होंगे प्रवीण कुमार जगा। रात 8:00 का समय सुर्खियों में कार्यक्रम के लिए होगा। डकर विकास के कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रधानमंत्री ई विद्या योजना पर केंद्रित कार्यक्रम, जो आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति रहेगी। रात 10:00 से सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, जिसे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। ये थे सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है लोक संगीत। कलाकार हैं मोहन सिंह यादव और साथी।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने लोकगीत सुने। कलाकार थे मोहन सिंह यादव और साथी। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। कलाकार हैं संगीता राय।

0: संगीता राय के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से डीटीएच के ऑडियो चैनल पर किया जा रहा है। पेश है चित्रपट संगीत।
1: मैं विनय उपाध्याय।
2: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें

0: दो तरह के लोग होते हैं,
1: एक जो सारी जिंदगी कार्यक्रम का ये पहला गीत उदित नारायण, सुनिधि चौहान, निहिरा जोशी और साथियों की आवाज में। गुलजार की रचना है शंकर एहसान लॉय का संगीत और फिल्म है बंटी और बबली।

कार्यक्रम का अगला गीत फिरोज खान की आवाज में। प्रसून जोशी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने और फिल्म है लंदन ड्रीम्स।

और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म है दिल धड़कने दो। आवाज याशिता शर्मा, मनीष कुमार और साथियों की है। जावेद अख्तर का गीत है और संगीत एक बार फिर शंकर एहसान रॉय का।

स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुनेंगे, श्रेया घोषाल, विशाल ददलानी और साथियों के स्वर में। अन्विता दत्त के लिखे इस गीत को संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

0: कविता सेठ और नीरज श्रीधर की आवाज में आप सुन रहे थे इरशाद कामिल का लिखा गीत। संगीत प्रीतम का था और फिल्म थी कॉकटेल। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी भोपाल।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया है कि इस महीने की 29 तारीख को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान की गणना का फील्ड कार्य कल 30 मई को पूर्ण कर लिया गया है। जनगणना के द्वितीय चरण में जनसंख्या की गणना का कार्य फरवरी 2027 में संपादित किया जाएगा। इस चरण में परिवार के सदस्यों से निर्धारित जानकारी एकत्र की जाएगी। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान एप्लीकेशन के प्रायोगिक संस्करण का शुभारंभ किया। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण।

थी माँ चित्रा चेलानी। तवां सभिनी खे मुंहिंजी सिक भरी नमस्ते। साथियों, धर्माऊ महीनो हली रहियो आहे, जंहिंखे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास बि सॾिजे थो। शास्त्रनि मूजिबि इन महीने में विर्त, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन ऐं ध्यानु करण सां सभिनी ॾुखनि जो नास थींदो आहे। भगवद गीता, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा ॿुधण जो बि अद्भुत फल मिलंदो आहे। अचो त अॼु कार्यक्रम जी शुरूआति बि असीं परमात्मा जे ध्यान सां कयूं ऐं पंहिंजे इष्ट देव साईं झूलेलाल जो ई भॼन ॿुधूं।

दोस्तों 31 मई 1725 में महाराष्ट्र जे चौंडी गोठ में जन्म थियो हो अहिल्या बाई जो। अहिल्या बाई जो संग मालवा जे राजा मल्हार राव होलकर जे पुट खांडेराव होलकर सा थियो हो। 1754 में पतिय जी लड़ाई में मौत खां पोए अहिल्या बाई के सहुरे मल्हार राव जो मार्गदर्शन मिलियो ए 1767 में मल्हार राव जी मौत खां पोए हुन मालवा राज जी कमान झली। लोकमाता अहिल्या बाई होलकर सोनहरे अखरन में लिखियल एक अहड़ो नालो आहे जैं राजपाट के पेंजे भोग जो वसीलो न पर शेवा जो साधन बणायो। उन दौर में जड़े केतरियों ही जायफाओं घर जी चार दीवारिया में सिमटियल हुयों।

तॾहिं अहिल्या बाई न रुगो मालवा साम्राज्य जी वाघूं झलियूं पर पंहिंजी प्रशासनिक सूझबूझ सां राज खे खुशहालीअ जी चोट ते पहुचाई। संदसि दरबार न्याय जो स्थान हो। तवारी गवाह आहे त कानून तोड़ण ते हुन पंहिंजे माइटनि खे बि सज़ा ॾियण में हबक न कई। उन्हनि जी आर्थिक दूरदर्शिता जी शाहिदी इन ॻाल्हि मां मिले थी जो हुननि महेश्वर खे पंहिंजी राजधानी बणायो। इन सां उतां जे जुलाहनि खे आसिरो मिलियो ऐं महेश्वरी साड़ीअ जो कमु हज़ारे कुटुंबनि जे अटे लटे जो ज़रियो बणियो। अहिल्या बाई ज़ाइफ़ाउनि लाइ बि केतिरा ई कम कयाई, जीअं ज़ालुनि खे जागीर में हक़ु ॾियारण, बेवा ज़ालुनि खे ॿार गोद वठण जो हक़ु ॾियारण वग़ैरह। अहिल्या बाई मालवा जी राणी हुई पर संदसि दिलि सॼे भारत लाइ धड़कंदी हुई। परॾेही हमलावरनि हथां ठाहियल केतिरनि ई मंदरनि धर्मशालाउनि जो हुन जीर्णोद्धार करायो। हुन तलवार जे ज़ोर ते न पर त्याग ऐं पुनर्निर्माण ज़रिए भारत जे नक्शे ते हिकु अमिट छाप छॾी। संदसि जीवन अॼु बि सभिनी लाइ हिकु मिसाल आहे। अॼु अहिल्या बाई होलकर जयंती जे ॾींहुं उन्हनि जे चरणनि में असांजो नमन आहे। साथियो, इन्हीअ सां गॾु ई अॼु 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस बि आहे। हीउ ॾींहुं मल्हाइण जो उद्देश माण्हुनि में तंबाकू सां थियण वारनि जानलेवा नुक़सान बाबति सुजाॻी आणण ऐं तंबाकू छॾण लाइ प्रेरित करणु आहे। तंबाकू जो सेवन अॼु कंहिं वैश्विक महामारी खां घटि न आहे। बीड़ी, सिगरेट, गुटका ऐं खैनी जहिड़ी शयूं रुगो इंसान जे शरीर खे ई नुक़सान नथियूं कनि पर केतिरनि ई खिलंदड़ कुटुंबनि खे बि तबाह कंदियूं आहिनि। इन गंभीर मसइले ॾांहुं ध्यानु छिकण लाइ विश्व स्वास्थ्य संगठन माना WHO पारां साल 1987 में हीउ ॾींहुं मल्हाइण जी शुरूआत कई वई। तंबाकू में निकोटीन ऐं ॿिया नुक़सान कंदड़ रसायन हूंदा आहिनि जिन सां कैंसर, दिलि ऐं फेफड़नि जी बीमारियूं थियण जो ख़तरो रहंदो आहे। ख़ासि ॻाल्हि आहे त जॾहिं को माण्हू धूम्रपान कंदो आहे त हू रुगो पाण खे न पर पंहिंजे आसे पासे वेठल हर माण्हूअ खे ख़तरे में थो विझे, जंहिंखे पैसिव स्मोकिंग चइजे थो। साथियो, तंबाकू निषेध हिकु ॾींहं जो न पर सॼे जीवन जो संकल्प हुअणु खपे। अचो त असीं सभु इहा पह कयूं त न त तंबाकू वापराईंदासीं ऐं न ही पंहिंजनि खे वापराइण ॾींदासीं। तंबाकू खे न ऐं ज़िंदगीअ खे हा चवंदासीं। ऐं हिन ज़रूरी ॼाण खां पोइ, छो त असांजे नंढड़नि नंढड़नि ॿारनि जी स्कूल जी छुटियूं हली रहियूं आहिनि, त पेश आहे भगवंती नावाणी ऐं साथियुनि जी आवाज़ में ॿारनि जो ही गीत।

0: दोस्तों हाणे वक्त आहे अॼु जी ॿी ज़रूरी ॼाण जो। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मल्हायो वेंदो आहे। कुदरत असांखे छा न ॾिनो आहे, वहंदा झरणा, झलंदा झंग, नीरो उभ ऐं चहकंदड़ पखी। पर आधुनिकरण जे इन दौर ऐं तरक़ीअ जी अंधी भज भजा में असीं कुदरत जे इन सींगार खे विञाए वेठा आहियूं। प्रदूषण मार कई आहे, हवा में वहंदो धुओं ऐं नदियुनि में वहंदो किचरो धरतीअ जा ज़ख़्म बणिजी पिया आहिनि। ग्लोबल वॉर्मिंग ऐं बदिलियल मुंद इन्हीअ ॻाल्हि जी शाहिदी आहे त जेकर असां हाणे बि न संभलियासीं त आईंदह भयानक थी सघे थो। असां सभई गर्मीअ जी मार ॾिसूं ई पिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जा ही अखर आहिनि त कुदरत वटि हर माण्हूअ जी ज़रूरत पूरी करण लाइ सभु कुझु आहे, पर लालच पूरी करण लाइ न आहे। दोस्तों असांखे इहो समुझणो पवंदो त असीं कुदरत जा मालिक न आहियूं ऐं पर्यावरण जी सार संभाल कंहिं सरकारी योजना जी मोहताज न, पर असांजी आदत हुअणु घुरिजे। पर्यावरण दिवस ते असीं रुगो भाषण ॾेई या ॿुधी वेही न रहूं, पर पंहिंजी ज़िंदगीअ में बि तब्दीलियूं आणियूं। वण पोखियूं ऐं उन्हनि जी संभाल कयूं। प्लास्टिक घटि में घटि वापरायूं, पाणी न विञायूं, अपसाइक्लिंग ऐं रीसाइक्लिंग ॾांहुं रुख कयूं। नंढा नंढा क़दम वॾी क्रांति आणे सघनि था ऐं सुजलाम सुफलाम जो सुपिणो सच थी सघे थो। दोस्तों इन्हीअ मौज़ूअ ते विशेष ॼाण ॾियण लाइ आकाशवाणी भोपाल में अॼु असां सां जुड़ियल आहिनि वार्ताकार सरिता खयानी जी। अचो त ॿुधूं था उन्हनि खां इहा विशेष वार्ता।
1: जय झूलेलाल भाउरों ऐं भेनरों, मां सरिता खयानी तव्हां सां रूबरू आहियां। अॼु असां चर्चा कंदासीं पर्यावरण ते। त सभिनी खां पहिरियों पर्यावरण जो मतिलबु छा आहे? पर्यावरण जो मतिलबु आहे परी प्लस आवरण। परीअ जो मतिलबु हूंदो आहे पृथ्वी ऐं आवरण जेको सॼी पृथ्वीअ जे सभिनी पासनि खां घेरे रहियो आहे उहो आहे आवरण। सवली भाषा में चइजे त पृथ्वीअ ते जो बि मौजूदु आहे उहो ई पर्यावरण आहे। असांजे आसे पासे जे वातावरण खे ही पर्यावरण चइबो आहे। पर्यावरण में जैविक ऐं अजैविक सभई ईंदा आहिनि। जैविक माना जिन में जान आहे, जेके बि जीवित आहिनि, जीअं त वण टण पखी कीड़ा माकोड़ा जानवर ऐं असां माण्हू बि ईंदा आहियूं। अजैविक में उहे ईंदा आहिनि जेके जीवित न आहिनि, माना नदियूं, पहाड़, हवा, पाणी, पृथ्वी, इहे सभु। पर्यावरण ठहंदो आहे चार मंडलनि सां: जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, स्थलमंडल। इन सभिनी खे पर्यावरण चइबो आहे। जलमंडल में जल, जलीय पौधा, जलीय जीव जंतु ईंदा आहिनि। वायुमंडल में घणेई प्रकारनि जी गैसूं हूंदियूं आहिनि, धूल जा नंढा नंढा कण, पखी, इहे सभई ईंदा आहिनि। स्थल मंडल में इंसाननि जी ठहियल शयूं ऐं सभई स्थल जी प्राकृतिक शयूं ईंदियूं आहिनि। ऐं जैव मंडल में सभई जीवित ईंदा आहिनि। जंहिं जॻह ते पाणी, हवा, ज़मीन, इहे सभु हूंदा आहिनि, उते ई जैव मंडल हूंदो आहे। हिननि सभिनी मंडलनि खे मिलाए करे ठहंदो आहे पर्यावरण। पर्यावरण खे असां ॿिनि भाॻनि में वंडी सघंदा आहियूं: प्राकृतिक यानी जेके भॻवान ठाहिया आहिनि, पाणी, हवा, जीव जंतु, वण।

पृथ्वी, पहाड़, नदियूं, समुंड ऐं अलाए छा छा। ॿियो आहे अप्राकृतिक शयूं जिन खे इंसान ठाहियो आहे, जीअं रोड, मकान, गाॾियूं, हवाई जहाज ऐं ॿिए बि घणेई शयूं। पर्यावरण जो असांजे जीवन में ॾाढो महत्व आहे। असां खे पर्यावरण सां ऑक्सीजन, पाणी, फल, अनाज, खाधे जी हर शइ मिलंदी आहे। असांजे जीवन जे लाइ ज़रूरी आहे शुद्ध हवा, शुद्ध पाणी। प्रकृतिअ सां मिलण वारा फल, अनाज, पर अफ़सोस, पर्यावरण में प्रदूषण फैलिजी रहियो आहे। आख़िर इहो प्रदूषण अचे किथां थो? इहो सभु असां करे रहिया आहियूं। हा, तव्हां सही ॿुधो, इहो सभु असां करे रहिया आहियूं। जंगलनि जे वणनि खे कटे रहिया आहियूं। उहे वण जेके असां खे साह खणण जे लाइ ऑक्सीजन ॾींदा आहिनि ऐं असां खे नुक़सान पहुचाइण वारी कार्बन डाइऑक्साइड खे एब्ज़ॉर्ब कंदा आहिनि। इहो ई न, बारिश जे मौसम में बोड अचण खे रोकींदा आहिनि। फैक्ट्रीज़ जा निकिरण वारो धुओ ऐं ज़हरीली गैस हवा में मिली रही आहे, हवा खे प्रदूषित करे रही आहे। असां रुगो वायुमंडल खे ई प्रदूषित न करे रहिया आहियूं, बल्कि जलमंडल खे बि प्रदूषित करे रहिया आहियूं। जल असांजे शरीर जो 70% हिसो आहे। खाधे जे बिना इंसान वरी बि रही सघे थो, पर जल जे बिना हिकु ॾींहुं बि नथो रही सघे। पर असांजी ठहियल फैक्ट्रीज़, केमिकल्स मिलियल पाणी नदियुनि में विझी करे नदियुनि जे जल खे प्रदूषित करे रहिया आहिनि। स्थल मंडल बि प्रदूषण सां बचियल कोन्हे। ज़मीन में घणेई केमिकल्स ऐं पॉलीथिन विझी करे असां ज़मीन खे प्रदूषित करे रहिया आहियूं। पर्यावरण खे संरक्षण जी ज़रूरत आहे। इहो सभिनी खां पहिरियों महसूसु कयो वियो 1972 में। स्टॉकहोम, स्वीडन में 1972 में वैश्विक स्तर ते हिकड़ो सम्मेलन रखियो वियो। हिन सम्मेलन में घणेई देशनि भाग वरितो ऐं पर्यावरण संरक्षण जी मुहिम हलायऊं। ही सम्मेलन 5 जून 1972 जो थियो। इन करे ॿिए साल 5 जून 1973 खां 5 जून खे पर्यावरण दिवस जे रूप में मल्हाइण जी घोषणा कई वई। स्टॉकहोम जे सम्मेलन खां 20 वर्ह खां पोइ 1992 में रियो में पृथ्वी सम्मेलन थियो, जंहिंमें एजेंडा 21 रखिया विया। इन करे इन सम्मेलन खे रियो 21 बि चयो वेंदो आहे, जंहिंमें असांजे भविष्य खे बचाइण जे लाइ छा छा उपाय कजनि, इहो वीचार कयो वियो। हिन सम्मेलन में 2 संगठन ठहिया, हिकड़ो UNFCCC, ॿियो कॉप। कॉप जी बैठक हर साल थींदी आहे। हिन बैठक में पर्यावरण खे कीअं बचायो वञे, इन जी चर्चा बि थींदी आहे ऐं बचाव जा उपाय ऐं कारण, इहे सभई वीचार कया वेंदा आहिनि ऐं उन्हनि ते कीअं अमल कजे, इहो सोचियो वेंदो आहे। हाणे मां तव्हां खे ॿुधायां थी ओज़ोन परत जे बारे में। ओज़ोन जी परत पृथ्वीअ खे सिज जी पराबैंगनी किरणनि खां बचाईंदी आहे। पराबैंगनी किरणनि खे एब्ज़ॉर्ब करे वठंदी आहे ऐं हीअ पराबैंगनी किरणूं असांजे लाइ तमामु नुक़सान वारियूं आहिनि। पर 16 सेप्टेम्बर 1987 में मॉन्ट्रियल में हिकड़ो सम्मेलन थियो। हिन में सभिनी खां पहिरियों इहो रखियो वियो कि ओज़ोन जी परत जेका आहे असांजी रक्षा कंदी आहे उहा सन्नी थींदी थी वञे। हुन में टुंग थी विया आहिनि ऐं उन खे रोकण जे लाइ छा करणु घुर्जे, इन्हनि ॻाल्हियुनि ते ध्यानु ॾिनो वियो। ओज़ोन जी परत जे सन्हे थियण सां ग्लोबल वार्मिंग वधी रही आहे। ओज़ोन जी परत जे सन्हे थियण जो कारण कुझु नुक़सान पहुचाइण वारी गैसेस आहिनि। उन में ख़ासि करे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस आहे। ओज़ोन जी परत सां रिएक्ट करे इहे ज़हरीली गैसूं उन खे सन्हो कंदियूं वेंदियूं आहिनि ऐं ओज़ोन जी परत जे सन्हे थियण सां ग्लोबल वार्मिंग वधी रही आहे। इहे जेके अल्ट्रावॉयलेट किरणूं आहिनि जेको ओज़ोन जी परत उन खे एब्ज़ॉर्ब करे वठंदी आहे, उहे असांजे लाइ तमामु ख़तरनाक आहिनि। उन्हनि सां त्वचा जो कैंसर, त्वचा जी बीमारियूं, मोतियाबिंद, इहे सभु वधी सघनि था। यूवी किरण जिन खे ओज़ोन

0: एब्जॉर्ब कंदी आहे, जीव जंतु ऐं पौधनि ते बि असर करे सघे थी। पर्यावरण जे संरक्षण जी कोशिश सॼे विश्व में थी रही आहे। असांजी सरकार बि संरक्षण जे लाइ कम करे रही आहे, पर रुगो सरकार ही न, असांजी बि ज़िमेदारी आहे त असां पर्यावरण खे शुद्ध रखण जे लाइ कोशिश कयूं। असां सभई कोशिश कयूं त कुझु वण लॻायूं ऐं पॉलिथिन जो उपयोग करणु बंदि कयूं। असां सभई पर्यावरण जो संरक्षण कंदासीं त पर्यावरण शुद्ध रहंदो। असां पंहिंजे जनम ॾींहं ते हिकु पौधो ज़रूर लॻायूं। जेके शादीशुदा आहिनि उहे पंहिंजी शादीअ जी वर्षगांठ ते बि पौधो लॻाइनि। रुगो पौधो लॻाइणो कोन्हे, उन जो ध्यानु बि रखणो आहे, जीअं इहे पौधा वॾा थी करे पर्यावरण जे प्रदूषण सां पर्यावरण खे प्रदूषण सां बचाइनि। सरकार पंहिंजी कोशिश करे रही आहे, पर असांजी बि ज़िमेदारी आहे त असां पर्यावरण खे बचायूं ऐं स्वस्थ जीवन जीयूं। पर्यावरण स्वच्छ हूंदो त असांजो जीवन बि स्वस्थ हूंदो।
1: महिरबानी सरिता जी हिन जानकारी लाइ। ऐं दोस्तो, हाणे हलंदे हलंदे अचो त कार्यक्रम में मज़ो था माणियूं कमला केसवानी ऐं कला हज़ारी जी आवाज़ में हिन सुहिणे गीत जो।

दोस्तों, हिन गीत सां गॾु ई असांजे अॼु जे कार्यक्रम जो वक़्तु बि समाप्त थो थिए। उमेद आहे त तव्हांखे कार्यक्रम ज़रूरु वणियो हूंदो। पंहिंजा वीचार ऐं पंहिंजा राया असां ताईं ज़रूरु पहुचाईंदा आकाशवाणी भोपाल जे फेसबुक पेज ज़रिए। हाणे पंहिंजी रेडियो साथी चित्रा चेलानी खे ॾींदा इजाज़त। तव्हां सभई स्वस्थ रहो, मस्त रहो ऐं सिंधी ॻाल्हाईंदा रहो। वरी गॾिजिबो, सभ जो भलो।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से डीटीएच के ऑडियो चैनल पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से।

पिछली कड़ी में आपने सुना मुश्ताक सायरा को लिए बिना वापस लौट जाता है। फजी मुश्ताक से सायरा को ना लाने की वजह पूछती है। कुछ दिनों बाद लोगों की कानाफूसी सुनकर वो मुश्ताक को दोबारा भेजती है। और अब आगे।

0: अरे फाता, करीम ने खबर भेजी है कि सारे को भेज दूं।
1: सारे को भेज दूं? वो क्या बोझ है हम पर? भेज दूं? अरे सारे को बुलाना ही है तो खुद आते या मुश्ताक को ही भेजते?
0: फाता, तुम हर बात उल्टी ही क्यों लेती हो? सारे उनकी बहू है और उन्होंने मुश्ताक को भी भेजने की बात कही है। मुश्ताक आए तो सारे को भेज देना।
2: सलाम अब्बू।
0: अरे अरे आओ बेटा, आओ, अभी तुम्हारी ही बात हो रही थी।
2: सलाम अम्मी।
0: सलाम, खुदा सलामत रखे। फाता, सारे को बोल चाय बना लाए।
1: बोलती हूँ।
2: आपको अब्बू का पैगाम तो मिल गया होगा?
0: हाँ बेटा, हाँ, मिल गया। और अभी उसी पर बात हो रही थी।
2: अच्छा,
0: इशारे को कैसे भेजा जाए। अब तुम आ ही गए हो तो साथ ही लेते जाना।
1: कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। अभी ऐसी भी क्या जल्दी है कि सारे को ले जाओगे? कुछ दिन मायके में रहती तो उसे भी थोड़ा आराम हो जाता। वहां जाकर तो गृहस्थी की चक्की में पिसना ही है।
0: फाता, सारे को बोल तैयार हो जाए।
1: अरे मुश्ताक पहले सारे से तो मिल ले, फिर जाने की बात तो हो ही जाएगी।

0: लीजिए, चाय लीजिए।
1: सारे, तुम ठीक हो?
0: हाँ ठीक हूं।
1: तैयार हो जाओ, हमें अभी चलना है।
0: मुझे मुझे आपसे बात करनी है।
1: क्या?
0: मेरी बात को जरा आराम से सुनना होगा।
1: अरे पहले बात तो कहो।
0: मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती।
1: क्या मेरे साथ नहीं जा सकती? पर क्यों?
0: अब मैं तुम्हारे साथ जाना तो चाहती हूँ, पर उस घर में नहीं।
1: उस घर में नहीं का क्या मतलब है तुम्हारा?
0: मुश्ताक, हमारी उम्र ही कितनी है कि मैं अपने को घर गृहस्थी में झोंक दूं?
1: सारे, घर गृहस्थी संभालने को तुम एक भार समझ रही हो? हमारा घर ही कितना बड़ा है, 4 लोगों का परिवार है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं?
0: मुश्ताक, मैं परिवार का विरोध नहीं कर रही, लेकिन अपना परिवार हो ना।
1: अपना परिवार? तो क्या वो हमारा परिवार नहीं है जिसमें हम

0: रहते हैं?
1: परिवार तो मियां बीवी से बनता है मुश्ताक।
0: सारे, तुम्हें तुम्हें क्या हो गया है?
1: देखो, अगर अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी।
0: सारे, बात मानने या ना मानने की नहीं है, तुम जो कह रही हो वो मुमकिन नहीं है।
1: इसका मतलब कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते।
0: सारे, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ?
1: तो तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं? हम एक अलग घर में प्यार से रहेंगे मुश्ताक।
0: सारे, क्या हम उस घर में प्यार से नहीं रहते? आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है और तुम ये कैसे सोच सकती हो?
1: मुश्ताक, मैं कुछ और नहीं जानती, तुम्हें अलग घर लेकर रहना ही होगा।
0: सारे, ये जिद गलत है। तुम शायद परिवार की अहमियत को नहीं समझती, और जिस समाज में हम रह रहे हैं उसकी अपनी मर्यादा भी होती है और परिवार उसका आधार होता है।
1: मैं अपना परिवार चाहती हूँ मुश्ताक, सिर्फ मैं और तुम, बस।
0: सारे, तुम्हें उस घर में क्या मेरे माँ बाप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते?
1: करते होंगे, पर मैं अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी मुश्ताक।
0: तुम समझने की कोशिश करो।
1: मैं बस इतना जानती हूँ मुश्ताक कि अगर तुम अलग घर लेकर रहने को तैयार हो तो ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ, नहीं तो।
0: सारे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार को कैसे छोड़ दूँ? मेरे अम्मी अब्बू की जिम्मेदारी मुझ पर है और ऐसा करना मुझे किसी भी सूरत में पसंद नहीं।
1: तो तुम ये समझते हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी संभालने में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं?
0: सारे, क्या कि अम्मी अब्बू को संभालना अपने जीवन को नष्ट करना होता है? ये तुम्हें क्या हो गया है? ये ख्याल तुम्हारे जहन में आ भी कैसे सकता है?
1: मुश्ताक, मैं तुमसे बहस नहीं करती। तुम अपने अम्मी अब्बू को कहां कैसे रखते हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। और एक बात और सुन लो कि जब तक तुम्हारे अम्मी अब्बू उस घर में हैं, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी।
0: सारे, ये तुम नहीं कह रही, मेरी सारे ऐसी नहीं जो परिवार को ठुकरा दे, मुझे अपनों से अलग कर दे। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कह सकती, वो नहीं कह सकती कि मैं उन अम्मी अब्बू को छोड़ दूं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। अपने अपने जिम्मेदारियों से मुकरने को मेरी सारा नहीं कह सकती। वो मुझसे प्यार करती थी।
1: मुश्ताक, सारे आज भी तुमसे प्यार करती है, पर तुम मुझसे प्यार नहीं करते।
0: सारे, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ?
1: अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मेरे कहने पर तुम एक रात मेरे घर नहीं रुक सकते थे क्या? पर तुम नहीं रुके और अब भी तुम मेरा कहना नहीं मान रहे। इसका एक ही मतलब है मुश्ताक, कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते।
0: सारे, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ?
1: तुम मुझे प्यार नहीं करते। अगर करते होते तो मेरे कहने पर तुम एक रात मेरे घर रुक सकते थे, पर तुम नहीं रुके और तुम अब भी मेरा कहना नहीं मान रहे। इसका एक ही मतलब है मुश्ताक कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते।
0: सारे, समझने की कोशिश करो।
1: तुम्हें बताना होगा मुश्ताक कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं।
0: सारे,

0: हाय, मार डाला मेरी फूल सी बच्ची को। अरे सुनो रे लोगों सुनो, मार डाला मार डाला।
1: अरे ओ फाता, क्या हुआ, क्यों रो रही हो?
0: मेरी फूल सी बच्ची।
1: अरे कुछ तो बताओ, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो?
0: मार डाला मार डाला।
1: किसको मार डाला, किसने मार डाला?
0: हाय मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई।
1: साफ साफ बता कि हुआ क्या है।
0: सारे, हाय मेरी बच्ची।
1: क्या हुआ सारे को?
0: हाय भाग फूट गए उसके, हाय मेरी बच्ची।
1: क्या हुआ उसे?
0: सारे का तो जीवन ही बर्बाद हो गया। मैं क्या जानती थी कि मेरे भाई का लड़का ऐसा निकलेगा, मेरे ही सारा को मारा।
1: सारे को मारा?
0: हाय या अल्लाह।
1: लेकिन कुछ तो हुआ होगा ना?
0: अरे क्या बताऊं, कुछ दिनों से सारे यहीं रह रही थी। मेरे बीमार होने पे आई थी, सो मुश्ताक को पसंद नहीं था।
1: अरे फाता, ऐसा भी क्या कि कोई इस बात के लिए अपनी ही बीवी को मारे?
0: अरे मर्दों का क्या है, वो तो चाहता ही है कि औरत उसके गुलाम बन कर रहे।
1: सुना है कि मुश्ताक इससे पहले भी सारे को लेने आया था।
0: अरे इसीलिए तो नाराज हो गया और सारे को मार बैठा होगा।
1: लेकिन मुश्ताक तो सारे के अपने मामा का लड़का है, फिर भी ऐसा व्यवहार, छी छी।
0: अरे औरत मर्द का रिश्ता ही ऐसा होता है जहाँ हर रिश्ता खत्म हो जाता है। नहीं तो कोई अपनी पत्नी को इस तरह मारे।
1: सारे कहाँ है?
0: अपने कमरे में रो रही है मेरी बच्ची, उसका सारा सपना चूर चूर हो गया। हाय अब नहीं भेजूंगी उसे। हाय जो मेरी बच्ची को मेरे सामने मार सकता है, वो मेरे पीछे उसके साथ कैसा बर्ताव करता होगा। जीते जी मर गई।
1: फाता, तू अपने भाई करीम को तो समझा ही सकती है कि मुश्ताक पर लगाम रखे। अपनी बीवी के साथ कोई ऐसा सलूक करता है, ये तो अच्छी बात नहीं।
0: अपने भाई से क्या बात करूं, उसे तो आराम ही है। एक नौकरानी मिल गई है जो सारा काम घर का करती है। नौकरानी की तरह हो गई है मेरी बच्ची वहां जाकर। अब मैं अपनी बच्ची को उस जालिम के साथ नहीं भेजूंगी।
1: लेकिन मुश्ताक मानेगा?
0: मानेगा नहीं तो क्या, अपनी बच्ची को मरने के लिए भेजूंगी नहीं, नहीं।
2: लेकिन औरत का असली घर तो शौहर का घर ही होता है।
1: लेकिन शौहर भी तो ऐसा नहीं होता कि हर बात पर मारे पीटे।
0: अब तुम ही लोग फैसला करो कि मैं अपनी सारे को उस जालिम मुश्ताक के साथ भेजूं या नहीं।
1: मियां बीवी के बीच झगड़ा तो होता ही रहता है, ऐसे में ना भेजना ठीक नहीं। पर पहले तू अपने भाई से बात तो कर ले और मुश्ताक से भी बात कर ले।
0: बात क्या करना, वो तो चाहेंगे ही कि सारे वहां आ जाए। उन्हें तो एक नौकरानी चाहिए, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा।
1: अब चलो री, बहुत देर हो गई है।
3: हाँ, चलो
1: चलो चलो चलते हैं।

0: पाता
1: आ गए।
0: पाता, ये औरतें क्या बातें करते हुए जा रही थीं?
1: अरे वही बातें करेंगी ना जो देखा है उन्होंने।
0: आखिर हुआ क्या है?
1: अरे मुश्ताक ने सारे को मेरे सामने जालिमों की तरह मारा।
0: फाता, तू ये क्या कह रही है? मुश्ताक ने सारे को मारा? नहीं, ये नहीं हो सकता। जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है।
1: अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है मुश्ताक को सारे को मारते हुए।
0: कहीं कुछ गलती हुई है, हमें उनसे बात करनी चाहिए और इस बात को यहीं खत्म करना चाहिए।
1: मैं ऐसा नहीं कर सकती।
0: अरे इस बात को फैलने से हमारी बदनामी ही होगी।
1: या खुदा, अब बदनामी क्या होगी? सारे की तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई।
0: ओफो, तुमसे बात करना भी? सारे कहाँ है?
1: अरे रो रो कर बुरा हाल है बेचारी का। जिसका पति इतना निर्दयी हो उसका क्या होगा? हाय रे मेरी बच्ची।
0: अरे फाता, अब तू चुप कर। तू इस बात को क्यों बढ़ा रही है? ये ठीक नहीं है। इससे उनके जीवन में दुख ही बढ़ेगा।
1: तुम चुप करो जी, तुम्हें तो कुछ समझ में आता ही नहीं। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मैं खूब समझती हूँ। सारे मेरी बच्ची है और उसके सुख दुख को तुमसे ज्यादा मैं समझती हूँ।
0: फाता, तू जो कर रही है वो सारे को कभी खुशी नहीं दे सकता। तू इस तरह से शोर मचा कर उनके जीवन में समस्या को ही बढ़ाएगी। अरे हमें दोनों से बात करनी चाहिए जिससे इस बात को यहीं खत्म किया जा सके।
1: मैं ऐसा नहीं कर सकती। जानबूझकर मैं अपनी बच्ची को उस मुश्ताक के साथ अब नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी।
0: फाता, तू बात को बढ़ा रही है, ये ठीक नहीं है। हमें इस बात को सुलझाना है न कि।
1: चुप करो, चुप करो, तुमसे कुछ नहीं होगा। अब जो होगा मैं ही करूंगी। तुम्हें बीच में बोलने की अब कोई जरूरत नहीं है।
0: या अल्लाह,

0: सारे मेरी बच्ची इस तरह क्यों बैठी है?
1: अम्मी अम्मी, ये तूने अच्छा नहीं किया।
0: अरे सारे, तू कह रही है कि मैंने अच्छा नहीं किया? अरे मैंने जो किया तेरे भले के लिए किया है।
1: अम्मी ये ठीक नहीं हुआ है, ये घर की बात थी अम्मी, मेरे और मुश्ताक के बीच की बात थी, और तुमने तुमने इस बात को पूरे गांव में फैला दिया।
0: अरे सारे, तू नहीं जानती, ये मर्द ऐसे मुट्ठी में नहीं आते। अब देख मैं कैसे उसे ठीक करती हूँ।
1: अम्मी तू हमें हमारे हाल पर छोड़ दे।
0: तू क्या समझती है मैं तेरी दुश्मन हूँ? मैं जो कर रही हूँ वो तेरे भले के लिए कर रही हूँ।
1: अम्मी इससे ना तो मेरा भला हो सकता है और ना ही किसी और का, इससे सिर्फ बदनामी और बर्बादी हो सकती है। अम्मी
0: सारे सारे, तू अभी बच्ची है, दुनियादारी नहीं समझती। और सुन ले, मैं जो कर रही हूँ तेरे भले के लिए कर रही हूँ बेटी।
1: आज जो हुआ है उससे किसका भला होगा अम्मी? और ये सब तुमने ही कहा था करने को।
0: अच्छा ही हुआ कि जल्द उस जालिम की असलियत का पता चल गया, जो मेरे सामने, एक माँ के सामने उसकी बच्ची को

0: अरे वो पीछे क्या कुछ नहीं कर सकता है।
1: अम्मी बस भी करो, जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो।
0: ये सब क्या मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे भी दुख है। तू मेरी बेटी है और मेरे सामने तुझे कोई मारे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बोल, तू ही बोल, ये अच्छा लग सकता है क्या?
1: मुश्ताक मेरा शौहर है अम्मी, और मैं उससे प्यार करती हूँ। और फिर एक परिवार में ऐसा हो जाना कोई बड़ी बात तो नहीं है। मुश्ताक ऐसा नहीं है अम्मी, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है।
0: चुप कर तू, मैंने देख लिया अपनी आंखों से कि मुश्ताक कैसे प्रेम करता है। और अगर उसका प्रेम ऐसा ही है तो तुम्हें उसके पास दोबारा जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुश्ताक और मुश्ताक जैसे मर्द औरत को सिर्फ घर की नौकरानी बनाकर रख सकते हैं, मार सकते हैं। और छी
1: अम्मी, तू नाहक परेशान मत हो, इस बात को यही खत्म कर दे, सब ठीक हो जाएगा अम्मी।
0: अब कुछ ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें नौकरानी सा काम करने और मार खाने के लिए नहीं छोड़ सकती। देर से ही सही, मुश्ताक का असली चेहरा तो सामने आ ही गया,
1: अम्मी।
0: और उस करीम और फजी की नीयत का भी, जो तुझे महज एक औरत के रूप में नौकरानी समझते रहे हैं और उससे भी बदतर व्यवहार करते रहे हैं। अब देखना, मैं उन्हें बता दूंगी कि फाता की बेटी को दुख देने का मतलब क्या होता है। अगर मैंने उन्हें सबक ना सिखाया तो मेरा नाम नहीं।
1: अम्मी अब तू कुछ नहीं करेगी, जो तूने कर दिया वही बहुत है, और उससे जो कुछ भी हुआ उसे मैं कबूल कर लूंगी। अब और कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है अम्मी।
0: अब तू मुझे समझाएगी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं? क्या मैं तेरी दुश्मन हूं बेटी? तेरी माँ हूं मैं, जो कुछ भी करूंगी तेरे भले के लिए ही करूंगी। और मैं उन्हें समझा दूंगी कि औरत पर जुल्म करना इतना आसान नहीं होता। उन लोगों को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे।
1: अम्मी तू अब कुछ भी नहीं करेगी, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसे तू इतना तूल दे रही है। एक परिवार में ऐसा होता ही रहता है अम्मी, हमें इसे संभालना है ना कि बिगाड़ना। मैं बात करूंगी मुश्ताक से।
0: अब तू उस जालिम से नहीं मिलेगी
1: अम्मी,
0: और तुझे संभालना होता कब का संभाल चुकी होती। और इतने दिनों में मुश्ताक तेरी मुट्ठी में होता, जैसे खजरी अपने शौहर को अपने इशारों पर रखती है। तुझसे कुछ नहीं होगा, अब जो होगा वो मैं करूंगी। और इस बीच में तुम्हें बोलने या कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है
1: अम्मी।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकिया की पांचवी कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीत दिया था मोहनलाल ने, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अक्रम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे हरीश, लोकेश, सुप्रिया, नीलम और अंशु। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

संग्रहालय से इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक सिसकियां की 5वीं कड़ी। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है।

मीडिया वेग 88.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में।

0: मीडिया वे 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड मॉल्स कल नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्री संवाद की सह अध्यक्षता करेंगे। ये संवाद हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा रक्षा और सुरक्षा सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 70 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 181 करोड़ लाख रुपए की राशि के सांदीपनी विद्यालय शुजालपुर अकोदिया सुंदरसी और पोचानेर के निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण किया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए निर्णय लिया गया है। भगवान बुद्ध के

0: अवशेषों को वायुसेना के विमान से दिल्ली से मंगोलिया भेजा गया है। ऐसा भारतीय वायुसेना के मित्र देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत किया गया है। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हमारा चर्चा का विषय रहेगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस। साथ ही हमारा दूसरा विषय है नेट बैंकों के उपयोग में सावधानी रखें और ऑनलाइन फ्रॉड से बचें। दोस्तों, इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 7 बातों का रखें खास ख्याल पर। दोस्तों, क्रम जीवन आलोक में हम चर्चा करेंगे माता पिता का सम्मान हमारी संस्कृति का आधार पर और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर। साथियों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह दिवस तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने और समाज में तंबाकू से जुड़ी समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तंबाकू के सेवन से न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रभावित होता है बल्कि परिवार और समाज पर भी इसका गंभीर असर पड़ता है। इस दिन को मनाने की पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा सन 1987 में की गई थी। दोस्तों, तंबाकू का सेवन आज के समय में एक गंभीर समस्या बन चुका है। इसमें मुख्य रूप से धूम्रपान, पान मसाला, सिगरेट आदि शामिल हैं। तंबाकू का सेवन किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन युवाओं और किशोरों में इसका प्रचलन अधिक देखने को मिल रहा है। दोस्तों, तंबाकू के सेवन से शरीर में कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। सबसे आम बीमारी फेफड़ों का कैंसर है, जो कि तंबाकू सेवन करने वालों में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके अलावा हृदय रोग, दांत और मसूड़ों की समस्या, अस्थमा, उच्च रक्तचाप और पेट संबंधी रोग भी तंबाकू के कारण हो सकते हैं। दोस्तों, तंबाकू का धुआं केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी हानिकारक होता है। साथियों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर सरकारें, गैर सरकारी संगठन, स्कूल, सामाजिक संस्थाएं विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस दिन रैली, सेमिनार, जागरूकता अभियान और पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित कर लोगों को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से अवगत कराया जाता है। स्कूलों, कॉलेजों में छात्र छात्राओं को तंबाकू से दूर रहने की प्रेरणा दी जाती है। इसके अलावा सोशल मीडिया का उपयोग भी किया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका संदेश पहुंचाया जा सके। दोस्तों, तंबाकू निषेध दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही समाज और देश के लिए मूल्यवान योगदान दे सकता है। तंबाकू से दूरी बनाकर हम न केवल अपनी सेहत बचा सकते हैं बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण भी स्थापित कर सकते हैं। साथियों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस केवल एक औपचारिक दिवस नहीं है बल्कि यह हमें हमारे जीवन और समाज की सुरक्षा की याद दिलाता है। तंबाकू से दूर रहना हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपनी सेहत, परिवार और समाज की भलाई के लिए इस हानिकारक आदत से पूरी तरह बचना चाहिए। यदि हर व्यक्ति तंबाकू से बचता है तो समाज स्वस्थ, मजबूत और खुशहाल बन सकता है। इसलिए हमें इस दिवस का महत्व समझना चाहिए और इसे जागरूकता और परिवर्तन का अवसर बनाना चाहिए। आइए साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में। हमारे अगले विषय नेट बैंकिंग का उपयोग करते समय सावधानी रखें और ऑनलाइन फ्रॉड से बचे पर चर्चा करने का। साथियों

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में। हमारे अगले विषय नेट बैंकिंग का उपयोग करते समय सावधानी रखें और ऑनलाइन फ्रॉड से बचे पर चर्चा करने का। साथियों आज के डिजिटल युग में इंटरनेट और स्मार्टफोन ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। अब लोग घर बैठे ही बिजली बिल जमा कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं तथा खरीदारी भी कर सकते हैं। इन सभी सुविधाओं में नेट बैंकिंग का विशेष महत्व है। नेट बैंकिंग के माध्यम से बैंक से जुड़े अधिकांश कार्य बिना बैंक जाए आसानी से किए जा सकते हैं, लेकिन जहां सुविधाएं बढ़ी हैं, वहीं ऑनलाइन धोखाधड़ी अर्थात ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए नेट बैंकिंग का उपयोग करते समय सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है। साथियों नेट बैंकिंग का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। लोग किसी भी समय अपने खाते की जानकारी देख सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं और विभिन्न प्रकार के भुगतान कर सकते हैं। परंतु यदि उपयोगकर्ता थोड़ी भी लापरवाही करता है तो साइबर अपराधी उसका बैंक खाता खाली कर लेते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को ऑनलाइन सुरक्षा के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोग कई तरीकों का उपयोग करते हैं। वे नकली कॉल, फर्जी वेबसाइट, ईमेल, मैसेज या मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों को धोखा देते हैं। साथियों कुछ लोग लालच देकर लिंक भेजते हैं और उस लिंक पर क्लिक करते ही व्यक्ति की सारी निजी जानकारी चोरी हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी अपनी जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों नेट बैंकिंग का सुरक्षित उपयोग करने के लिए मजबूत पासवर्ड रखना चाहिए। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह शामिल हो। जन्म तिथि, मोबाइल नंबर या सरल शब्दों को पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इन्हें कोई भी आसानी से हैक कर सकता है। साथियों समय समय पर पासवर्ड बदलते भी रहना चाहिए। इसके साथ ही मोबाइल में स्क्रीन लॉक और बैंकिंग ऐप में सुरक्षा सुविधाएं चालू रखनी चाहिए। साथियों सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध मुफ्त वाईफाई का उपयोग करके नेट बैंकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे नेटवर्क सुरक्षित नहीं होते। साइबर अपराधी इन नेटवर्क के माध्यम से आपकी जानकारी चुरा सकते हैं। हमेशा अपने निजी और सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा बैंकिंग कार्य समाप्त होने के बाद खाते से लॉग आउट करना अवश्य चाहिए। साथियों आजकल OTP फ्रॉड बहुत सामान्य हो गया है। बैंक हमेशा ग्राहकों को चेतावनी देते हैं कि OTP किसी के साथ साझा न करें। OTP, ATM पिन और पासवर्ड पूरी तरह गोपनीय होते हैं। यदि किसी व्यक्ति बैंक अधिकारी बनकर भी इन्हें पूछे तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि बैंक ऐसे फोन कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं करते। साथियों यदि किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो उसे तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए और साइबर हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। समय पर कार्रवाई करने से नुकसान कम हो सकता है। साथियों सरकार और बैंक भी लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर अभियान चलाते रहते हैं। दोस्तों नेट बैंकिंग आधुनिक जीवन की एक उपयोगी सुविधा है, लेकिन इसका सुरक्षित उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता हमें बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकती है। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। दोस्तों अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 7 बातों का रखे खास ख्याल पर चर्चा करने का। दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश की जनता से 7 प्रमुख अपील की गयी जिनको मानना हमारा दायित्व है। दोस्तों उन्होंने कहा वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें, जहां तक संभव हो कर्मचारियों को घर से काम करना चाहिए ताकि ईंधन की बचत हो सके। उन्होंने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने को कहा, इसके लिए आप निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग करें। दोस्तों सोने की खरीदारी ना करें, देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रखने के लिए ऐसा करें। सोना विदेशों से मंगाया जाता है जिसे आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा खर्च होगी, इसलिए अपील की गई है सोना नहीं खरीदें। दोस्तों उन्होंने कहा विदेशी यात्राएं ना करें, अगले एक वर्ष तक इससे बचें ताकि विदेशी मुद्रा बचाई जा सके। साथियों स्वदेशी अपनाएं, वोकल फॉर लोकल को अपनाने को उन्होंने कहा है। दोस्तों खाने की तेल की खपत घटाएं, क्योंकि तेल का ज्यादा उपयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। साथ ही विदेशों से तेल मंगाने पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। प्राकृतिक खेती अपनाएं, कृषि क्षेत्र में आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करके प्राकृतिक खेती और जैविक खाद की ओर आगे बढ़ें। दोस्तों इन सभी बातों का हम सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना है और अपनी विदेशी मुद्रा की बचत करनी है। दोस्तों अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का, आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवन आलोक में हमारे आज के विषय माता पिता का सम्मान हमारी संस्कृति का आधार पर चर्चा करने का। साथियों, भारतीय संस्कृति संसार की सबसे प्राचीन और महान संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी

विशेषता यह है कि यहाँ परिवार, संस्कार और रिश्तों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। हमारे समाज में माता पिता को भगवान के समान सम्मान दिया गया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव का संदेश हमें यही सिखाता है कि माता पिता का सम्मान करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। साथियों, वास्तव में माता पिता का सम्मान ही हमारी संस्कृति का आधार है। माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु होते हैं। वे हमें जन्म देने के साथ साथ जीवन जीने की सही शिक्षा भी प्रदान करते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक वे हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारी खुशी के लिए वे अनेक कठिनाइयों और त्यागों का सामना करते हैं। दोस्तों, भारतीय परंपरा में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। हमारे धार्मिक ग्रंथों और इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां बच्चों ने अपने माता पिता की सेवा करके आदर्श प्रस्तुत किया है। साथियों, आज के आधुनिक युग में भौतिकवाद और व्यस्त जीवन शैली के कारण कई लोग अपने माता पिता को पर्याप्त समय नहीं दे पाते, लेकिन हमें हमारे माता पिता का ध्यान रखना चाहिए और अपने व्यस्ततम जीवन में समय निकालकर कुछ समय उनके साथ बिताना चाहिए। यह हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्यों के लिए बहुत आवश्यक है। साथियों, माता पिता ने जिस प्रेम और समर्पण से हमारा लालन पोषण किया है, उसी भाव के साथ हमें भी उनके साथ रहना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, माता पिता का सम्मान करने से परिवार में प्रेम, शांति और एकता बनी रहती है। जिन परिवारों में बड़ों का आदर किया जाता है, वहां बच्चों में भी अच्छे संस्कार विकसित होते हैं। दोस्तों, माता पिता का सम्मान केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता। हमें उनके विचारों का आदर करना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए, कठिन समय में उनका साथ देना चाहिए और उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि वे ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। सच्चे सम्मान का वे प्रतीक हैं। हमें कभी भी उनसे कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि माता पिता हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सफल और सुखमय बनाता है। भारतीय संस्कृति में माता पिता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और यही हमारी सभ्यता की पहचान भी है। दोस्तों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। दीजिए अब आपके दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

ये था कार्यक्रम युवाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।

0: दी हाँ? ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दिखा
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है
5: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
3: आई नो ना
5: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
7: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर
8: दादी कौन सा प्लांट है
9: टेंजरीन बहुत मीठा होता है तोड़ना नहीं है
10: फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक अभी करता हूँ
8: दादी रुको लिंक में क्लिक मत करना
10: क्यों
8: ये SMS स्कैम है क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी
10: ओह थैंक्स गप्पू बचा लिया ये ले तेरी समझदारी का फल
11: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो
12: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है

0: बदल जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: बंधु नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा बुद्धू।
4: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
2: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा।

ये गीत अभी आपने सुना फिल्म राजकुमार से, जिसके लिए आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीत था शंकर जयकिशन का।

मेरे हमदम मेरे दोस्त, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गीतकार थे मजरू और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने आपकी कसम इस फिल्म का गीत सुना। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत था आर डी बर्मन का।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा जी,
2: एक बहाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा।

इस गीत के लिए आवाज़ें थीं किशोर कुमार की, और गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म थी मनचली।

0: इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश होलकर को उनकी मेधा, करुणा और लोक कल्याण के प्रति अटूट समर्पण के लिए याद करता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को वायुसेना के विमान से दिल्ली से मंगोलिया भेजा गया है। ऐसा भारतीय वायुसेना के मित्र देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत किया गया है। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकान की गणना का फील्ड कार्य कल पूरा हो गया है। जनगणना के द्वितीय चरण में जनसंख्या की गणना का कार्य फरवरी 2027 में संपादित किया जाएगा। इस चरण में परिवार के सदस्यों से निर्धारित जानकारी एकत्र की जाएगी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। प्रशासन ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों, पुलिसकर्मियों, डीडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनते हैं फिल्म संगीत।

शक्तिफ इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत था आर डी बर्मन का।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने साहिर लुधियानवी का लिखा गीत सुना। संगीत था रवि कौर, फिल्म थी वक्त।

0: खामोशी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गीतकार थे गुलजार और संगीत था हेमंत कुमार का।
1: सुर्खियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने प्रेम पुजारी इस फिल्म का गीत सुना। गीतकार थे नीरज और संगीत था एस डी बर्मन का।

तीन देवियाँ इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीतकार थे मजरूह, संगीत था एस डी बर्मन का और आवाज़ें थीं लता मंगेशकर, किशोर कुमार की। इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

इस गीत को लिखा था जानिसार अख्तर ने, संगीत था जयदेव का और फिल्म थी प्रेम पर्वत, जिसके लिए आवाज़ थी लता मंगेशकर की।

छोटी सी बात, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसकी लिए आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गीतकार थे योगेश और संगीत था सलिल चौधरी का।

दर्द फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी किशोर कुमार आशा भोसले की, गीतकार थे नक्श लायलपुरी और संगीत था खयाम का।

कटी पतंग इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी किशोर कुमार की, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत था राहुल देव बर्मन का।

ये गीत था फिल्म त्रिशूल से, जिसके लिए आवाज़ थी लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की, गीतकार थे साहिर, संगीत था खयाम का। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से

0: रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गाँव तक पहुँचाना है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत मतदाताओं की पहचान कल से ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। और गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले बता दें आपको इस सभा के बाकी कार्यक्रमों की जानकारी। रात 8 बजे सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में, 8:15 पर डगर विकास की ये कार्यक्रम होगा जिसमें आज का विषय होगा प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होगी। 8:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। 9:30 पर कार्यक्रम अनुगूंज जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का कार्यक्रम होगा जिसमें आज आप सुनेंगे श्री ए यरैया का सैक्सोफोन वादन। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुन सकते हैं 7:21 पर। इसमें आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। विषय होगा आगामी खरीफ फसलों में उर्वरक प्रबंधन एवं समसामयिकी कार्य। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर प्रवीण कुमार जगा। और अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह की सभा में 7:20 पर सुनिए दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 8:30 पर होगा कार्यक्रम सुरमई सवेरा जो फिल्म संगीत पर आधारित होगा। कल सुबह 9 आप सुनेंगे आकाशवाणी प्रसारण के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी भोपाल द्वारा स्थानीय रविंद्र भवन के गौरांजनी सभागार में आयोजित संगीत सभा कार्यक्रम में बुंदेली लोक गायन के संपादित अंश। कलाकार होंगे पुष्पलता शर्मा और साथी। उर्दू कार्यक्रम आईना आप सुनेंगे कल सुबह 9:30 पर। जिले की चिट्ठी कल सुबह 10:00। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रागमाला। इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे पंडित राजेंद्र व्यास का ताल अहिर भैरों में वायलिन वादन। दिन में 11 बजे से आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

का प्रसारण। इसी समय आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, और 12 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे संग्रहालय से इस कार्यक्रम में धारावाहिक सिसकियां की 6वीं कड़ी। दोपहर 1 बजे सुनिए स्वास्थ्य दर्पण, ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत होगा। एक बजकर 30 मिनट पर सुनिए लोक संगीत, 1:45 पर होगा सुगम संगीत। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं दोपहर 2 बजे, और 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हमारी शाम की सभा में 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युवाणी, ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत होगा। 5:30 पर, शाम 6:30 पर और रात 8:15 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। शाम 6 बजे कल आप सुनेंगे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। 6:40 पर होगा कार्यक्रम आजकल, 6:45 पर होगा प्रादेशिक समाचार दर्शन, और कल रात 8 बजे सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। पर सुनिए पब्लिक स्पीक, ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। कल रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा राग रजनी। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित राजेंद्र व्यास का ताल बागेश्वरी में वायलिन वादन, और आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुन सकते हैं कल शाम की सभा में 7:21 पर। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है।
3: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
6: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुजालपुर में 121 करोड़ से बने सांदीपनि विद्यालयों का किया लोकार्पण। प्रदेश के रायसेन में कल से खेत बचाओ अभियान, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश में आज 8 जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 प्लेटें भी मिली हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स की अपनी हाल ही की यात्रा का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा,
1: नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। गोवा के सेवानिवृत्त शिक्षक बालकृष्ण अय्या की कहानी भी साझा की, जिन्होंने मद्दी टोलाब क्षेत्र में जल संकट के समाधान के लिए काम करना शुरू किया है।

0: ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। गोवा के सेवानिवृत्त शिक्षक बालकृष्ण अय्या की कहानी भी साझा की, जिन्होंने मद्दी टोलाब क्षेत्र में जल संकट के समाधान के लिए काम करना शुरू किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों का समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गाँवों तक पहुँचाना है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार मौसम में सुधार होने तक केदारनाथ यात्रा मार्ग पर किसी भी श्रद्धालु को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों, पुलिसकर्मियों, DDRF, SDRF, NDRF और अन्य संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। आपात स्थिति के लिए आपातकालीन संचालन केंद्र हेल्पलाइन नंबर है 89587573355 और 82183263866 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान की गणना का फील्ड कार्य कल 30 मई को पूर्ण कर लिया गया है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल माध्यमों से संचालित की गई। राज्य में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य 55 जिले, 425 नगरी निकाय और 449 तहसीलों के अंतर्गत 54,923 ग्रामों में संपादित किया गया है। प्रदेश में इस अभियान के तहत 1,37,000 से भी अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉकों में 1,44,000 से अधिक प्रकरणों को द्वारा कार्य संपादित किया गया। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनसंख्या की गणना का कार्य फरवरी 2027 में संपादित किया जाएगा। इस चरण में परिवार के सदस्यों से निर्धारित जानकारी एकत्रित की जाएगी।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 70 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय का भूमि पूजन किया। उन्होंने 121 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि के मां शारदा सांदीपनि विद्यालय शुजालपुर, महाराणा प्रताप सांदीपनि विद्यालय अकोदिया, मिहिर भोज सांदीपनि विद्यालय सुंदर सिंह और राजा भोज सांदीपनि विद्यालय पोचानेर के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत प्रदेश सरकार कृषि, किसान और गांवों की समृद्धि के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने, दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा,
3: दूध उत्पादन को लेकर भी हमारी सरकार आवारा पशुओं के लिए गौशाला और गौशाला के लिए 3-4 प्रकार जो पंचायत गौशाला खोलती है गौशाला में वहाँ मदद कर रहे हैं। नगरी निकाय में पहले पिंजरा पुल खड़क बनते थे, हमने कहा पिंजरा पुल खड़क बनाने की जरूरत नहीं, गो माता 33 करोड़ देवी देवता का वास उसमें। ऐसे में अगर कोई घर में नहीं रखना चाहता और वो खिड़क में पहुंचा देता तो कोई बात नहीं, बड़ी गौशाला नगरी निकाय जहां नगर निगम भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, ग्वालियर में तो 9,000 की किसानों की आय बढ़ाने की जो हमारी प्रतिबद्धता, मुझे इस बात का संतोष है कि आप नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से साक्षी के आधार पर हमने अपने दूध का कलेक्शन 10 लाख लीटर प्रति मध्यप्रदेश से आता जो रिकॉर्ड प्रति दिन का था उसको बढ़ा करके 12 से 15 लाख लीटर तक ले गए और आगे बढ़ा करके जो देश के अंदर हमारा जो सहयोग 12% का था इसको 20% तक ले जा करके हमारे किसानों की आय दूध के माध्यम से भी बढ़ना चाहिए।
1: एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन।

धनया 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जाएगा। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी और लू की बजाय आंधी बारिश और ओलावृष्टि का असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। आज देवास, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, छतरपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं से हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई से 3 जून तक प्रदेश में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। जबलपुर, सतना और खंडवा में जन जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और शपथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को आज वायुसेना के विमान से दिल्ली से मंगोलिया भेजा गया है। ऐसा भारतीय वायुसेना के मित्र देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत किया गया है। कृषि महाविद्यालय खंडवा में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नीमच में जिला पोषण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बताया कि अति गंभीर कुपोषित बच्चों के श्रेणी सुधार में जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। शिवपुरी में 7 दिवसीय कृत्रिम अंग निर्माण और वितरण का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुजालपुर में 121 करोड़ से बने सांतिपनी विद्यालयों का किया लोकार्पण। प्रदेश के रायसेन में कल से खेत बचाओ अभियान। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश में आज 8 जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं? हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ।
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
4: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
4: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
4: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
4: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
5: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।

राम राम स्वीकारें ग्राम सभा के सभी श्रोता। मनोज भैया की दो हाथ जोड़े की आज इतवार को दिन है भैया और 31 तारीख है मई को आखिरी दिन और कल से जून शुरू हो जाए। और भारत में जैसे कहते हैं ना कि 15 जून से बरसात शुरू हो जाते हैं और उससे पहले प्री मानसून शुरू हो जाते हैं, मतलब मानसून से पहले की बरसात शुरू हो जाते हैं। ऐसे में खेती किसानी को काम जो है वो एकदम बढ़ जाते हैं और किसान भी जो है कहते हैं ना कि सोच से जग जाते हैं कि भैया आप खरीफ सीजन की तैयारी करने हैं। तो भैया आज आगामी खरीफ

0: फसलों में उर्वरक प्रबंधन और समसामयिक कार्य ई विषय पे हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम हम करें ठीक 7:30 बजे से। और हमारे आज जो विशेषज्ञ हुई हैं वे हुई हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जगा कृषि महाविद्यालय गंज बासोदा से हमारे साथ हुई हैं। और फ़ोन नंबर आप ध्यान से लिख लो, फ़ोन नंबर है 0755 एसटीडी कोड लगा के 2660902, एक और नंबर है 2660903। इन दो ही नंबरों पे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। भैया कार्यक्रम शुरू हो उससे पहले हम एक ज़रूरी आज बात बता दें कि आज एक बड़ो विशेष दिन है। हर साल 31 मई को पूरी दुनिया में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू हम सब जानते हैं, तंबाकू खाए से का बीमारी होते जा भी हम सब जानते हैं। तंबाकू एक ऐसी चीज है वो आप कैसे भी ले लो, बीड़ी सिगरेट हुक्का गुटका खैनी चाय जैसे ले लो, आपके लाने ढेर सारी बीमारियां शरीर में देखे जाते हैं। और जैसे फेफड़ों को कैंसर, मुंह को कैंसर, गले को कैंसर, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप जिसको कहते हैं, जे ऐसी बीमारियां होते हैं जो आपको होने लगते हैं। और जा बीमारी जब आपको हो जाते हैं तो फिर आप जानत हो कि पूरा जीवन तहस नहस हो जाते हैं, घर परिवार तहस नहस हो जाते हैं, पैसा लगाते हैं चैन चलो जाते हैं, सुकून चलो जाते हैं। इसे हम आज आपसे यही कहेंगे कि आज के दिन हम संकल्प लें कि हम तंबाकू से बनी चीज़ों को सेवन नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं भैया, बुंदेली समाचारों को टाइम हो गया है।
1: बुंदेली समाचार।
0: बुंदेली समाचारों के साथ मैं मनोज सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लाने प्रयासरत है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने बताई कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालार्जुन के जुड़ी भई दुर्लभ तांबे की 3 प्लेटें मिली हैं। प्रधानमंत्री ने कही कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कही कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब से शामिल होवे और छुट्टियों के दौरान तारा मंडल देखने की अपील करी है। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड की अपनी हाल की यात्रा को जिक्र भी करो। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता को जिक्र करो, जिन्हें अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ करो है। गोवा के सेवानिवृत्त शिक्षक बाल कृष्ण अय्या की कहानी भी साझा करी, जिन्होंने मंदी मोटा मोलापट क्षेत्र में जल संकट के समाधान के लाने काम करबो शुरू करो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कही है कि देश होलकर को उनकी मेधा, करुणा और लोक कल्याण के प्ति अटूट समर्पण को याद करत है। प्रधानमंत्री ने कही कि अहिल्याबाई को जीवन, सुशासन, देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव को अनुकरणीय उदाहरण है। उन्हें सदैव साहस और कर्तव्य निष्ठा के साथ नेतृत्व करो। उन्होंने कही कि अहिल्याबाई ने मंदिरों और तीर्थ स्थानों के पुनर्निर्माण और सभी के लाने न्याय और कल्याण सुनिश्चित करने में अति प्रिय योगदान दौ है। प्रधानमंत्री ने कही कि अहिल्याबाई ने भारत की सांस्कृतिक चेतना को अधिक सुदृढ़ करने के लाने और समाज, संस्कृति तथा राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी निष्ठा देश को प्रेरित करत रहेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान को शुभारंभ करेंगे, जो अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इको मुख्य उद्देश्य उर्वरकों को संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखत भए किसानों को टेम पे सलाह देबो, पंचायत स्तर पर सक्रियता और योजनाओं को सीधो लाभ गाँव तक पहुँचावो है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बरसात के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखकर वह निर्णय लागू है।

0: प्रशासन ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों, पुलिसकर्मियों, DDRF, SDRF, NDRF और अन्य सभी विभागों को हाई अलर्ट जारी करो है। आपात स्थिति में आपातकालीन संचालन हेतु हेल्पलाइन नंबर 89587-57335 और 82183-26386 संपर्क के लाने जारी करो है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 70 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय को भूमि पूजन करो। उन्हें 121 करोड़ 60 लाख रुपया की राशि से मां शारदा संदीपनी विद्यालय शुजालपुर, महाराणा प्रताप संदीपनी विद्यालय अकोदिया, मिहिर भोज संदीपनी विद्यालय सुंदरसी और राजा भोज संदीपनी विद्यालय पोचानेर के निर्माण कार्यों को लोकार्पण करो है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आयुर्वेदिक उत्पादों और जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत करे गए कार्यों की आधारित प्रदर्शनी को अवलोकन भी करो है। मौसम में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी और लू से बजाय आंधी बारिश और ओलावृष्टि के असर देखने को मिले हैं। मौसम विभाग को कहबो है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रहेंगी। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच सकत है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई से 3 जून तक प्रदेश में आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। ये थे आज के बुंदेली समाचार। बुंदेली समाचारों के बाद ग्राम सभा में अब बारी है हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम की। हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनोज सक्सेना। जैसा कि आज हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम में हमने आपको बताया था, आज हमारा विषय है आगामी खरीफ फसलों में उर्वरक प्रबंधन एवं समसामयिक कार्य। आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जगा, जो कि कृषि महाविद्यालय गंज बासोदा जिला विदिशा से हमारे साथ हैं। और आप हमारे फोन नंबर ध्यान से लिख लीजिए। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आप सीधे हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है एसटीडी कोड 0755 के बाद 2660902, एक और नंबर 2660903। इन दोनों नंबरों पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम में। जैसा कि हमारा विषय है आगामी खरीफ फसलों में उर्वरक प्रबंधन एवं समसामयिक कार्य। सवाल आए उससे पहले सर, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि उर्वरक प्रबंधन से क्या आशय है।
1: देखिए, सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि उर्वरक प्रबंधन का मतलब ये है कि जब हम जैसे खरीफ फसल आ रही है, उन खरीफ फसलों में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब पानी पड़ती है, जब पानी बरसात के दौरान बहुत सारे उर्वरक हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारी चीज़ें ये क्या करती है, पानी के साथ बह जाती है। यदि आपने इसका सही प्रबंधन नहीं किया तो आपका उर्वरक डालने का कोई मतलब नहीं रह जाता, विशेष रूप से बरसात सीजन में। तो यहाँ पर हम किसान भाइयों को समसामयिक कार्यों के अलावा हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस ये रहेगा कि उनमें जो उर्वरक है उसमें किसी भी प्रकार का उर्वरक की जो क्षमता है वो सही बनी रहे, उनका सही उपयोग हो, इस बात पे हम आज चर्चा करेंगे। और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये कि बरसात के मौसम में खरीफ सब्जियों फसलों में सबसे पहले हम उर्वरक का अपना लेने का तरीका, उनको संरक्षित करने का तरीका, उनका प्रबंधन के तरीके पर अपन ध्यान देंगे।
0: हमारे एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, मैं उनसे एक बार बात करते हैं कि हेलो।
2: गुड्डू चौबे बोल रहे, बमोरी ढूंढा जिला सागर से।
0: गुड्डू चौबे जी बमोरी सागर से बोल रहे हैं, कैसे हैं गुड्डू जी?
2: बढ़िया है साहब, खूब अच्छे हैं।
0: अबे मौसम बिगड़ो है तो सागर को क्या हाल है?
2: और बाद रहे हैं, कहूँ आसपास पानी गिर गया, कहूँ तो थोड़ी बहुत ओरे गिर गए, कहूँ आधी तूफान चली है।
0: अच्छा, तो
2: हम है उसे कछुनी बहुत बूंदा पानी भाई।
0: चलो अच्छी बात है, अब वो तपा लगे हैं दादा, तपा में पानी गिर वो ठीक।

0: नहीं हुए है ना।
1: हाँ, खराब रहे थे,
0: खराब खराब रहे थे। अब वो कह था ना कि जेठ मास जो तपे निराशा, तो जानो वर्षा की आशा।
1: हाँ, अभी तो जो बने हैं भी सब जरूरी है, तपाई जरूरी है सब।
0: अब जा बताओ कि खरीफ में का योजना बनाई है? आज को विषय जो है वो जो ही है कि खरीफ में अपने
1: पूछा है साहब, जैसे अपन सोयाबीन बहने तो कम से कम खाद डालने या बिना खाद को कैसे हो जाए?
0: बड़ो अच्छो नोनो सवाल पूछो है सर, बताइए।
2: हाँ देखिए गुड्डू भाई, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि सोयाबीन की फसल में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन की कम मात्रा का प्रयोग करना है, क्योंकि ये दलहनी फसल है और इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन खुद होता है।
0: नाइट्रोजन से मतलब यूरिया,
2: यूरिया यूरिया जो जिसको नत्रजन अपन हिंदी में बोलते हैं, वो पौधा खुद बनाता है। तो यदि आप उसको ज़्यादा प्रयोग कर दोगे तो पौधे में बीमारी लग सकती है, इसलिए आप उसमें कम से कम नाइट्रोजन का प्रयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा प्रयोग न करें, ये हमारे किसान भाइयों को हम बताना चाहते।
0: धन्यवाद गुड्डू जी हमें फ़ोन करने के लिए। और जैसा कि बड़ा अच्छा विषय अभी हमारे किसान भाई ने पूछा कि कैसे खाद डालें, कितनी मात्रा में खाद डालें, और उन्होंने एक शब्द और बोला कि बिना खाद के लगाएं क्या? तो बिना खाद के जो लगाना चाहते हैं सोयाबीन, उनके लिए क्या कहेंगे आप?
2: देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया है वास्तव में, कि हम सभी किसान भाइयों से रासायनिक उर्वरक की तो हम कम आशा करते तो ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि मिट्टी स्वस्थ बनी रहेगी। लेकिन खरीफ मौसम में जो फसल है उनमें यदि आप बिना खाद के करें, विशेष रूप से गोबर की खाद, कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट, इनका अधिक से अधिक प्रयोग करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा।
0: सही बात। अब वो ये कहते हैं ना कि खाद पर है तो खेत, नहीं तो कूड़ा रेत।
2: हाँ बिल्कुल सही।
0: खाद जरूरी है पर जैविक खाद जरूरी है ना। हमारे एक श्रोता हमसे जुड़ गए, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो,
3: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम में।
3: नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
3: हरदयाल जाटव, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश।
0: हरदयाल जाटव जी बोल रहे हैं शिवपुरी से ना?
3: हाँ
0: जी। कैसे हैं आप वहाँ, मौसम कैसा है?
3: मौसम तो बढ़िया है, दो दिन अच्छा पानी बरस गया, हम भी पानी।
0: अच्छा अच्छा जी जी जी। मैं वही जानना चाहता हूँ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कि पूरे मध्य प्रदेश से हमारे पास फोन आते हैं, पर मौसम कहाँ कैसा हो रहा है ये भी हमारे श्रोताओं को पता चलता रहे। हाँ। क्या योजना है खरीफ में आपकी, बताएं ना।
3: आज की ये समस्या की मानी जो वर्षा होनी, जो मूंगफली देते हैं उसके बारे में जानकारी चाहिए, माने कौन सा बीज और कौन सा खाद डालना चाहिए।
0: जी जी, मूंगफली की बुआई का सही समय कब शुरू हो रहा है और कौन सी वैरायटी?
2: हाँ बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। खरीफ मौसम में मूंगफली को आप लगाएं, क्योंकि मूंगफली तिलहनी फसल है, तेल प्राप्त होता है इससे, और इस फसल को आप जितने बढ़िया सही समय पर आप लोग उत्पादन उतना अच्छा मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि आप इस जुलाई में, जुलाई के सीजन में जब भी आप 10-15 जुलाई के बाद आप उसका प्रयोग, आप उसका बुवाई कर सकते हो। उसमें बहुत सारी बुवाई, उसकी वैरायटी है, उनकी जाति बहुत गुच्छेदार आती है और कम गुच्छेदार आती है। आपको जिस प्रकार का चाहिए, बड़े दाना चाहिए या छोटा दाना चाहिए, आपको जैसी वैरायटी आपको चाहिए आप वहाँ से कृषि विज्ञान केंद्र से ले लें। शिवपुरी में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ जो अच्छी वैरायटी मिले, वैसे बहुत सारी ब्रैग है, बहुत सारी वैरायटी है जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, वो आपको वहाँ मिले या न मिले ये अलग बात हो जाती है, लेकिन आप कृषि विज्ञान केंद्र से वो आप जाति का प्रयोग करके उसको बुवाई करें जुलाई के महीने में।
0: धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। सर जैसे मूंगफली की बात करी गई है, मूंगफली लगाने के लिए वैरायटी तो ठीक है, वैरायटी मिल जाती है, लेकिन मूंगफली लगाने का तरीका क्या होता है, सही तरीका क्या है?
2: देखिए मूंगफली हमारे जो किसान भाई हैं, जैसे अपन ज्वार लगाते हैं, बाजरा लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, सेम वो ही तरीका है, उसका कोई अलग से तरीका नहीं, उसका भी बीज होता है, उस बीज को बोया जाता है।
0: नहीं, दूरी कितनी,
2: दूरी
0: कितनी?
2: उसकी दूरी में बीज की उसकी कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वो बीज लगाया जाता है। और सबसे पहले हमारे किसान भाइयों खेत की तैयारी कर ले, उसमें यूरिया, फास्फोरस और पोटास पहले डाल दे, यूरिया टुकड़ों में डाले, 50% यूरिया पहले डाले, उसके पास 50% डाले, उसको नाइट्रोजन फास्फोरस पूरी मात्रा में डाल के और फिर उसको 2-3 बार डाल के फिर चौथे दिन बाद आप बीज की बुवाई आप उसकी कर सकते हैं।
0: एक और कहा जाता है कि लाल मिट्टी हो, कंकर वाली मिट्टी हो, ये मूंगफली के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है।
2: बिल्कुल सही बात है, लाल मूंगफली हो या लाल मिट्टी के अलावा यदि आपकी

0: किसी रेतीली मिट्टी हो,
1: हाँ,
0: उसमें मूंगफली बहुत अच्छी,
1: बहुत अच्छी होती है।
0: तो हमारे किसान भाइयों को
1: जी
0: इस पर ध्यान दें।
1: अगले श्रोता हमसे जुड़ गए हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, स्वागत है आपका हेलो ग्राम सभा में।
2: जी सक्सेना जी, जयराम जी।
1: जयराम जी, मैं समझता हूँ ये गोलू भाई का तो नंबर नहीं है।
2: हाँ सर, बिल्कुल सही।
1: अरे
2: आपने
1: बहुत बहुत लंबे समय बाद आपकी आवाज कान में आई है गोलू भाई, है ना?
2: जी बता सर, कैसे हो आप?
1: बहुत बढ़िया हैं। और आपके वहाँ कैसी स्थिति है सागर की?
2: बस सर, हम आए थे अभी, मतलब 5 बजे एक झला पानी गिर गया है, मतलब जामान चलो बह करो तो।
1: अच्छा,
2: और का है तो?
1: अब जो है ना कि मानसून जो है अब करीब आज जा रहा है, तो जे प्री मानसून कहा थे जाकि बरसात तो शुरू हो जाते है। और वैसे भी दो जेठ हैं, तो जेठ एक तो निकर गए है, तो है ना भैया? तो अब जो वैसे तो जो
2: हाँ, मैं ग्राम बिजोरा जिला सागर से गोलू हरवार बात कर रहा हूँ। सर
1: अच्छा,
2: हमारा प्रश्न ये था सर जी, मतलब जो मक्का का बीज रहता है, जैसा कि हम लोग भाटुआ में मक्का बोते हैं, तो वहाँ पे मतलब जिलक जाती जमीन, कोई ऐसा बीज नहीं है कि जमीन मतलब जिलक जाती तो वो मक्का का पेड़ मतलब खराब ना हो?
1: भटुआ में मतलब के भटुआ बोले तो ऐसी जमीन जो
2: हाँ मतलब एकदम वो ज्यादा मतलब जमीन झिलक जाती,
1: झिलक जाती, पानी नीचे से ऊपर आने लगता है, फिर वहाँ जब लगाते हैं तो मक्का सड़ने लगती है।
2: जी जी।
0: तो आपका आपका आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मतलब
1: मक्का सड़े ना, ऐसा कोई बीज?
2: कोई क्वालिटी बताइए सर, ताकि
0: देखिए इस प्रकार की मिट्टी में जब भी आप बीज बोए, कोई सा भी बीज बोए, आपको बीज उपचार करके जरूर बोए आप एक बार। थायरम एक उससे थायरम से या बेवेस्टीन से आप बीज को उपचारित करें, और उस बीज को आप कल्चर जरूर डालें, चाहे वो आप एजो स्पायरम कल्चर ले ले या उसको आपको जो भी हो PSV ले ले, उस कल्चर से उपचारित करके यदि आप बोओगे तो बीज नहीं सड़ेगा आपका।
2: अच्छा अच्छा
1: जी।
2: क्योंकि सर हम आए थे मतलब काफी ज्यादा सूखे घास वाले ये खेत ज्यादा मिलेंगे।
0: हाँ तो कोई बात नहीं है, आप होने दो, उसमें आप बीज को उपचारित कर दें एक बार, फिर देखिए आपको ये दिक्कत नहीं आए।
1: वैसे तो आजकल जो बीज किसान भाई खरीदते हैं उपचारित ही आता है,
0: वो सर उपचारित आता है, लेकिन
1: होता है।
0: वो उपचारित क्या है, जब हम बीज को उपचारित करते हैं तो वो केवल दवाई उसमें मिल के आते हैं, जबकि अपन को FIR सिस्टम से उपचार करना, चाहे पहले फंजीसाइड से, फफूंदनाशी से, फिर कीटनाशी से, फिर कल्चर से, इस प्रकार से तीनों से उपचारित करके बोओगे तभी आपका बीज संरक्षित रह पाया, नहीं बरसात में बहुत जल्दी खराब हो जाता
1: है। वाकई ये भी सच बात है, ये मक्का जो है मोटे अनाज में आती है और ये थोड़ा सा कम पानी वाली जगह पर लगाने वाली फसल है,
0: कम पानी तो जगह पर थोड़ा सा उथला भी रहे,
1: उथला भी रहना चाहिए।
0: जैसे और बीज 5 सेंटीमीटर पे इसका कम से कम 3-4 पे आपको लगा।
1: तो वही है कि किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि हर जमीन में हर फसल नहीं लगाई जा सकती, हमें फसल की स्वभाव को, उसके नेचर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा,
0: प्रकृति को समझना,
1: उसको भी समझना होगा। हमारे अगले श्रोता भी जुड़ गए हैं, जानते हैं कहाँ से कॉल है। हेलो
3: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कहाँ से कॉल किए हैं?
3: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
1: राकेश जी, आपका शिमला से फोन आता है, बहुत अच्छा लगता है, हर रविवार आप फोन करते हैं, कैसे हैं सर?
3: बढ़िया हैं, अभी बारिश हो रही थी और क्या बोलते हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि हम जो किसानों के लिए जो जानकारी मिलती तो हम उसका लाभ लेते हैं, तो आकाशवाणी भोपाल के माध्यम से।
1: जी जी, मैं आपकी इस भावना की बहुत इज्जत करता हूं और मैं आपको बता दूं कि हमारी आकाशवाणी या पूरा रेडियो जो है ना, इसके 90 वर्ष पूरे होने वाले हैं।
3: जी 90 वर्ष पूरे होने वाले हैं।
1: 90 वर्ष से जी,
3: पहले से बधाई शुभकामनाएं।
1: तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, आप जैसे सुधी श्रोताओं से ही रेडियो है ना?
3: जी।
1: आपका सवाल बताइए राकेश जी।
3: जी मेरा ये सवाल है कि हमने अभी सोयाबीन लगाई थी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम खाद डालते हैं तो उसमें हमें किस क्या क्या प्रावधान का क्या क्या हमें रखनी पड़ेगी?
1: शिमला में आप सोयाबीन लगाते हैं?
3: जी लगाते हैं, सोयाबीन लगाते हैं, पर में अलग किस्म की सोयाबीन होती है जो
1: अच्छा,
3: आपके इधर की नहीं होती है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसलिए पूछा कि सर बताइए।
0: देखिए बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि सोयाबीन में आप उर्वरक प्रबंधन, आपको मैं एक बार मैंने और एक किसान को ही बताया था, आपने शायद सुना हो कि हमारी सोयाबीन एक दलहनी फसल है, और इस दलहनी फसल में नाइट्रोजन नत्रजन स्थिरीकरण का कार्य होता है। तो इसमें विशेष रूप से आपको यह ध्यान देखने की जरूरत है कि आपको नाइट्रोजन का कम से कम प्रयोग करना है, जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस का प्रयोग करना है, और दाने में चमक आए इसके लिए आपको पोटास

0: उसका प्रयोग करना चाहिए। तीनों जो उर्वरक है आपको सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। चौथी सबसे मुख्य बात यह है कि ये दलहनी फसलों में और खरीफ के मौसम में इन बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट ये हमेशा डाल के खेत में रखना है, क्योंकि अभी आपने डाल दिया होगा गर्मी में और अब आप उसकी जुताई करके समतलीकरण करने का काम करके और आप उसको यदि बुवाई सही तरीके से करते हैं तो आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है कि आप बीज को उपचारित करके जरूर बोएं।
1: धन्यवाद राकेश जी हमें फ़ोन करने के लिए। और सर जैसा कि सोयाबीन की जब भी फसल की बात आती है तो हमेशा किसान भाई उसमें दो चीज़ें करते हैं, एक तो क्या सिंगल सुपरफास्फेट का पहले भुरकाव किया और उसके बाद में उन्होंने अपना बखर वगैरह कर देते हैं। सिंगल सुपरफास्फेट का डोज क्या होता है?
0: सिंगल सुपरफास्फेट का डोज आपको कम से कम 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको डालना पड़ेगा। इतनी ही मात्रा में आपको 40 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करना पड़ेगा और नाइट्रोजन का आपका प्रयोग 40 से ज़्यादा न करें, 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर का प्रयोग करें। इसमें दिक्कत क्या आती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। यदि आप कम मात्रा में नाइट्रोजन डालोगे तो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि नहीं हो पाएगी,
1: बिल्कुल,
0: और फास्फोरस कम डालोगे तो वृद्धि जड़ों की नहीं हो पाएगी, और पोटास के लिए आपको दानों की क्वालिटी, इसलिए तीनों फर्टिलाइजर का हमारे किसान भाई को प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जिन किसान वार्ता थोड़ा सा मिट्टी की जांच भी करवा ले, यदि मिट्टी की जांच में ये पाया जाता है कि उनकी जो मिट्टी यदि अम्ली है या क्षारी है उनकी, तो क्षारी मिट्टी के लिए आपको कम से कम जिप्सम का प्रयोग हमारे किसान भाइयों को करना जरूरी है, क्योंकि इसमें सल्फर तेल बनता है तो तेल वाली फसलों में सल्फर बहुत आवश्यक होता है।
1: अच्छा ये भी है कि कई लोगों को मैंने देखा है कि बखरनी हो गई है उसके बाद में फिर डालते हैं, कुछ किसानों का ये है कि पहले डाल देते हैं उसके बाद फिर बखर कर देते हैं।
0: नहीं, सही तरीका तो पहले खेत की तैयारी करें हमारे किसान भाई अच्छी तरह। जब खेत पूरी तरह से तैयार हो जाए तो बीजों का बढ़िया अंकुरण प्रतिशत देख के और एक उपयुक्त समय देख के आप बुवाई कर सकते हैं, खाद आपको पहले ही डालने पड़ेंगे।
1: एक और बड़ा ज्वलंत सवाल हमारे सारे किसान भाइयों के दिमाग में इस समय होगा और मेरे मन में भी है, वह यह कि इस समय जिस तरह से मौसम विभाग का बार बार अलर्ट आ रहा है कि ब्रेक लंबे पड़ेंगे, मतलब पानी बारिश होगी और फिर रुकेगा, ऐसी स्थिति में कौन सी किस्म सबसे बेहतर मानते हैं आप?
0: देखिए हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने बहुत सारे सोयाबीन की वैरायटी निकाली है, उसमें आपको दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक तो जल रुकना नहीं चाहिए, सोयाबीन की फसल में पानी, जैसा कि आपने बताया बहुत स्पेल ड्राई स्पेल आता है, तो पानी ज्यादा भी बहुत ज्यादा नुकसान है और कम भी बहुत ज्यादा नुकसान है, ये दोनों स्थिति हमारे किसान भाइयों को समझना चाहिए। यदि किसान का पानी ज़्यादा हो जाता है तो कुछ नालियों का निर्माण करके पानी को बाहर निकाल दें, और यदि ड्राई स्पेल होता है तो ऐसी व्यवस्था हमारे किसान भाई को रखें कि उसमें पानी दे सके। इसीलिए इसके लिए हमारे GS 335 बहुत सारी वैरायटी है, ब्रैग करके एक वैरायटी बहुत अच्छी आती है वो आप डाल सकते हो, 2759 आप डाल सकते हो, 2760 है वो आप दे सकते हो, बहुत सारी वैरायटी है जिनका कि हमारे किसान भाई प्रयोग करके खेत में उपयोग कर सकते हैं।
1: और मैं समझता हूँ कि मेड नाली पद्धति से जो बोने की बात कही जाती है वो
0: फरो इस और समय बेड, तो बेड राइज वाली जो है वो उसका भी प्रयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं, उनका भी हमारे किसान भाइयों प्रयोग करना चाहिए।
1: और मैं तो अपनी तरफ से किसानों से कहूंगा कि पूरे खेत में अगर आप सोयाबीन नहीं बो रहे हैं थोड़ी सी जगह बचा लें, वहाँ ढाल जहाँ पर हो तो वहाँ एक गड्ढा पहले से अभी बना के रख लें, मौसम अभी खुला हुआ है, बारिश आएगी तो कम से कम आपको एक लास्ट मोमेंट पर लगता है बिल्कुल आखिर में कि अब क्या करें, बारिश नहीं हो रही है, पानी वहाँ से आपको मिल सकता है। और बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे मित्रों, हम आपसे कहते हैं कि आप हमें फ़ोन कीजिए, बहुत अच्छा समय है, सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देखिए एक हमारे श्रोता हमसे जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हेलो,
2: हेलो,
1: स्वागत है आपका हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम में।
2: जी सर नमस्कार, डॉक्टर साहब को नमस्कार, मैं नरेंद्र डांगी बोल रहा हूँ, जिला सीहोर तहसील शामपुर से।
1: नरेंद्र जी कैसे हैं?
2: सर बढ़िया,
1: आप तो बहुत पास से फोन लगाते हैं पर अच्छा लगता है, नियमित रूप से आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं और हमें फोन करते हैं। और क्या योजना है आगे खरीफ की?
2: सर मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि हम सर रवि सीजन में एक एकड़ में 3 बोरे सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं सर, वो यानी वो खरीफ फसल में वो खाद काम देगा कि डालना पड़ेगा?
0: नहीं नहीं देखो, आपको दोबारा खाद, आपने दोबारा खेत की तैयारी की है तो क्या होता है, जैसे आपने रवि में जो

0: खाद डाला था ना, वो तो बहुत सारी गर्मी, आप देखो कितनी गर्मी पड़ी, उस गर्मी में हो सकता है ऊपर उड़ गया हो, एवोपरेट हो गया, और नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं, तो वो चला जाता है। इसलिए आपको दोबारा ही डालना पड़ेगा। और ये सब खाद आप तीनों संतुलित मात्रा में, खादों के अलावा आपको कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व, कुछ द्वितीय पोषक तत्व जिसमें कैल्शियम सल्फर भी आपको एनपीके के साथ डालना पड़ेगा।
1: सीधी सी बात है, नई यात्रा कर रहे हैं तो नया टिकट लेना पड़ेगा।
2: ठीक है
1: ना, धन्यवाद फोन करने के लिए। सर, सोयाबीन की बात हो गई है, धान की बात नहीं हुई है। वाकई खरीफ में धान का रकबा बहुत बढ़ जाता है। धान में जो परिस्थितियां दिख रही हैं, जो कहा जा रहा है कि बारिश रुक सकती है या बारिश लंबा ब्रेक ले सकती है, वहाँ धान में क्या सावधानी बरते?
0: देखिए सक्सेना साहब, अब कुछ धान की ऐसी वैरायटी आएगी, जैसे अपन गेहूं बोते हैं ना, ऐसी भी वैरायटी धान की आएगी। पहले हम धान का मचेला तैयार करते थे, पानी भरते थे, बहुत सारी
1: बिचड़ा तैयार होता था।
0: अब किसानों का वो बहुत कम हो गया।
1: हाँ।
0: अब किसान केवल पानी, जैसे ही पहला पानी पड़ता है खेत की तैयारी करके वो किसान डायरेक्ट बो सकता है। फिर यदि भगवान ने पानी दे दिया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप लगा के आप उसको ज्यादा से ज्यादा पानी जरूरत है, 3-4 पानी आप दे सकते हो, उससे भी आपका धान हो सकता है। अब इस प्रकार की बहुत सारी वेरायटी आ गई, इसलिए हमारे किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। यह मचेला बना दे तो बहुत अच्छा है, नहीं बनाते तो भी आप हल्की जो हल्के क्या कहते हैं सीड ड्रिल से भी आप उसकी बुवाई
1: कर सकते हैं। अच्छा, इसमें उर्वरक प्रबंधन की अगर बात
0: हाँ उर्वरक प्रबंधन में इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश तीनों तरह के उर्वरक आपको डालने पड़ेंगे, संतुलित मात्रा में डालने पड़ेंगे, मिट्टी की जांच करके आपको डालने पड़ेंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं, कम से कम 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन इसमें आपको जरूरत पड़ेगी, 40 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर kg/hectare आपको पोटास फास्फोरस की जरूरत पड़ेगी और 30 से 40 kg पोटास की जरूरत पड़ेगी।
1: अच्छा, इस समय धान की नर्सरी डालना शुरू हो चुके हैं?
0: हाँ, नर्सरी कई लोगों
1: के बारे में बताइए ना।
0: नर्सरी डाल दी हमारे किसान भाइयों, हम बताते हैं नर्सरी का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, और कम से कम 1 हेक्टेयर में कम से कम 10,000 पौधों की इस प्रकार की नर्सरी तैयार करें आप, जिससे कि 40 से 50 हजार पौधे जिसमें हों, और उसका पौधा नर्सरी में जिंक का भी प्रयोग करें, एनपीके का तो करें ही, और स्वस्थ पौधे उसमें किसी प्रकार का रोगग्रस्त नहीं होना चाहिए, ऐसे पौधों को आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो, और नर्सरी का बिल्कुल रखरखाव अच्छी तरह से हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए।
1: हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं, जानते हैं कहां से कॉल किया है। हेलो
3: हेलो,
1: हाँ जी, स्वागत है आपका हेलो ग्राम सभा में।
3: जी सर, ग्राम देवपुर पोस्ट बमना जिला छतरपुर से बोल रहे हुकम चंद यादव।
1: हुकम चंद यादव जी, छतरपुर से आपका फोन है।
3: जी जी,
1: कैसे हैं? बढ़िया हैं
3: जी जी सर।
1: जी जी, हम बात कर रहे हैं खरीफ फसलों में उर्वरक प्रबंधन को लेकर, क्या योजना है आपकी, खरीफ में कौन सी फसल लगाएंगे आप?
3: जी सर, यही पूछ रहे थे कि सोयाबीन पिछले साल जुलाई में 2 क्विंटल सोयाबीन बच गया, तो सर जी बोरियन में अपना स्लो धरो, तो वो बह सकते हैं कि नहीं आप?
1: वो नहीं पाए थे पिछले साल का सोयाबीन है, कौन सी वेरायटी है?
3: जी सर मालूम नहीं, लेकिन वो नहीं 2 क्विंटल बच गई थी, इसलिए चलाई जाएंगी, कितनी धरेंगे, वे बो सकते हैं या नहीं बो सकते?
0: देखिए मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, सोयाबीन की फसल का हमने खुद ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि यदि 4 बोरों के नीचे वाला बोरा है उसको भी यदि हम बोते हैं तो भी वो नहीं निकलता है साहब, सोयाबीन कैसा बेकलू बेकार हो जाता है। आपका बीज किस स्थिति में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, आप दूसरा नया बीज लेके बोए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी गारंटी नहीं है कि उसका क्या स्थिति है, उसकी क्या स्थिति रही है। फिर भी आपको मैं बहुत सारी,
1: और मैं आपको एक बात बताऊं भैया, आपने किस भाव का लिया था बीज?
3: वो 70 रुपया किलो लिया था सर।
1: 7,000 के भाव का लिया था ना, 9,000 का तो अभी रेट चल रहा है, बेच दो उसको, बेच के नया बीज खरीद लो।
0: फिर भी मैं आपको बताया तो JS 95/60 ले लो, 20-29 ले लो, 20-34 ले लो, JS की बहुत सारी वेरायटी हमारे पास है, JS 97 ना मिलो, NRC की वेरायटी ले लो, 37 है, 86 है, एक अच्छी वेरायटी नई अभी RVS विश्वविद्यालय ग्वालियर ने निकाली है, RVS 2001-4, RVS 2010-1, इन वेरायटियों का प्रयोग करो तो आप बहुत अच्छा लगेगा। पिछले साल की वेरायटी यदि सही हो, मॉइस्चर उसमें सही हो, उसका इनर्ट मटेरियल बहुत सही हो, अच्छा हो, तो आप कहीं एक दूसरे खेत में जहाँ को आपको लगता है वहाँ नहीं, वहाँ आप प्रयोग कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहे, लेकिन मेरी समझ में तो है कि पुराना बीज आप प्रयोग न करें तो ज़्यादा अच्छा
3: जी,
1: है ना। धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। और सर बाकी बड़ा अच्छा

0: इन्होंने पूछ लिया सवाल, हमारे किसान भाई एक ही वैरायटी को सालों से बोते चले आ रहे हैं।
1: नहीं, अब
0: कई हैं ऐसे किसान भाई, वो ही निकाला वही छाना बो दिया।
1: वो कई हाइब्रिड बहुत अच्छी वैरायटी आ रही है, वो उनका जीवन काल एक सीजन है बस,
0: बिल्कुल,
1: ज्यादा
0: बिल्कुल,
1: नहीं।
0: बिल्कुल, हाँ।
1: हमने कई बार देखा है कि कई बहुत अच्छा अच्छा बीज बाहर से मंगाते हैं और यदि वो नीचे वाला बीज है बोरियों से दबाव, वो भी नहीं
0: उगता है। बिल्कुल सच है।
1: तो ये आपने किस स्थिति में इस बीज को रखा है, अपन को क्या मालूम?
0: सही बात है, लोडिंग होके आ रहा है,
1: लोडिंग होके आया है,
0: दब गया।
1: हाँ, दब गया, बेकार हो गया।
0: तो ये बहुत बहुत ज्वलंत विषय है। हमारे किसान भाई प्रमाणित बीज लेके आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, पर उसका अंकुरण परीक्षण हर हाल में
1: करना चाहिए। 80-90% अंकुरण परीक्षण होना चाहिए,
0: नहीं तो खुश हो जाते हैं हम। तो साहब वैरायटी का बीज लाए थे
1: और फिर लास्ट में किसान को दिक्कत,
0: किसान दिक्कत हो जाती है। अंकुरण परीक्षण की भी हम बात करेंगे, हमारे एक और श्रोता जुड़ गए, हम उनसे पहले बात कर लेते हैं। हेलो,
2: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो ग्राम सभा में। कहाँ से सुन रहे हैं हम आपकी आवाज को?
2: जिला सागर, तहसील बंडा, मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, चरण सिंह जी।
0: बंडा से फोन है आपका।
2: बेने तो कौन किस्म की बेने? मक्का
0: कौन से किस्म की बेने हैं? सर, मक्का की वैरायटी के लिए बहुत सारे लोगों का फोन बार बार हमारे पास आ रहा है, मक्का की अच्छी वैरायटी बताइए।
1: देखो, सागर में तो बहुत अच्छी अच्छी मक्का होती है, आपको मैं बताऊं, और फिर भी हम आपको कुछ मक्का की वैरायटी बोलते, वो आपको कृषि विज्ञान केंद्र सागर में मिलेगी, आप वहाँ जाके ले सकते हैं। मैं नाम आपको लिखा देता हूँ, एक तो लिखिए जवाहर मक्का के नाम से मिलती है, जवाहर मक्का 2016, ये वहाँ मिल जाएगी आपको। एक पूसा विवेक करके वैरायटी है, अभी अभी आई है, मक्का की बहुत अच्छी वैरायटी है, 90 दिन की वैरायटी है ये, और इसमें विटामिन और प्रोटीन बहुत पर्याप्त मात्रा में है, वो आप प्रयोग कर सकते हो। गंगा 5, ये वैरायटी आप बहुत ज़्यादा उपयोग होती है सागर में, ये भी आप ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी, 100 दिन की है, लेकिन ये 90 दिन की, तो ये 100 दिन की है, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हो। तो मक्का की आप बहुत सारी वैरायटी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना ये है कि आपको कैसी मिट्टी में लगा रहे हो, उर्वरकों का क्या आप उर्वरक उसमें दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, बीज उपचार कर रहे हो या नहीं कर, इन बातों का आपका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।
0: और साथ ही ये भी है कि आपका उद्देश्य क्या है।
1: हाँ,
0: मक्का भुट्टे के लिए बोना है,
1: बोल रहे चाह रहे या पशु के लिए खाने, हाँ, के लिए खाने,
0: या आपका उद्देश्य जो है
1: चारा,
0: या भुट्टा बेचना है या अनाज के हिसाब से आपको करना है। सर, आजकल ये भी एक
1: हाइब्रिड मक्का का प्रयोग करना पड़ेगा।
0: जी जी, स्वीट कॉर्न के हिसाब से जो मक्का लगाई जाती है उस वैरायटी के लिए भी आजकल बहुत डिमांड है, चूंकि नकदी फसल के रूप में मैं समझता हूँ कि वो एक मक्का की फसल हो गई है अब, तो ऐसी स्थिति में भी हमें ध्यान रखना होगा। हम वापस अपने प्रश्न पर चलते हैं। सर, बात कर रहे थे हम बीज उपचार की, बीज उपचार का सही तरीका क्या है सर, संक्षेप में बता दीजिए।
1: सर, बीज उपचार को अपन को 3 तरह से करना चाहिए, जिसको FIR सिस्टम हम लोग बोलते हैं
0: जी।
1: इसमें सबसे पहले एक तो ये है कि आपको किसी भी फफूंदनाशी से पहले आपको बीज उपचार करें, दूसरा उपचार आप किसी भी एक कीटनाशक को लेके करें, और तीसरा आप कल्चर से करें। इसके लिए आप 200 ml पानी ले लें और उसमें 100 ग्राम गुड़ ले लें, उसकी एक बढ़िया स्लरी टाइप की बना लें, और उस स्लरी में जितना भी PSV कल्चर है, आपका कोई भी कल्चर है, जो स्पेक्टर है, जो वेक्टर है, जो स्पाइरल है, कोई भी कल्चर आप उसमें डाल के उसको घोल के एक काला काला सा घोल बना ले, और पूरे बीज के ऊपर आप एक साथ बिल्कुल समतल उसमें एक उसमें स्लरी को पूरे बीज पे लगा दे और छाया में उसको सुखा ले, और छाया में सुखाने के पश्चात दूसरे दिन आप उसका प्रयोग कर सकते हो।
0: अच्छा,
1: तो इस प्रकार से आप करोगे तो आपका बीज का, ये समझ लो कि आपके बीज में टीकाकरण हो चुका है, आपका बीज जमीन में जाके किसी प्रकार की जीव कीटाणु से वो उसको नुकसान नहीं कर पहुंच
0: सकता है। मित्रों, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमारे किसान भाइयों ने फ़ोन पर हमसे पूछे हैं, और आपने सर बहुत सफाई से, बहुत बढ़िया तरीके से उनको उत्तर भी दे दिए हैं। इस पूरे कार्यक्रम को सजाने संवारने में हमें जो सहयोग मिला है, मैं आपको बता दूं, उद्घोषिका के रूप में मीठी मधुर आवाज़ लेकर हमारे साथ थी श्वेता तिजोरिया, प्रसारण सहायक के रूप में हमारे साथ थी फरनाज हसन, कंट्रोल रूम से हमको सहयोग कर रहे थे प्रवीण कुमार सिंह और राजू वासे, कार्यक्रम संयोजन श्री चंद्रशेखर शर्मा का था, सूत्रधार के रूप में मैं आपके साथ था मनोज सक्सेना। मैं आप सभी किसान भाइयों का, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने हमें कॉल किया, और वे किसान जो केवल हमें सुन रहे थे और ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, फोन लगाने का प्रयास कर रहे थे।

0: फोन नहीं लग रहा था, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फोन हमें करते रहिए, हर कार्यक्रम में हम इन्हीं नंबरों पर बात करते हैं। आप हमारा जो कार्यक्रम है, हर बार विषय भी अलग अलग होता है, हर विषय पर हम सवाल और उससे जुड़े विशेषज्ञ हमारे साथ होते हैं। तो अगले रविवार हम फिर आएंगे, लाएंगे हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम। सर, चलते चलते अगर मैं आपसे कहूं कि बस 30 सेकंड में कुछ बात रह गई हो जो लगता है कि होना ज़रूरी थी।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात है। मैं सर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे किसान भाइयों को उर्वरक प्रबंधन के साथ साथ समसहायक कार्य भी एक इसमें बड़ा अच्छा विषय था। उसमें मैं हम अपने किसानों को बताना चाहता हूँ कि जब भी वो बुवाई करें तो जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम पखवाड़े में करें। दूसरा, 18 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज अनाज हेतु तो प्रयोग करें। चारे के लिए प्रयोग करें तो 40 से 50 किलो, और पौधों से दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर, कतार से दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर करके हमारे किसान भाई इसको पूरा कर सकते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ आज की ग्राम सभा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। स्वीकारिए मनोज सक्सेना की राम राम।

0: ये था कार्यक्रम ग्राम सभा। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा।
3: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुर्खियों में, जिसमें हम आज मन की बात के 134वें संस्करण में उठाए गए प्रमुख विषयों और उनसे जुड़े संदेशों पर चर्चा करेंगे। इस कड़ी में खेल, पर्यावरण, संस्कृति, विज्ञान और समाज सेवा जैसे अनेक प्रेरक विषयों को स्थान दिया गया। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन। अशोक जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: अशोक जी, मन की बात के इस संस्करण के प्रमुख बिंदु क्या रहे और इनमें कौन से विषय आपको सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगे?
4: देखिए, महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और देश के जनता के साथ संवाद करते हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर तो वो अपने विचार भी व्यक्त करते हैं। और उस कड़ी में अगर हम आज की बात करें तो आज तो सबसे प्रमुख बात जो प्रधानमंत्री ने की वो थी मौसम को लेकर, कि लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी और इसके साथ साथ उन्होंने जो गर्मी में किससे निपटने के घरेलू नुस्खे भी बताए। और जो हमारे पेय जल हैं, या जैसे हमारे देश में आम के बारे में, शरबत के बारे में, दक्षिण भारत के, तो उन सब की भी चर्चा की। और उसके साथ साथ उन्होंने भारत के जो खिलाड़ी हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हैं, वो जहां जहां भी कुछ एक अचीवमेंट करते हैं उसकी चर्चा जरूर करते हैं। तो आज उन्होंने जो खेल हुए हैं राष्ट्रीय खेलों में, जो नए कीर्तिमान हुए हैं, उनकी भी चर्चा की। उसके साथ उन्होंने जो अपने विदेशी दौरे हुए उसमें उनकी चर्चा की कि कैसे हमको हमारे पुराने विरासत, जो ताम्र पत्र वापस किए गए, और इसी तरह से वही नीदरलैंड की यात्रा के दौरान हुए। फिर तो इस तरह के उन्होंने 5-7 जो बहुत मुख्य मुद्दे थे। फिर उन्होंने स्विमिंग क्लब की बात की, नदियों को सफाई करने के बारे में जो युवा अभियान चला रहे हैं उनकी भी चर्चा की। तो मुझे लगता है कि अगर हम मौसम की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण रहा। लेकिन हमारे जो एथलीट हैं, उन्होंने जिस तरह से आज 100 मीटर की दौड़ में 2 दिनों के अंदर राष्ट्रीय रिकॉर्ड को 3 बार तोड़ा, और 2 जो एथलीट थे विशेष तौर से उनकी चर्चा भी की और उनसे प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की और काफी लंबी समय तक बातचीत की। तो ये खिलाड़ियों और खेलों को प्रोत्साहन देने का जो प्रधानमंत्री का एक संकल्प है वो भी आज बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उजागर किया गया।

0: और सबसे पहले खेलों की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि युवाओं के लिए ये विशेष रूप से प्रिय विषय है। भारतीय एथलीटों की हाल की उपलब्धियों को भारत में खेल संस्कृति के विकास से आप किस तरह से जोड़कर देखते हैं? क्योंकि जैसा कि आपने पहले अभी बताया कि पीएम खेलों का और खेलों से जुड़ी हुई उपलब्धियों का अक्सर उल्लेख करते हैं।
1: बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है और ये मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जब जब हमारे देश के खिलाड़ी, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, तो उनको जिस तरह से प्रधानमंत्री स्वयं बात करते हैं, और कई बार तो हमारी जैसे T20 की क्रिकेट टीम जब विश्व कप जीत कर आई तो उनको अपने घर पर बुलाया और एक एक के साथ अलग से बात की, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के जो लोग हैं देश हित में, समाज हित में, जब ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे होते हैं और जब उनके विषय में हम सुनते हैं तो हमें भी नई प्रेरणा मिलती है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत ही उन्होंने एथलीट्स के साथ की कि देश की ऐसी उपलब्धि जो हुई है, और खास तौर से झारखंड के रांची में जो इस समय नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन हुआ, उसमें 800 एथलीटों ने भाग लिया जो देश भर से आए थे। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे और उन्होंने वीरेंद्र वीर सिंह और विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीना, कुलदीप कुमार, इनके अलग अलग कैटेगरी में बनाए गए रिकॉर्डों की चर्चा की। और दो एथलीट हम बात करेंगे तो वीरेंद्र सिंह और अनिमेश, इनके साथ तो टेलीफोन पर भी बात की और उनके संस्मरण सीखे, बात की और उनको खूब प्रोत्साहित किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा एक तरह से उदाहरण है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो खेलों के बारे में इतने चिंतित हैं कि आज मन की बात के लगभग 10 मिनट तो उन्होंने खेलों के बारे में चर्चा की।
0: अशोक जी, विदेशों से वापस लाई जा रही भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों का हमारे इतिहास और विरासत संरक्षण के लिए क्या महत्व है, इस पर आपकी राय जानेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस पर क्या कहा है।
2: नेदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: अशोक जी, अभी हमने प्रधानमंत्री की बात सुनी और ये जो पहल है और ये जो सब कुछ अभी प्रधानमंत्री ने जिसका उल्लेख किया है, भारत की प्रतिष्ठा और गरिमा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है?
1: देखिए, प्रधानमंत्री को पिछले 12 वर्ष में अमेरिका, ब्रिटेन और दुनिया के अन्य देशों ने कितनी ही ऐसी भारत की जो विरासत है वो वापस लौटाई है। अगर उसकी कैटलॉग बनाई जाए तो हजारों में है, और ये केवल प्रधानमंत्री के प्रयास के कारण हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो हमारी एक परंपरा है, जो हमारा इतिहास है, वो हमको वापस मिलना चाहिए। क्योंकि हर बार जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां की स्थानीय सरकार ये कोशिश करती है कि हम प्रधानमंत्री को उनकी विरासत किस तरह से लौटा सकते हैं। और इसी कड़ी में जब प्रधानमंत्री नीदरलैंड गए थे तो वहां पर उनकी जो बातचीत हुई और उसमें विशेष समारोह हुआ और प्रधानमंत्री नीदरलैंड के भी मौजूद थे, और उस विशेष समारोह में जैसा अभी हमने सुना, चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को सौंपी गई, एक विशेष कार्यक्रम हुआ, और उसमें देश विदेश से लगातार अब संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं कि दुनिया भर में तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है, क्योंकि इस ताम्र पट्टिकाओं के प्रति लोगों की बहुत जिज्ञासा थी। और इससे जुड़े हुए जो बातें प्रधानमंत्री ने स्वयं साझा की, इनमें से 21 बड़ी और

0: तीन छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से, जैसा हम अभी सुन रहे थे, राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज चोला के एक वचन को पूरा करने के लिए जुड़ी हुई है। जो उस समय चोला वंश की जो उपलब्धियां थी उसका भी वर्णन मिलता है। तो इससे पता ये चलता है चोला साम्राज्य जो था उसकी समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की भी इससे जानकारी मिलती है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है, जिसकी भी अभी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। ये जो कुछ हो रहा है, ये सारी जो धरोहर हैं, ये भारत में जब वापस आएंगी तो भारत की धरोहर, संस्कृति, विरासत के बारे में हमारी नई जो जनरेशन आ रही है उनकी भी जानकारी बढ़ेगी।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं में खगोल विज्ञान और विज्ञान के प्रति बढ़ती रुचि का भी उल्लेख किया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
2: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: अशोक जी, जो अभी प्रधानमंत्री ने कहा है उसे आप भारत के भविष्य के लिए कितना सकारात्मक मानते हैं, और युवाओं में खासकर जो खगोल विज्ञान को लेकर जो अब दिलचस्पी बढ़ रही है उस दृष्टिकोण से?
0: देखिए, रात को तारों को निहारना ये अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है। तो एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप्स और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा लोग टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कहा कि राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्थान भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। तो यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ पुस्तकें, लाइब्रेरी, टेलीस्कोप की सुविधाएं भी हैं। तो इसकी तरफ युवा वर्ग को आकर्षित करने की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। जैसे हमने सुना प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी ये जो एस्ट्रोनॉमी है ये हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद हैं, और ये जो मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं, नेविगेशन हो, पांचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। और हमारे यहाँ तो एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में लोगों में उत्सुकता जगाई है। तो इसको और एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, और आज के युवाओं ने भी इस प्रकार से काफी उत्साह दिखाई दे रहा है।
1: अशोक जी, प्रधानमंत्री की एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी है।
2: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: अशोक जी, गंगा डॉल्फिन संरक्षण और नदी स्वच्छता जैसी पहल पर्यावरण संरक्षण के व्यापक लक्ष्य में किस प्रकार योगदान दे सकती है?
0: आज एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि मन की बात में जब प्रधानमंत्री इसकी चर्चा कर रहे थे तो वहां पर विजुअल भी दिखाया गया कि कैसे भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस जो है वो उत्तर प्रदेश के उस घटना स्थल पर किस प्रकार से काम कर रही है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी, और ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये जो एम्बुलेंस है उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची, और फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया, और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। तो एक जीवन जो है उसको लौटाया गया। ये एक साधारण बात हो सकती है, लेकिन डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस जो है ये एक चलता फिरता अस्पताल है, और इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, विशेष स्ट्रेचर्स हैं, बचाव के उपकरण हैं। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंसे या नदी से कट जाए तो उसकी तुरंत सहायता की जा सकती है। तो जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचा

0: हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर को भी बचाते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री का ध्यान इन बातों की ओर भी जाता है कि कैसे देश में इस प्रकार का जो प्रकृति की धरोहर है उनको बचाने की दृष्टि से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। यानी ये जो अभियान चला है चलता फिरता अस्पताल वाला डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस, ये अपने आप में एक अजूबा है, जिन लोगों ने कभी देखा नहीं, आज सब लोग टेलीविजन पर उसको देखकर सचमुच में आश्चर्यचकित हुए।
1: श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री के मन की बात का यह संस्करण हमें प्रेरित करता है कि सकारात्मक प्रयास, जन भागीदारी और सामूहिक संकल्प से बड़े परिवर्तन संभव हैं। अशोक जी, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा।

0: उनको बचाने की दृष्टि से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, यानी ये जो अभियान चला है चलता फिरता अस्पताल वाला डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस, ये अपने आप में एक अजूबा है जिन लोगों ने कभी देखा नहीं, आज सब लोग टेलीविजन पर उसको देखकर सचमुच में आश्चर्यचकित हुए।
1: श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री के मन की बात का ये संस्करण हमें प्रेरित करता है कि सकारात्मक प्रयास, जन भागीदारी और सामूहिक संकल्प से बड़े परिवर्तन संभव हैं। अशोक जी, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम डगर विकास के। विषय है प्रधानमंत्री ई विद्या योजना और ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

0: डगर विकास की। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के संदर्भ में। श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ई विद्या योजना डिजिटल शिक्षा की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न डिजिटल और दूरस्थ माध्यमों के जरिए छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है। भारत सरकार द्वारा पीएम ई विद्या कार्यक्रम की शुरुआत 30 मई 2020 से की गई थी। श्रोताओं, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना का मुख्य लक्ष्य देश के सभी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। साथ ही पीएम ई विद्या में पारदर्शिता बढ़ाते हुए कम संसाधनों में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा डीटीएच और टीवी चैनलों के माध्यम से, साथ ही ऑनलाइन रूप से देश के सभी विद्यार्थियों तक सुलभ रूप से पहुंच रही है। श्रोताओं, क्या है पीएम ई विद्या योजना, इस संदर्भ में जानकारी देती हुई आप हैं छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में पीएम ई विद्या की प्रभारी और माइक्रोबायोलॉजी और बॉटनी की एचओडी डॉक्टर अमिता अर्जरिया।
1: 20 सितंबर 2004 को एजुसेट एक सैटेलाइट भारत द्वारा लॉन्च किया गया था। उसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा शहर का बच्चा एक साथ जुड़कर एजुकेशन प्राप्त कर सके। इसके स्थापित होने के बाद दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाना संभव हो गया। जो पहाड़ी इलाके के बच्चे थे, जहां बिजली नहीं है, सड़क नहीं है और पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ते, तो इस सैटेलाइट के छोड़ने के बाद बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज के कोर्स हुए और टीचर्स को प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे वो स्लाइड बनाते हैं, कैसे पोर्टल पे डालते हैं, कैसे दूरस्थ क्षेत्र के बच्चों को जोड़ते हैं। तो ये 2004 में चालू हो गया था और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भारत में इसका प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हम

0: अरोरा एकेडमी भी गए थे जहां पर हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया था कि कैसे सैटेलाइट को अपन मटेरियल देते हैं, कैसे फोटो खींचते हैं, फिर कैसे टेप करते हैं, फिर कैसे दोनों को कोऑर्डिनेट करते हैं, और जिससे उसके आ जाने के बाद बहुत सारे स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सब आपस में जुड़ गए। जिस प्रकार चिकित्सालयों में और न्यायालयों में आजकल सुविधा हो गई, उसी प्रकार 2000 के बाद एजुसेट के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांति आ गई थी। उसके बाद 2020 में नई शिक्षा नीति का उद्देश्य था कि कम समय में कम लागत में बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दी जाए। इसी शिक्षा के बाद 17 मई 2020 से एक और प्रोग्राम जोड़ा गया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था कि बच्चों को विश्वविद्यालयों को स्कूल को संचार माध्यम के द्वारा जोड़ा जाए, रेडियो के द्वारा, भाई सैटेलाइट के द्वारा, रेडियो रहते हैं, टीवी और मोबाइल, इनसे जोड़ा गया, जिससे जिनके पास सैटेलाइट है, जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास टीवी है, जिनके पास रेडियो है, उन सारे माध्यमों से बच्चे जुड़ सके। इसका मेन उद्देश्य था कि बच्चे को मान लो वो अनुपस्थित है तो उसको गृह कार्य भी प्राप्त हो सके, बच्चा नहीं जा पा रहा किन्हीं कारणों से तो उन बच्चों को बिना जाए वो शिक्षा घर से प्राप्त हो रही है। सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये था कि जो दूरस्थ ग्रामीण अंचल में बैठा सबसे बाद का कोने का विद्यार्थी है और शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास साधन है, ना उनके पास लाइट है, तो वो कैसे शिक्षा करेगा, कैसे ग्रहण करेगा। तो ये नई शिक्षा नीति का प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस माध्यम से समस्त विश्व को एक सूत्र में बांध दिया है। आज भारत का दूरस्थ का विद्यार्थी हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो, चाहे आंध्र प्रदेश का हो, चाहे ग्रामीण का हो, चाहे एससी एसटी का हो, अगर उसके पास बड़े संसाधन नहीं है तो मोबाइल की सहायता से वो सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो स्वयं पोर्टल स्थापित किया गया है उसमें क्रेडिट के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, हर क्षेत्र का उसमें ज्ञान है, बड़े बड़े प्रशिक्षित लगे हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लगे हैं, प्रोफेसर लगे हुए हैं जो अपनी वेबसाइट डाले हुए हैं, और हर विषय का, हर भाषा में, सबसे बड़ी बात हिंदी इंग्लिश में तो था ही, इसके अलावा हर विषय का। ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है तो वो हिंदी में झेपता है या संस्कृत में या मलयालम में, वो स्वयं पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है कि भारत में बोले जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं को सेंट्रलाइज किया गया है। इंग्लिश का मेन सिलेबस है, उससे हर भाषाओं में कन्वर्ट किया गया है, जैसे हर क्षेत्रीय भाषा का विद्यार्थी उसको प्राप्त कर सके। दूसरी चीज वैल्यू एडिट कोर्स बनाया गया है। वैल्यू एडिट कोर्स का मतलब है मूल्य आधारित शिक्षा। अगर तुम्हारे अंदर कोई भी मूल्य है, कुछ भी बनाना आता है, चपाती बनाना आता है, बहुत अच्छा पराठा बनाना आता है, कोई भी कौशल है, उस कौशल के आधार पे वो शिक्षा ग्रहण करे और सरकार उसे 5 लाख रुपए तक का ऋण देती है जिससे वो प्रशिक्षित होता है, उसे मेंटर मिलता है, प्रशिक्षण के बाद वो उस क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए एक नई चीज बनाता है और उसका उसे मूल्य पता रहता है, उसका वैल्यू का मतलब मूल्य आधारित। तो उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत वो पेटेंट करा सकता है, GI टैग करवा सकता है, कुछ भी कॉपीराइट करा सकता है। तो ये अभी उसको भी स्वयं पोर्टल से जोड़ा गया है कि जिन विश्वविद्यालयों में BAC के वैल्यू एडिट कोर्स के टीचर्स नहीं है या उतनी सुविधा नहीं है, तो स्वयं पोर्टल में अगर बच्चा वहाँ एडमिशन लेता है तो उस विषय से संबंधित ज्ञान उसे प्राप्त हो सकता है किसी भी भाषा में।
1: जी मैडम, हम इसमें एक और चीज पूछना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ई विद्या योजना है, इसमें कुछ और माध्यम जुड़े हैं, जैसे रेडियो के माध्यम से भी पढ़ाई होती है, कुछ पोर्टल और भी जुड़े हैं। हाँ। इसमें कुछ और माध्यम भी जुड़े गए हैं।
0: हाँ, एक है दीक्षा पोर्टल, PME विद्या के मुख्य घटक है दीक्षा पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को ई बुक मिली है, वीडियो मिले हैं, क्विज है और बहुत सारी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई कि कैसे बच्चों को कभी भी कोई भी जानकारी किसी समय वो अंदर खोज सकते हैं और उन्हें प्राप्त हो जाती है। प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे IIT है, JEE है, NEET है, PSC है, सारी भाषाओं में, बहुभाषीय माध्यम में अध्ययन सामग्री को इंटरनेट से प्राप्त कर सकता है, पढ़ सकता है। ये सबसे ज्यादा उपयोगी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। PME विद्या के मुख्य घटकों के द्वारा पूरा भारत एक हो गया है और पूरा भारत जब एक हो जाएगा तो विकास की दर भी एक ही दशा में बहेगी और वो दिन दूर नहीं है कि हमारा भारत विश्व गुरु कहलाएगा।
2: श्रोताओं,
1: पीएम ई विद्या योजना में सरकार द्वारा कई तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल चैनल खोले।

0: गए हैं, जिनमें स्वयं पोर्टल, स्वयं प्रभा टीवी चैनल, रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट प्रसारण से उन क्षेत्रों में बच्चों के लिए विशेष रूप से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो किसी कारण से कक्षा में नहीं पहुंच सकते और ये शिक्षा काफी प्रभावी भी हो रही है। पीएम ई विद्या योजना के क्रियान्वयन और विद्यार्थियों के लिए सुलभ सुविधाओं के संबंध में हमें जानकारी देते हुए आप हैं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 के पीएम ई विद्या के प्रभारी वरिष्ठ शिक्षक नीरज वाजपेयी।
1: ये माननीय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक बृहद स्तर का व्यापक डिजिटल शिक्षा उन्मुखीकरण कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा 1 से 12वीं तक की स्कूली शिक्षा के छात्रों और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे कुछ युवाओं को टीवी, इंटरनेट और रेडियो के माध्यम से हाई क्वालिटेटिव एजुकेशन को प्रदान करना है, जिससे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उन्हें मिल सके। और इसको संचालित करने के लिए हमारे भारत सरकार के जो आईटी मंत्रालय है और एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इन सबके समन्वय से प्रमुख रूप से कई पोर्टल्स चल रहे हैं, जिसमें से दीक्षा पोर्टल्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा। ये दीक्षा पोर्टल है, इसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा अभियान है। दीक्षा पोर्टल में स्कूल शिक्षा के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वन नेशन और वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। भारत के सभी राज्यों और एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई जितनी भी पुस्तकें हैं और उन सारी पुस्तकों की डिजिटल सामग्री उसमें अपलोड है। अभी कोविड काल के दौरान जब हम स्कूलों को बंद पा रहे थे, तो हमने इसमें सभी प्रकार के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए स्वयं से 16 प्रशिक्षण ऑनलाइन प्रशिक्षण इस दीक्षा पोर्टल पे दिए हुए थे। और विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इसमें जो पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी की सारी पुस्तकें मिल जाती हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग, ये इसका शॉर्ट वर्जन है दीक्षा। तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने बड़ा प्लेटफॉर्म जो पूरे भारत में दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा की बांट जो रहे छात्रों को, ये एक बहुत बड़ा सुगमता प्रदान करता है। शिक्षा से वंचित और बहुत सुदूर स्थित व्यक्ति भी जहां तक इंटरनेट पहुंच जाता है, तो ये दीक्षा पोर्टल उसको डिजिटली लर्निंग प्रोवाइड करने का एक बहुत बड़ा टूल है।
0: श्रोताओ, पीएम ई विद्या योजना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से लाभार्थी कुछ विद्यार्थियों से उनके अनुभव हमने जाने। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के माध्यम से, स्वयं पोर्टल के माध्यम से अपने शिक्षा को पंख दे रहे हैं हमारे युवा। इस योजना के लाभों के संदर्भ में हमें जानकारी देते हुए आप हैं महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से एमए के छात्र सौरभ द्विवेदी।
2: कई बार ऐसा होता था कि मुझे अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाता था, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता था। कुछ थिंकर्स ऐसे आ जाते थे कि जिनको मुझे बुक में भी उनका मतलब कि क्लियर कट नहीं मिलता था कि क्या उनने रिसर्च की है। मुझे रिसर्च में प्रॉब्लम हो जाती थी कि उनने क्या की है, क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम में लिखना है। तो इसके लिए मैंने स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया। स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं जब स्वयं पोर्टल पर जाता हूँ तो मुझे जो भी टॉपिक से रिलेटेड मैटर चाहिए होता है, तो मैं उस पर सिर्फ टॉपिक का नाम डालता हूँ, उसमें पार्ट बाई पार्ट आ जाता है कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कई जगह ऐसा मिलता है गूगल पे, जैसे हम लोग ट्राई करते हैं तो उसमें प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है, 2-3 लाइन मिलेंगी फिर यहाँ वहाँ का दे देंगे। पर स्वयं पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें हम टॉपिक का नाम डालेंगे जैसे ही, तो उसमें हम उसकी प्रस्तावना, उसके उपसंहार, उसकी विभिन्न प्रकार की हेडिंग, उसके कार्य क्षेत्र, उसकी आलोचनाएं, हमें सभी चीजें स्वयं पोर्टल पर क्रमबद्ध तरीके से मिल जाती है, जिसको पढ़ने में और समझने में काफी सरलता होती है। और सबसे अच्छी बात एक मुझे ये लगी कि स्वयं पोर्टल की जो भाषा होती है वो बहुत ही सरल होती है, एक बार पढ़ने में ही वो हमारे माइंड में आ जाती है।
0: सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे, स्वयं पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, और जो नए विद्यार्थी इससे जुड़ना चाहें या जो भी हमारे नागरिक स्वयं पोर्टल से जुड़ना चाहें कैसे जुड़ सकते हैं?
2: जैसे स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आजकल देखिए सभी के पास एंड्रॉइड फोन तो होता ही होता है, लैपटॉप हो तो और अच्छी बात है। यदि नहीं है तो हम अपने एंड्रॉइड फोन में गूगल ओपन करेंगे या गूगल क्रोम ओपन करेंगे, उसमें जाकर हम स्वयं पोर्टल लिख देंगे सीधा, उसकी जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसको ओपन करना है। उसको जैसे ओपन करेंगे तो एक नीचे ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन आता है लॉगिन का। यदि आप पहले से स्वयं पोर्टल पर एनरोल हो तो आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। यदि आप नए यूजर हो या पहली बार आईडी बना रहे हो तो उसमें ऑप्शन आता है साइन इन का, तो उसमें हम साइन इन अपना मोबाइल नंबर, ईमेल डालकर हम उसमें साइन इन कर सकते हैं और अपने पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। उसमें हमें एक आईडी पासवर्ड मिल जाती है, कभी भी कहीं भी किसी भी फोन में उसको लॉगिन कर सकते हैं, किसी भी ब्राउजर से उसको एक्सेस कर सकते हैं और जो भी हमारे डाउट है, जो कॉन्सेप्ट है, उसे क्लियर कर सकते हैं।
0: जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो सौरभ, पीएम ई विद्या के अंतर्गत आपने स्वयं पोर्टल की बात की है, कैसे आपकी पढ़ाई में मददगार साबित हो रहा है, आपको क्या क्या लाभ हो रहे हैं पीएम ई विद्या के स्वयं पोर्टल के माध्यम से?
2: पीएम ई विद्या के स्वयं पोर्टल के माध्यम से मुझे लाभ, सबसे ज्यादा लाभ ये हो रहा है कि मैं कहीं पर भी, जैसे कि मैं अभी यूनिवर्सिटी में किसी काम से आया हूँ, मैं बुक नहीं लिया हूँ, मुझे पढ़ना है, तो मैं तुरंत अपने फोन में लॉगिन करके स्वयं पोर्टल में आईडी लॉगिन करके कुछ भी पढ़ सकता हूँ। स्वयं पोर्टल पर

0: जाते हैं तो हमें पूरा प्रॉपर मिल जाता है, तो इससे हमें प्रॉफिट है कि हम कहीं भी कभी भी पढ़ लेते हैं और एग्जैक्ट आंसर मिलता है।
1: विद्यार्थियों के लिए कैसे मददगार है उनकी पढ़ाई में या उनके और आगे बढ़ने में हमारा पीएम ई विद्या और स्वयं पोर्टल?
0: विद्यार्थियों के लिए पीएम ई विद्या बहुत ही मददगार है। पीएम ई विद्या के माध्यम से कई पोर्टल भी है इनके, लेकिन मैं सबसे ज्यादा अच्छा मानता हूँ जो मैंने अभी तक उसका उपयोग किया है स्वयं पोर्टल है। स्वयं पोर्टल में हमें मददगार ये है कि ना तो उसमें कोई हमारा पैसा लग रहा है अलग से, ना कोई बुक लेनी है, ना बैग में कोई वजन हो रहा है, और हम कहीं भी डिजिटल रूप से पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का कहना है कि हम डिजिटलता को अपनाएं, हम डिजिटल हों, हम जितने ज़्यादा डिजिटल होंगे उतना ही अच्छा रहेगा।
1: श्रोताओ, पीएम ई विद्या योजना भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जिसमें और अधिक समावेशी शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना पीएम ई विद्या योजना से जुड़े और अपने सपनों को पंख दें। इसी के साथ ही डगर विकास के कार्यक्रम का आज का ये अंक अब संपन्न हुआ। सहयोगी राजेंद्र हिरवार और प्रस्तुतकर्ता रविंद्र कुमार प्रजापति, योगदान आकाशवाणी छतरपुर का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं फिल्म संगीत।

कुछ ना कहो इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की, गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीत था शंकर एहसान लॉय का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
0: रुक जा बुड्ढू।
3: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
6: पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है।

0: बनो कूल रहो।
1: इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40

0: लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की

0: मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा केलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल

0: गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cyber security experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Nam Kham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open Badminton Tournament. And in IPL cricket, high-voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
2: केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Ayya, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the layer of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
2: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा।

0: towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSA deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 people killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty clinch men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फितरत के तहफ़ुज़, मकामी मुश्किलात को हल करने और दिगर समाजी मकासिद के तहीं अफराद की कोशिशों को सराहा। उन्होंने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में खेल कूद के कौमी मुकाबलों में उभरते हुए एथलीट की रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी की भी तारीफ की। सीबीएसई ने 12वीं क्लास के तलबा के जवाबी पर्चों को दोबारा जांचने के ऑनमार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की एक टीम तैनात की है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 बल्दियाती इदारों पर जीत हासिल की है। म्यांमार के नामखम कस्बे में धमाका खेज मादे के जखीरे वाली एक इमारत में धमाके से 45 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मर्दों का डबल्स का खिताब जीत लिया है और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बहुत से शहरियों की समाजी मकासद के तहीं उनके गैर मामूली ताबुन पर तारीफ की है। उन्होंने इन शहरियों के तहरीक देने वाले इकदामात और हसूलियाबियों को उजागर किया। आकाशवाणी पर अपने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने केरलम के साजी वालशेरिल के बारे में इजहार ख्याल किया, जो एक मुफ्त स्विमिंग क्लब चलाते हैं जिससे 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में मदद मिली है। वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती के आकाश गुप्ता की कोशिशों का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मनोरमा दरिया की सफाई की मुहिम शुरू की थी, जिससे इस दरिया को दोबारा साफ सुथरा बनाने और समाज में माहौलियाती बेदारी को फरोग देने में मदद मिली। जनाब मोदी ने बाल कृष्णैया की दास्तान भी बयान की, जो गोवा के एक रिटायर टीचर हैं जिन्होंने पानी की पाइपलाइन डालने में मदद देकर पानी की किल्लत को दूर करने के लिए काम किया। उन्होंने तमिलनाडु की एक टीचर गिरिजा अम्मा की सिपाहियों की बहबूद के तहीं उनके ताबुन को भी सराहा।
2: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दें। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
1: खेल कूद के मैदान में भारत की हसूलियाबियों का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने एथलीट्स गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को झारखंड के शहर रांची में सीनियर एथलेटिक्स की फेडरेशन के कौमी मुकाबलों में नए कौमी रिकॉर्ड्स बनाने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने एथलीट गुरिंदर वीर सिंह और उन्मेष गुजर के 100 मीटर दौड़ के रिकॉर्ड्स तोड़ने के बारे में उनसे बातचीत भी की। जनाब मोदी ने मुल्क के बेशबहा सकाफती विरसे के तहफ्फुज की हुकूमत की लगातार कोशिशों के बारे में भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में मल्हार के मकाम पर औनबंशी संतलत के मक्के महारिषि बलार्जुन से मुतल्लिक 6वीं और 7वीं सदी की 3 नायाब तांबा प्लेटों की हालिया दरियाफ्त का भी जिक्र किया।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं 7वीं

0: सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे का भी जिक्र किया, जिसके दौरान चोल अहद की कदीम तांबा प्लेटों को वापस भारत के सुपुर्द करने की एक खसूसी तकरीब मुनक़िद की गई। उन्होंने कहा कि इन बेशबहा फनपारों को वापस किए जाने से लोगों में, खासतौर पर दुनिया भर में, तमिल बिरादरी को फख्र महसूस हुआ है और उनमें जोश व जज्बा पैदा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि इन तांबा प्लेटों से चोल सल्तनत की हसूलियाबियों और समंदरी ताकत के बारे में काबिल कदर गहरी मालूमात फराहम होती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने नमामि गंगे पहल के तहत तहफुजाती कोशिशों को भी सराहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक नहर में फंसी हुई गंगा की डॉल्फिन को कामयाबी के साथ बचाए जाने का जिक्र किया, जिसमें गंगा डॉल्फिन को बचाने वाली भारत की पहली एम्बुलेंस की मदद हासिल की गई।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने आज कहा है कि ख्याल और कार्रवाई में इख्तिरा से फौजी सलाहियतों को फरोग हासिल होगा। मुल्क के नए CDS की जिम्मेदारी संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सुब्रमणी ने मुसल्लह फौजों, सनात, तालीमी इदारों, स्टार्टअप्स और तहकीक के इको निज़ाम के माबैन मजीद इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया, जो जदीदकारी के लिए बुनियादी हैसियत का हामिल हैं। साबिका फौजियों और वीर नारियों के बहबूद के तई मुसल्लह फौजों के पाबंद रहने की बात दोहराते हुए उन्होंने शहरियों को यकीन दिलाया कि मुसल्लह फौजें खुद को वक्फ करते हुए हिम्मत, इज्जत और पेशेवराना महारत के साथ मुल्क की खिदमात अंजाम देती रहेंगी। आज सुबह सवेरे लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी को नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक के सब्जार में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने नेशनल वार मेमोरियल पर गुलदायरा भी नजर किया। DRDO की टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी ने आज हरियाणा के जिले पंचकुला में वाके रामगढ़ में अपनी तनसीब पर एक ताकतवर बम का कामयाब तजुर्बा किया है। ये जामे हिफाजती इंतजामात के दौरान भारतीय फजाइया के सीनियर अफसरान की निगरानी में अंजाम दिया गया। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि गुज़िश्ता 12 वर्षों में भारत टेक्नोलॉजी फॉलोअर से एक टेक्नोलॉजी लीडर बन गया है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ एक पॉडकास्ट में बात करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि मुल्क जदीद तकनीकों की तरक्की में मुसलसल अहम रोल अदा कर रहा है और आलमी सतह पर इख्तिराआत को नई जहत देने में मदद कर रहा है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने कहा है कि मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों और टेक्नोलॉजी के भारतीय इदारों की साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन की एक टीम को ऑनमार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए तैनात किया गया है, जिसे 12वीं जमात के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जांचने के लिए इसके ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM निज़ाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि इस निज़ाम की खामियों की निशानदेही कर ली गई है और इनका किस तरह कोई गलत इस्तेमाल न हो इसके लिए मुकम्मल जायजा लिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में BJP ने बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 इदारों पर जीत हासिल की है। इन इंतखाबात में डाले गए वोटों की गिनती आज की गई वोटिंग 17 मई को कराई गई थी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में शानदार जीत हासिल की है। उसने धर्मशाला, सोलन और मंडी सीट जीत ली है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ पालमपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सीट जीती है। धर्मशाला में BJP ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस ने 5 वार्ड में जीत हासिल की है। सोलन में BJP ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड हासिल किए हैं। मंडी में BJP ने 14 में से 12 जबकि कांग्रेस ने 1 वार्ड में जीत हासिल की है। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 वार्ड में से 11 वार्ड में वाजे अक्सरियत हासिल की है, जबकि BJP ने 4 वार्ड जीते हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती भी मुकम्मल हो चुकी है, अगरचे ये इंतखाबात पार्टी निशान के बगैर मुनक़द हुए थे। ताहम BJP और कांग्रेस दोनों ने अपनी हामी उम्मीदवारों की कामयाबियों का जिक्र किया है। शिमला से

0: रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
1: इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में खसूसी तफसीली नजरसानी SIR के तीसरे मरहले के तहत नंबर शुमारी का काम शुरू हो गया है। कमीशन ने बताया कि उन सभी अहल वोटरों को जिनके नंबर शुमारी फार्म इंतखाबी रजिस्ट्रेशन दफ्तर को 28 जून को या इससे पहले मौसूल हो गए हैं, चुनाव फहरिस्तों के मुसवदे में शामिल किया जाएगा। SIR का मकसद यह है कि कोई अहल शहरी चुनाव फहरिस्त से न रह जाए और कोई नाअहल शख्स चुनाव फहरिस्त में शामिल न रहे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हाउसिंग और शहरी उमूर निज बिजली के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने आज अगरतला में एक बड़ी तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब रेड़ी पटरी वालों से मुतालिक प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि PM स्वानिधि स्कीम के 6 साल पूरे होने के मौके पर मनाई गई। इस मौके पर मरकजी वजीर ने रेड़ी पटरी वालों को रुपए पैसे के डिजिटल वसीले से किए जाने वाले लेन देन को फरोग देने और माली तौर पर खुद किफालत के लिए कर्जों के चेक और QR कोड वाले क्रेडिट कार्ड तकसीम किए। मगरबी बंगाल के गवर्नर RN रवि ने आज भारत बांग्लादेश सरहद पर हिफाजती खामियों पर तश्वीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सरहद पर जिन जगहों पर बाढ़ नहीं लगी है उनसे कौमी सलामती को खतरा लाहक है। गवर्नर मौसूफ सिलीगुड़ी में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत से पहले बागडोगरा में मीडिया से खिताब कर रहे थे। गवर्नर ने कहा कि मगरबी बंगाल में भारत बांग्लादेश सरहद से तकरीबन 300 किलोमीटर इलाके में कई साल से बाढ़ नहीं लगी हुई है क्योंकि रियासत में साबिका TMC सरकार ने सरहद पर बाढ़ के लिए जमीन BSF के हवाले नहीं की थी, जिसकी वजह से मुर्शिदाबाद, मालदा और नदिया जैसे हस्सा जिले मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने दफाई एतबार से अहम चिकन नेक राहदारी पर भी हिफाजती इंतजाम मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। यह राहदारी शुमाल मशरकी खित्ते को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाती है। महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर को उनके 301वीं यौमे पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। मुंबई में लोकभवन में गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने अहिल्या देवी होलकर की तस्वीर पर गुलहाय अकीदत नजर किए। इस दौरान वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अहिल्यानगर जिले में चौंडी के मकाम पर अहिल्या देवी होलकर यादगार का दौरा किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। म्यांमार के शुमाल मशरकी हिस्से में एक इमारत में हुए धमाके में 45 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तलाआत के मुताबिक इमारत में कानकनी में इस्तेमाल होने वाले धमाका खेज मादे रखे हुए थे। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नामखम टाउनशिप के काउंग टुब गांव में दोपहर में हुए धमाके में तकरीबन 70 अफराद जख्मी हो गए। ये इलाका चीनी सरहद से करीब 3 किलोमीटर जनूब में वाक़ है, जहां तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी का कंट्रोल है। ये एक मुसल्लह ग्रुप है जो म्यांमार की मरकजी हुकूमत के साथ महाजारा है। जय हादसा पर पहुंचे राहत और बचाव काम पर मामूर एक अहलकार ने बताया कि 6 बच्चों समेत 46 लाशें बरामद की जा चुकी हैं और उन्हें आखिरी रसूमात के लिए ले जाया जा रहा है। राहत और बचाव का काम अभी जारी है। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और मगरबी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मगरबी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और झालाबारी का इम्कान है। महकमे ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी राजस्थान में अगले 2 दिन तक गरज चमक के साथ छींटे और बिजली चमकने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने आज सिंगापुर ओपन में मर्दों के डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजर अल्फियान को 18-21, 21-13, 21-16 से शिकस्त दी। इस तरह उन्होंने 2 साल में अपना पहला खिताब जीत लिया। आईपीएल क्रिकेट के अहमदाबाद में जारी फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने 156 रन का निशाना रखा है। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फितरत के तहफ़ुज़, मकामी मुश्किलात को हल करने और दिगर समाजी मकासद के तई अफराद की कोशिशों को सराहा। उन्होंने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में खेलकूद के कौमी मुकाबलों में उभरते हुए एथलीट की रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी की भी तारीफ की। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा के जवाबी पर्चों को दोबारा

0: नमस्कार श्रोताओ, मैं रजनीश कुमार शर्मा
1: और मैं तपस्या
0: आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की इस नूतन कड़ी में। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कला, संगीत और साहित्य जगत की स्वरांजलि, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध अभिनेत्री को, जो अपना परिचय स्वयं दे रही हैं।
2: जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम नरगिस है, लेकिन मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो नाम है कनीज फातिमा। और एक और नाम भी है जो मुझे अपने पिताजी की तरफ से मिला है, और वो है तेजेश्वरी। इसलिए कि मेरे पिताजी पंजाब के एक हिंदू थे और मेरी माँ उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान औरत, और मैं बंगाल में पैदा हुई लेकिन अपने घर बार और बाल बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ।
1: सन 1940 से लेकर 1960 के दशक तक नरगिस ने कई सफल फिल्मों में काम किया। बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार, श्री 420 और चोरी चोरी इनकी बहुचर्चित फिल्में रहीं।
0: महबूब खान द्वारा निर्मित 1957 की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस जी के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से नरगिस का एक संवाद।
3: देवी यहाँ से नहीं जाएगी।
4: खबरदार राधा, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना राधा।
3: देवी ने तुम्हें धन दिया और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई है। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है, पर रास्ते पर चलना बहुत कठिन।

0: नाच ले लो देवी, मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती। अब मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती देवी।
1: श्रोताओं, नरगिस पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें सन 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं नरगिस से उनके फिल्मी जीवन के आरंभ के बारे में।
2: मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह यह भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहां जिंदगी को जिंदगी की नजर से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस यूं समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है, यानी उस वक्त से काम कर रही हूं जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता।

0: लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है।
1: फिल्म तकदीर में नरगिस ने पहली बार मुख्य अभिनेत्री का चरित्र निभाया। इस फिल्म के सह कलाकारों को याद करते हुए नरगिस कहती हैं,
0: जैसा कि आप सब जानते हैं, मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया, कैसा हुआ? और वो बिगड़ कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर, फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाए के कलाकार थे, ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ, याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहां तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया।
2: पुरानी फिल्मों की तुलना नई फिल्मों से करते हुए नरगिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
0: फिल्मों से मेरा संबंध काफी पुराना है, इसीलिए पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफी फर्क मुझे नजर आता है। खास तौर पर टेक्निकली हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन स्टोरी और डायलॉग के मामले में हम लोग तरक्की करने के बजाय कुछ पीछे ही खिसक आए हैं। इसके सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अब ऊपरी सजावट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल फिल्मों में कश्मीर, कुल्लू और मनाली की हसीन वादियां तो देखने में आती ही हैं, लेकिन पत्थर को मोम कर देने वाले डायलॉग सुनने में नहीं आते। बहरहाल, ऐसा भी नहीं कि आजकल हर फिल्म ऐसी ही होती है, बल्कि कुछ अच्छी फिल्में भी बनती हैं।
1: श्रोताओ, पुरानी फिल्मों के कलाकार अपने अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। अभिनेत्री नरगिस भी ऐसी ही कलाकार थी।
0: फिल्म एक्टिंग के बारे में आप लोग आम तौर पर तरह तरह के ख्यालात रखते हैं और अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स जैसा कहते हैं या चाहते हैं वैसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे और खास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवायफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेस बदल कर एक कोठे पर गई। वहां आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बातचीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए।
2: सन 1968 की फिल्म रात और दिन उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। सन 1982 में इस महान अभिनेत्री की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।
1: श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे हम सुनवाएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक पंडित डीवी पलुस्कर का गायन। तो अनुगूंज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस विराम के बाद।

0: कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन, कभी भारत की बदलती तस्वीर है।

0: Rotata. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्रोताओं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उच्च कोटि के गायक पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म 28 मई 1921 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उन्हें एक विलक्षण बालक के तौर पर जाना जाता था। पलुस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम मात्र 14 वर्ष की आयु में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया।
1: श्रोताओं, भारतीय संगीत में गायन की कई शैलियां हैं, जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमा, त्रिवट, चतुरंग आदि। चतुरंग शैली लुप्त होती जा रही है। आइए सुनते हैं पलुस्कर जी के स्वर में, राग सिंधुरा में, चतुरंग।

बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी पलुस्कर को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उस जुगलबंदी का एक अंश।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनेंगे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की कुछ रचनाएं इस अल्प विराम के बाद।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात।

श्रोताओ, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले में हुआ था। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक भी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखीं, बाद में महाकवि निराला से प्रेरणा पाकर हिंदी में सृजन किया। शास्त्री जी गीतकार भी रहे हैं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा उनके गीतों और गजलों में सुंदर रूप से प्रकट होती है। आइए सुनते हैं उनका प्रतिनिधि गीत, किसने बांसुरी बजाई।

40 के दशक में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखी जो गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा। आचार्य

जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शास्त्री जी का एक और गीत।

उपकरण बदल गए, बदल गए पहले कारण करण। जीवन के बाने में

0: श्रोताओं, हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, anugoonj@gmail.com।
1: जी हाँ, anugoonj@gmail.com। तो अब हमें यानी रजनीश कुमार शर्मा को
0: और तपस्या को
1: दीजिए विदा।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी के शोधकर्ता थे रंजन गुप्ता, राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। गीत रचना थी राजेश राज की और गायन स्वर था जितेंद्र सिंह का। आलेख और निर्माण था आशुतोष कुमार का और निर्देशक थे डॉक्टर संतोष नाहर।
1: अभी आप आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे।
2: You are listening to the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेट रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरपु येरैया is a renowned saxophone artist from Andhra Pradesh. He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashavani Kadapa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of कंची कामकोटी आस्थान विद्वान।
0: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वीएन बालचंदर संगति देंगे। श्री वीएन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुच्चरई टीजी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
1: इन टुनाइट्स कंसर्ट Sri Asanapurapu Yerraya and Party is accompanied on special dolu by Sri V.N. Balachandar. Sri V.N. Balachandar is a renowned dolu artist from Andhra Pradesh. He received training under distinguished gurus including Sri N. Lakshmi Narayana and Tiruchirai T.Z. Muthukumaraswamy Pillai. He is a top grade artist of Akashwani.
0: Sri Yerraya apne saxophone vadan ki shuruaat kar rahe hain Ninnu Kori Yunannura se. ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया बिगिंस हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्नु कोरी युन्नानुरा ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम यरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वीएन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पठनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanamemi, a composition of Patnam Subramanya Iyer in Rag Mandari, set to Aditaal.

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सूरजानंद की है।
1: राग कीरवाणी में ये रचना
0: मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
2: You are now listening to the saxophone recital by श्री अस्नापुरपु एर्रैया in the रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्री एर्रैया next presents सामगान प्रियकरम, a composition of गुरु सूरजानंद in राग कीरवाणी set to मिश्र चापू ताल।

0: श्री यरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग, जो आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री यरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग बृंदावन सारंगा, सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन, डोलू पर संगति दी श्री वी एन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। दिस प्रोग्राम was recorded in the studios of Akashvani Kadapa and this broadcast came to you from the studios of Akashvani Delhi.

0: محمد زبير. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is आकाशवाणी। द न्यूज रेड बाय रेश

ऐप पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 11:10 हुए हैं इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में और हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह की सभा में 5:51 पर हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। जय हिंद।